FM 102.2 मेगाहर्ष पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के आश्विन मास की तीसरी तिथि, तदनुसार 25 सितंबर सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:58 हो रहे हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अलका सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा संवाद करेंगे। इस दौरान सेवा यात्री प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव साझा करेंगे। ये यात्रा 17 सितंबर को शुरू हुई थी और प्रधानमंत्री के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर चलाए जा रहे सेवा संकल्प अभियान का हिस्सा है। यात्रा के दौरान युवा विभिन्न राज्यों, जिलों, तहसीलों और गांव से गुजरते हुए स्थानीय लोगों से संवाद कर रहे हैं और जनसेवा से जुड़ी गतिविधियों में भाग ले रहे हैं। सेवा यात्रियों ने स्वच्छता अभियान चलाने के साथ साथ स्कूलों, अस्पतालों, नर्सिंग होम और अन्य सामुदायिक स्थानों पर लोगों से मुलाकात की। ये यात्रा 7 अक्टूबर तक चलेगी। प्रधानमंत्री ने कल वडनगर से वाराणसी जा रहे सेवा यात्रियों से बातचीत की थी। उन्होंने यात्रियों से रास्ते के अनुभवों, लोगों के साथ उनके संवाद के बारे में जानकारी ली। श्री मोदी ने कहा कि देश के अलग अलग हिस्सों से गुजरने वाली ऐसी यात्राएं युवाओं को भारत की विविधता को समीप से समझने का अवसर देती है। भारत ने इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के समाधान के लिए दो राष्ट्र समाधान के प्रति अपने स्पष्ट और निरंतर समर्थन को दोहराया है। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीवी जॉर्ज ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के से अलग दो राष्ट्र समाधान के कार्यान्वयन के लिए वैश्विक गठबंधन की उच्च मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लिया। मंत्रालय ने कहा कि भारत राजनीतिक समर्थन के साथ व्यवहारिक सहयोग पर भी बल देता है। श्री जॉर्ज ने फ्रांस की अध्यक्षता में हुई G7 विकास मंत्रियों की दूसरी बैठक में भी भाग लिया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। भारत वैश्विक मूल्य और आपूर्ति श्रृंखला में अपनी भूमिका मजबूत करने के प्रयास कर रहा है। नई दिल्ली में 13वें PAFI वार्षिक फोरम 2026 में उन्होंने कहा कि भारत आज $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है और $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। श्री गोयल ने कहा कि क्रय शक्ति के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था लगभग $20 ट्रिलियन की है और ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने कहा कि भारत का नदियों के साथ संबंध हजारों वर्ष पुराना है। उन्होंने कहा कि देश के शहर, सभ्यताएं, साहित्य, संगीत, कला और परंपराएं नदियों से गहराई से जुड़ी हुई है। श्री संधू ने कल नई दिल्ली में 7वें नदी उत्सव के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि यमुना का पुनरुद्धार केवल पर्यावरण संरक्षण तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे एक सांस्कृतिक अभियान के रूप में भी आगे बढ़ाना होगा। उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का 4था संस्करण आज से उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में शुरू होगा। गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 दिन चलने वाले इस आयोजन का उद्घाटन करेंगे। इस वर्ष आयोजन का विषय है बेहतरीन खरीदारी की शुरुआत यहीं से। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 8 वर्ष और आयुष्मान भारत डिजिटल

0: जल मिशन के 5 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आरोग्य मंथन 2026 का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम में स्वास्थ्य सुरक्षा और डिजिटल स्वास्थ्य के प्रमुख पहलुओं पर केंद्रित विषयों पर विचार विमर्श किया जाएगा। इसके अलावा विभिन्न श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी सम्मानित किया जाएगा। जापान एशियाई खेलों के 7वें दिन आज भारतीय खिलाड़ी कई स्पर्धाओं में पदक के दमखम आजमाएंगे। कबड्डी के सेमीफाइनल मुकाबलों में आज भारतीय पुरुष टीम का सामना थाईलैंड और महिला टीम का नेपाल से होगा। भारत के पुरुष और महिला टीमों ने कल अपने अपने ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल करते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। भारत ने कल 5 पदक जीते। इसके साथ ही भारत के कुल पदक की संख्या 17 हो गई है, जिसमें 1 स्वर्ण, 7 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी पदक विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है आराध्य को निवेदित भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। जय जय आरती सब मिल गावें, स्तुति करें श्री गणपति की।

0: वंदना कार्यक्रम में अभी आपने सुना हरिओम शरण, राजेश मिश्रा, अनुराधा पौडवाल, केसर बाबू और साथियों को FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम चिंतन बिंदु।
1: मनुष्य विज्ञान के युग में जी रहा है, वो माइक्रोस्कोप जैसे सूक्ष्मदर्शी यंत्रों का उपयोग करता है। वो सूक्ष्माति सूक्ष्म और दूरस्थ वस्तु को देखने के लिए उत्सुक रहता है, पर अपने भीतर देखने का अवकाश उसे नहीं मिलता। वो बड़े बड़े राष्ट्रों के संविधान का अध्ययन करता है, वो अपने जीवन के विधान को नहीं समझता। ये भी स्वीकार किया जाता है कि उसके पास जीवन का कोई विधान है ही नहीं। समस्याओं की जड़ यही है। ये जड़ जब तक नहीं कटेगी तब तक मनुष्य का दृष्टिकोण सम्यक नहीं होगा। स्वस्थ जीवन शैली का प्रथम आयाम है सम्यक दर्शन। जो तत्व जैसा है उसको उसी रूप में जानने देखने का नाम है सम्यक दर्शन। इससे जीवन और जगत के प्रति दृष्टिकोण यथार्थ बनता है। दृष्टिकोण का मिथ्यात्व वस्तु, व्यक्ति या सिद्धांत के सही स्वरूप के अवबोध में बाधक बनता है। हर व्यक्ति की कुछ निजी अवधारणाएं होती हैं। उनको आधार मानकर चलने का अर्थ है सत्य का अस्वीकार। सत्य की अस्वीकृति या अप्रतिबद्धता की स्थिति जीवन शैली को स्वस्थ और संतुलित नहीं बना सकती। इसलिए सम्यक दर्शन को जीवन शैली का प्रथम अंग माना गया है। सम्यक दर्शन की 3 उपलब्धियां हैं। पहला, सम्यक दृष्टिकोण का विकास। दूसरा, विधायक दृष्टिकोण का विकास। और तीसरा है तीव्रतम क्रोध, मान, माया और लोभ का शमन।

0: जिस व्यक्ति का दृष्टिकोण सम्यक होता है वो शांत सहवास में विश्वास करता है। स्वार्थी मनोवृत्ति, पदार्थ परक मनोवृत्ति, अपनेपन एवं परायपन की भावना, मान प्रतिष्ठा की भूख, कथनी करने की असमानता, वंचनापूर्ण व्यवहार आदि शांत सहवास के बाधक हैं। इन बाधाओं को पार करने के लिए दृष्टिकोण को सम्यक बनाना आवश्यक है। निषेधात्मक भाव व्यक्तित्व का वो दोष है जो अच्छी संभावनाओं का द्वार बंद कर देता है। निषेधात्मक भावों से घिरे व्यक्ति को सब लोगों में कमियां दिखाई देती हैं और सब व्यवस्थाएं त्रुटिपूर्ण प्रतीत होने लगती हैं। ऐसा व्यक्ति अपने चारों ओर खंड खंड में बिखरे सुख का अनुभव नहीं कर पाता। वो अभाव को देखता है, जो उसे उपलब्ध है उससे वो आंखें मूंद लेता है। विधायक दृष्टिकोण का विकास व्यक्ति की सोच को बदल देता है। विधायक भावों में जीने वाला हर बुराई में अच्छाई देखता है। इससे जीवन के प्रति नई आस्था पैदा होती है, सहकर्मियों में विश्वास बढ़ता है और कठिन परिस्थितियों का मुकाबला करने की क्षमता अर्जित होती है। क्रोध, मान, माया और लोभ निषेधात्मक भाव हैं। क्रोध से प्रीति का नाश होता है, अभिमान विनम्रता को समाप्त करता है, माया से मित्र दूर हो जाते हैं, लोभ से वशीभूत होकर व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। संसार में जीने वाला व्यक्ति इन भावों से सर्वथा मुक्त भी नहीं हो पाता। इस स्थिति में इन्हें नियंत्रित रखने का मार्ग प्रशस्त है। इसके लिए ध्यान और अनुप्रेक्षाओं का अभ्यास उपयोगी है। ध्यान, अनुप्रेक्षा आदि की बात वही व्यक्ति सोच सकता है जिसे सम्यक दर्शन उपलब्ध हो। निष्कर्ष की भाषा में ये तथ्य उजागर होता है कि सम्यक दर्शन स्वस्थ जीवन की आधारशिला है। इसके द्वारा जीवन शैली को बदला जा सकता है, विवेक विकल अंधानुकरण की प्रवृत्ति को रोका जा सकता है और जीवन का सही मूल्यांकन किया जा सकता है।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन बिंदु में विचार सम्यक दर्शन, आलेख श्री कृष्ण चैन का था और वाचन राखी कटारा का था। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं श्री रामचरित मानस गान।

लक्ष्मण को वन जाने की सहर्ष अनुमति देते हुए माता सुमित्रा ने कहा, हे पुत्र, वन में तुम्हें सभी सुख प्राप्त होंगे, क्योंकि तुम्हारे साथ पिता माता सरीखे श्री राम और सीता का निवास होगा। तुम वही करना जिससे श्री रामचंद्र वन में किसी प्रकार का क्लेश न पावे, यही मेरा उपदेश है। श्री राम, लक्ष्मण तथा सीता वहां पहुंचे जहां राजा दशरथ मूर्छित प्राय अवस्था में पड़े थे। श्री राम पधारे हैं इस मधुर वचन के साथ मंत्री सुमंत्र ने राजा को उठाकर बिठाया। दो दो पुत्रों के साथ सीता को वन जाने के लिए तैयार देखकर वो अत्यंत व्याकुल हो गए। अकुलाहट तथा स्नेहवश वे बार बार पुत्रों को हृदय से लगाते हैं। उनकी वाणी मौन है, क्योंकि मर्मस्थल पर आघात लगने का दुख दारुण है। श्री राम बोले, हे तात, प्रेम के कारण कर्तव्य में चूक जाने से यश जाता रहेगा। मुझे आशीर्वाद और विदा दीजिए। राजा दशरथ ने ये सुनकर बांह पकड़ श्री राम को अपने पास बिठा

ढालिया बोले, हे तात, मुनि लोग कहते हैं कि श्री राम चराचर के स्वामी हैं। वेद वाणी है कि कर्मों के अनुसार ईश्वर विचार कर फल देता है, किंतु आज तो ठीक इसके विपरीत हो रहा है। अपराध कोई करे और उसका दंड किसी और को भुगतना पड़े, भगवान, ये तेरी कैसी लीला है।

अभी आप सुन रहे थे सतीश भाटिया के संगीत निर्देशन में तैयार श्री रामचरित मानस खान का आज का संगीतबद्ध प्रसंग, जिसे स्वरों में पिरोया था वाणी जयराम और ए हरिहरन और साथियों ने। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

कुछ देर बाद यानी 6:50 पर कार्यक्रम खेती की बातें में जानकारी प्राप्त करेंगे हमारे श्रोता। आज का विषय रहेगा धान में दाने का न बनना और वार्ताकार होंगे डॉक्टर यूडी सिंह। अजय आप आनंद लेंगे पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम भूले बिस्तरे गीत का और 7:18 का समय होगा प्रादेशिक समाचारों का जिन्हें आकाशवाणी लखनऊ से अनुप्रसारित करेंगे। पर आपका कार्यक्रम पसंद का कार्यक्रम होगा कार्यक्रम ब्रजमाधुरी। आज ब्रजमाधुरी कार्यक्रम में हमारे श्रोता आनंद लेंगे लेखक बी आजाद

मथुरावि की लिखी रासलीला सांझी पूजन, प्रस्तुति टीएन शर्मा की होगी। साथ ही आनंद लेंगे आप कुछ ब्रजलोक गीतों का। बजकर 30 मिनट पर आप सुनेंगे चित्रपट संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि। 9 बजे आप सुनेंगे स्वास्थ्य कार्यक्रम में भेंट वार्ता। विषय रहेगा कमर एवं रीढ़ की हड्डी का दर्द, कारण, लक्षण और निवारण। कार्यक्रम में विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता, वरिष्ठ न्यूरो सर्जन। 9:25 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आबो हवा। साथ ही 9:30 पर आप सुनेंगे गांधी चर्चा, आकाशवाणी आगरा केंद्र की प्रस्तुति। 9:45 पर आप सुनेंगे बातचीत एकात्म मानवता वाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय। डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा से बातचीत करेंगे ओपी सिंह। 10 बजे आप सुनेंगे डॉक्टर अष्टला नागर का लिखा नाटक विसर्जन, गणेश विसर्जन पर प्रस्तुति होगी यतीन्द्र चतुर्वेदी की। 11 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। 11:30 पर आप आनंद लेंगे अर्पण फिल्मी संगीत कार्यक्रम। 12 बजे आप सुनेंगे व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित कार्यक्रम गीत बात और SMS। बजकर 30 मिनट पर आप सुनेंगे ब्रज लोक गीत कार्यक्रम। आज कलाकार होंगे ब्रजलाल नागर। बजकर 20 मिनट पर बहनों का कार्यक्रम होगा कार्यक्रम बनिता लोक। कार्यक्रम में आप सुनेंगे चर्चा श्राद्ध पक्ष और इसी कार्यक्रम में चर्चा का विषय रहेगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती। आप सुनेंगे वार्ता किचन गार्डनिंग से मिले घर में हरा भरा पर्यावरण। वार्ताकार होंगी दीपा भार्गव। 2:30 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग NCERT एवं CIET द्वारा प्रायोजित।

0: थे कार्यक्रम विवरण आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। और आइए सुनते हैं कार्यक्रम खेती की बातें में ये जानकारी।
1: भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा के पादप रोग विज्ञान विभाग के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर यूवी सिंह जी, आप इनसे जानने, धान की बाली में दानों न पड़वे की जो समस्या है वो क्यों है और वाकई समाधान कहाँ कहाँ है?
2: ये जो आपकी समस्या है, अभी उत्तर भारत मैदानी भागों में जहाँ जहाँ धान की खेती हो रही है और बासमती धान या पूसा या जो हाइब्रिड धान जहाँ लगाए हैं लोग, उन सबों खेतों में ये दिक्कत आ रही है। और इसका दो तीन कारण हो सकता है। एक तो कारण होता है कीड़े का पड़ना, स्टेम बोरर जिसको कहते हैं, उसके प्रकोप से बाली पूरी जो है खाली हो जाती है, उसमें चावल एकदम नहीं बनता है, चैफी ग्रेन हो जाते हैं। दूसरा कारण होता है नेक ब्लास्ट, जिसमें बीमारी आने से पूरी बाली जो है ना खाली रहती है, उसमें दाना नहीं बनते हैं। और ये दोनों कारण को आप या किसान भाई खुद देख सकते हैं खेत में जाकर के। यदि बीमारी लगी है तो उसमें काला रंग का धब्बा हो जाता है, नेक रॉटिंग हो जाती है और गिर जाती है फेनिकल। यदि कीड़ा होता है तो उस बाली को जब आप हाथ से पकड़ करके उखाड़ेंगे तो वो हाथ में आ जाएगा और नीचे में कीड़ा दिखाई पड़ेंगे। लेकिन ये दोनों प्रॉब्लम के अलावे मुख्य कारण अभी जो है, ये सितंबर महीना के 15-16 तारीख के बाद जो तापमान में बढ़ाव आ रहा है, अभी 37-38 से लेकर के 40 तक टेम्परेचर जा रहा है यहाँ के उत्तर प्रदेश के बहुत सारे जगह में, और इसके साथ साथ हरियाणा में भी ये टेम्परेचर जा रहा है। तो ये जो बोलते हैं, एक हीट स्ट्रेस बोलते हैं।

0: अधिक गर्मी के वजह से धान में चावल का नहीं बनना और धान के बाली में पूरे सूखा जैसा लगता है कि उसमें चावल के बदले में केवल धान है, लेकिन उसमें एक भी ये नहीं है, बना नहीं है, धान फूटा नहीं है। तो ये अभी के संदर्भ में सबसे मुख्य कारण है आपका हीट स्ट्रेस, अधिक गर्म होना। तापमान का जो है 40 डिग्री सेल्सियस ये जो चल रहा है दिन के समय में, इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है और धान चावल बनने के लिए फर्टिलाइजेशन बहुत जरूरी है। तो ये मोटा मोटी इस कारण का कोई खास निदान नहीं है, क्योंकि इसमें कोई दवा वगैरह नहीं कर सकते हैं। ये तो प्राकृतिक आपदा हम मैं कहूँगा। शुरू में जैसे सूखा हो गया था और अभी बाली निकलने के समय में धान में फूल हो रहे हैं, धान में चावल बनना है, इस समय में हमारे यहाँ का तापमान इतना ज्यादा हो गया है जो इसके अनुकूल नहीं है।
1: डॉक्टर साहब, एक दूसरी जो समस्या है सरसों की खेती में, सरसों के जो बीज हैं उनमें अंकुरण उनको ना है रहो जमीन में, और अंकुरण अगर है तो वो जल रहो संग।
0: अच्छा, इसके लिए मैं मुख्यतया धान में काम करता हूँ, इसलिए उसका समुचित उत्तर जो है जो सरसों में काम करते हैं आपको वैज्ञानिक बताएंगे, लेकिन मोटा मोटी आपको मैं बता रहा हूँ। जब सरसों की हम लोग बुआई करते हैं उस समय में जो है नाइट टेम्परेचर जो होती है वो काफी कम रहती है, 18-20 रहती है, और दिन का तापमान भी जो है ना नवंबर महीना में जिस समय में सरसों बोई जाती थी या अक्टूबर महीना में, तो ये जो टेम्परेचर है दिन और रात का सरसों बोने के समय का जो हर साल आप देखेंगे जो ठंडा समय हो जाता है, रात ठंडी हो जाती है, धूप कम रहती है, तो उसमें सोइंग करने से क्या होता है जो अंकुरण भी अच्छा आएगा और सरसों की जो है ना वो सीडलिंग जो पौधे होते हैं वो ठीक आएंगे। इसमें भी जैसे आपके धान की प्रॉब्लम है उसी तरह से जो अधिक तापमान होना, टेम्परेचर का बढ़ना, ये हमारे समझ से मुख्य कारण हो सकता है।
2: कार्यक्रम खेती की बातें में जानकारी प्राप्त कर रहे थे, विषय था धान में दाने का न बनना, और वार्ताकार थे डॉक्टर यूडी सिंह। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।

आइए सुनते हैं पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत का ये पहला नगमा, जिसे हमने लिया है फिल्म कभी कभी से। आवाजें हैं लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों की।

सुना यशोदास को, फिल्म का नाम था चित चोर, और आइए सुनते हैं लता मंगेशकर को, फिल्म का नाम है नागिन।

इस समय हमारे श्रोता आनंद ले रहे हैं पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत का आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से।

0: किशोर कुमार के गाए फिल्म चलते चलते के इस गीत के साथ ही पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम भूले बिस्तर गीत अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में आकाशवाणी लखनऊ से रिले करेंगे।
1: किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी। मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविंद्रनाथ ठाकुर। अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। APJ अब्दुल कलाम। जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी। आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। APJ अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी। मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडनगर से प्रदेश के वाराणसी तक यात्रा कर रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया संवाद। कहा, सेवा भावना देश की प्रगति की सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति है। गौतम बुद्ध नगर जिले में आज से शुरू हो रहा है उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो का चौथा संस्करण। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे उद्घाटन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में LDA की वरुण विहार और नैमिष नगर योजनाओं का किया शुभारंभ। कहा, 10 लाख से अधिक लोगों को मिलेगी आवासीय सुविधा। और प्रदेश के कई जिलों में बारिश का सिलसिला जारी। मौसम विभाग ने भारी बारिश जारी रहने और प्रदेश के अधिकतम तापमान में गिरावट का अनुमान जताया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल गुजरात के वडनगर से वाराणसी तक यात्रा कर रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि सेवा भावना देश की प्रगति की सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति है। उन्होंने कहा कि सरकार की अभिनव योजनाओं ने 25 करोड़ नागरिकों को गरीबी से बाहर निकाला है। श्री मोदी ने कहा कि PM किसान योजना और PM सूर्य घर योजना जैसी अनगिनत योजनाएं देश के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने कहा कि सेवा भावना के फलस्वरूप ही 4 करोड़ गरीब लोगों को स्थायी घर मिल सके हैं। श्री मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण बताई।
3: 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में हमें युवा शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका को एकदम से मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। आज की युवा पीढ़ी विकसित भारत की निर्माता भी है और यही पीढ़ी एक बड़ी लाभार्थी भी होगी। और इस दायित्व को निभाने के लिए भारत को जमीन पर जानना, समझना, देश की हर बारीकियों को अनुभव करना बहुत जरूरी है और इसमें सेवा संकल्प यात्रा निश्चित रूप से आपके जीवन में अहम भूमिका निभाने वाली।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन सेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जन सेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जन सेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार

0: वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारी विशेष श्रृंखला में आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि स्टार्टअप इंडिया जैसी पहल ने इस सोच को किस तरह धरातल पर उतारा है। एक रिपोर्ट।
1: 2016 में शुरू हुई स्टार्टअप इंडिया पहल ने भारत की उद्यमिता संस्कृति में बड़ा बदलाव किया है। करीब 400 सर्टिफाइड स्टार्टअप से शुरू हुआ यह सफर मार्च 2026 तक 2 लाख से अधिक सर्टिफाइड स्टार्टअप और 23 लाख से ज्यादा प्रत्यक्ष रोजगार तक पहुंच गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आने वाले 10 साल में देश नए स्टार्टअप में दुनिया का नेतृत्व करे, ये हमारा प्रयास होना चाहिए।
2: पिछले 10 वर्षों ने देश की क्षमताओं को साबित किया है। हमारा लक्ष्य होना चाहिए आने वाले 10 वर्षों में भारत नए स्टार्टअप ट्रेंड्स और टेक्नोलॉजी में दुनिया का नेतृत्व करे।
1: सरकारी स्कूलों में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में काम करने वाले मेरठ के स्टार्टअप के फाउंडर आशुतोष वशिष्ठ ने बताया कि सरकार से उन्हें काफी प्रोत्साहन मिला।
3: बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने स्टार्टअप इंडिया योजना के तहत काफी सारा सपोर्ट इकोसिस्टम जो स्टार्टअप्स के लिए डेवलप कराया है, वो स्टार्टअप का एक बोन है जो कि उसको आने वाले टाइम में काफी स्ट्रोंगर करेगा।
1: सरकार के प्रयासों का नतीजा यह है कि देश में करीब 50% स्टार्टअप Tier 2 और Tier 3 शहरों से सामने आए हैं। संगीता श्रीवास्तव, आकाशवाणी समाचार, मेरठ।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गौतम बुद्ध नगर में उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो के चौथे संस्करण का उद्घाटन करेंगे। इस ट्रेड शो का आयोजन इंडिया एक्सपो मार्ट में 29 सितंबर तक किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
4: ट्रेड शो में वियतनाम, जापान, सिंगापुर, रूस, ऑस्ट्रिया और बेलारूस को पार्टनर कंट्री के रूप में शामिल किया गया है। इस आयोजन में 72 देशों और केंद्र शासित प्रदेशों से करीब 600 अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों के पहुंचने की संभावना है। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने एक प्रेस वार्ता में कहा कि इंटरनेशनल ट्रेड शो के माध्यम से उत्तर प्रदेश के स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराने के साथ ही प्रदेश के एमएसएमई सेक्टर को नई पहचान दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि स्टेट शो के समापन समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल होंगे। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
0: भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने वनस्पति तेल या स्टार्च से बने कृत्रिम पनीर की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया है। प्राधिकरण ने कहा है कि डेयरी संदर्भ में एनालॉग श्रेणी के अंतर्गत पहले से लाइसेंस प्राप्त या पंजीकृत उत्पादों को अपने नामकरण, लेबलिंग या विपणन में पनीर शब्द का उपयोग बंद करना होगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ विकास प्राधिकरण की वरुण विहार और नैमिष नगर आवासीय योजनाओं का भूमि पूजन किया तथा भूखंडों के पंजीकरण का शुभारंभ किया। ये परियोजना आगरा एक्सप्रेसवे के समीप 12,000 करोड़ रुपए से 10,680 एकड़ में विकसित की जा रही है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 2,166 करोड़ रुपए से प्रस्तावित 5 बहुमंजिला अपार्टमेंट का शिलान्यास भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि वरुण विहार 6,500 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल में विकसित होगा, जहां 6 लाख से अधिक लोगों के लिए आवासीय सुविधा होगी। नैमिष नगर 4,100 एकड़ में विकसित होगा और 4 लाख से अधिक लोग इसका लाभ ले सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि लखनऊ को केवल महानगर और जनपद तक सीमित न रखकर स्टेट कैपिटल रीजन के रूप में व्यवस्थित विकास किया जा रहा है।
5: ये आज की बढ़ती हुई आबादी की आवश्यकता को प्लांड वे में अर्बन डेवलपमेंट के इंटीग्रेटेड प्लान को आगे बढ़ाने की दृष्टि से ये अत्यंत आवश्यक था। एक जगह पर सभी प्रकार की सुविधा प्राप्त हो। आज के समय में जब एजुकेशन के एक हब के रूप में लखनऊ आगे बढ़ा है, हेल्थ केयर के नए हब के रूप में लखनऊ को नई पहचान मिली है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के एक नए केंद्र के रूप में लखनऊ आगे बढ़ा है।
0: इससे पहले मुख्यमंत्री ने श्री गोरखनाथ मंदिर में ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ की 57वीं और ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ की 12वीं पुण्यतिथि पर आयोजित समारोह को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने भारतीय ज्ञान परंपरा को आधुनिक तकनीक से जोड़कर नई पीढ़ी तक पहुंचाने का आह्वान किया।

0: एशियाई खेल 2026 में अमेठी जिले के सलमान खान ने रोइंग की पुरुष डबल स्कल्स में देश के लिए कांस्य पदक जीतकर प्रदेश का मान बढ़ाया है। वहीं सलमान और सतनाम सिंह की जोड़ी फाइनल में तीसरे स्थान पर रही। भारतीय जोड़ी स्वर्ण पदक विजेता चीन से 3.48 सेकेंड और रजत पदक विजेता उज्बेकिस्तान से 2.76 सेकेंड पीछे रही। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विजेताओं को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि दृढ़ प्रयास ने इस जोड़ी को पोडियम पर एक सुयोग्य स्थान दिलाया है। आगरा जिले के फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी से विधायक छोटेलाल वर्मा का कल नोएडा के एक अस्पताल में निधन हो गया। वो 73 वर्ष के थे। एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा विधायक के निधन पर गहरा शोक जताया है। लखनऊ, बलरामपुर और जौनपुर सहित कई अन्य जनपदों में रुक रुक कर हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। गोरखपुर और इसके आसपास के कई जिलों में लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए सुल्तानपुर जिले में वहां के जिलाधिकारी ने आज स्कूल कॉलेज बंद रखने के निर्देश दिए हैं। इस बीच मौसम विभाग ने 27 सितंबर तक प्रदेश में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अनुमान जताया है। विभाग के मुताबिक बारिश के कारण प्रदेश के अधिकतम तापमान में 5 से 8 डिग्री सेल्सियस की कमी आ सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडनगर से प्रदेश के वाराणसी तक यात्रा कर रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया संवाद। कहा, सेवा भावना देश की प्रगति की सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति है। गौतम बुद्ध नगर जिले में आज से शुरू हो रहा है उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो का चौथा संस्करण। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे उद्घाटन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में एलडीए की वरुण विहार और नैमिष नगर योजनाओं का किया शुभारंभ। कहा, 10 लाख से अधिक लोगों को मिलेगी आवासीय सुविधा। और प्रदेश के कई जिलों में बारिश का सिलसिला जारी। मौसम विभाग ने भारी बारिश जारी रहने और प्रदेश के अधिकतम तापमान में गिरावट का अनुमान जताया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। एपीजे अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
2: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा। सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
3: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।

माधुरी कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोतान को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, वंदे ब्रज वसुंधराम। ब्रज की आ पावन धरा को नमन करें, वंदन करें, आए जुड़े सब ब्रज के वासी। हमारे ब्रजवासी जब जुड़ जाएं तो लाला कन्हैया की बात, ब्रज की रीत रिवाजन की बात, आनंद की बात। और हमारे श्याम सुंदर सो सिर धरे पखौआ मोर के, श्याम सुंदर के सिर पे जो पखौआ मोर को दर्शन देखने को मिले, कुंजा फल फूलन के लटकन शोभत नंद किशोर के। क्वाल मंडली हमारे ब्रजवासी जब अगल बगल विराजे श्याम सुंदर की लीलान के दर्शन के काजे, तो ग्वाल मंडली मध्य विराजत कौतिक माखन चोर के, परमानंद दास को ठाकुर हरत नैन की खोर के, सिर धरे पखौआ मोर के। भैया ऐसे लीलान की भूमि, ब्रज भूमि, आनंद की भूमि। और एक चर्चा और आप सो करें, आज आपको सुनमा में रास लीला सांझी पूजन। सांझी उत्सव हमारे ब्रज की अनूठी परंपरा उत्सव है, ये ब्रजभूमि उत्सव में है। यह उत्सव मुख्य रूप से भाद्रपद पूर्णिमा अमावस तक 15 दिन तक हमारे संपूर्ण ब्रज मंडल में खूब खूब देखने को मिले। राधा प्यारी कहो सखिन सो सांझी धरोरी माई, पिटिया बहुत ब्रजवासिन मिल गई जहाँ फूलन अथाई, करसों कर राधा संग शोभित सांझी चीती जाए सूरदास, अब चल यह जोरी सुख निरकत ना खाए। ऐसो सुख ब्रजमंडल में, ऐसो ब्रज माधुर्य, ऐसे ब्रज भूमि को रस आपको सुनमा में सांझी पूजन। लेखक बी आजाद मथुरावी और प्रस्तुति TN शर्मा की है। तो आनंद लियो या रास लीला को।

0: सीता, चंपक लता, अरिनेक यहाँ तो आओ।
1: हाँ किशोरी जू, अब ही आए।
2: हाँ सामिनी जू, कहाँ आ गया है?
0: अरे सखियो, आज कछु ऐसी इच्छा है रही है कि हम सब विपिन में चल के साझी चितवे को फूल बीन लामे। हे ललिते चंपक लते, चलो चमन में आज फूल बीन लामे सखी निज साझी के काज। अरे वीर, आज साझी है फूलंत चितवे के काजे, मेरे मन में प्रबल उत्कंठा भई है।
1: जैसी स्वामिनी जू की इच्छा, चलो।
2: आपकी दासी तो सदा आपके संकेत की प्रतीक्षा में रहे हैं स्वामिनी जू।

0: चलो ना किशोरी जू, अब विलंब काहे की है।
1: हाँ सखी चलो।
2: चलो वीर जल्दी चलो, फूलन की तई डलिया मेले ले लेनी है।

0: यही वन में बिहार कर रहे होंगे। आहा फूलन बीनत आज प्राण पति जो पाऊं, सजल जलत वपु निरख ड्रगन भर भर लाऊं, मोर मुकुट मुरली पीतांबर यह छवि हृदय समाऊं, बाकी चाल मधुर चितवन पे हार ही और जे जाऊं।
1: जी किशोरी जो ये फूल बीनत में कछु अनमनी सी कैसे है जाओ हो।
0: अरे सखी हाँसी करे है, आज मेरा चित कछु उड़ास हो जाए रहो है, तुम सबने फूल बीनो, मैं वह कुंज में विश्राम कर ल।

0: यहाँ को बीनत है चोरी, करत प्रकाश फिरत या बन में गजगामनी तन गोरी। हिये माही जल बल चतुराई, देखत मैं अति भोरी। नारायण या ठौर काहू की, चलत नहीं बर जोरी।
1: अरे सखियों देखो कैसा भला अवसर है, यहाँ तो श्याम सुंदर रूप धारे भये हैं। जय हो हमारी प्यारी जुकी। अरे वीर याई ले विश्राम को वहानो कियो का। किशोरी जू अब आप ही बताओ जी, कहाँ कियो आपने हमारे संग फूल बीनवे के ताई आई और यहाँ वन में हमको अकेला छोड़ गई।
2: सुन सखी, फूलन बीनन में गई जहाँ जमुना कूल द्रुमन का तीर। उरझ गई एक द्रुम की डारी, तही छिन मेरा अंचर वीर। तहात कोई निकस अचानक आयो, मालती लता सघन निवारी। बिनही कहे मेरा पट सुर झावत, एक टक मोदिस रहो निहारी। अरे वीर मैं तो फूल बीनवे की काजे जमुना कूलन पे चली गई, परंतु वहाँ मेरा पट काउ द्रुम की डारी में उरज गयो। मैं वाय सुरझा रही कि बेग सीना श्याम सुंदर वहाँ अचानक आए के मेरा पट सुरझाए वे लगे।
1: फिर क्या भयो?
2: अरे वीर हौसक चत झुक दबी जात इत, उत वह नैनन हा हा खाए। मन उरझाए बसन सुरझायो, कहा कहो है लाज की बात।
0: अजी हमने तो तैयारी सखी से कछु ना कही है, एक तो इनको पट सुलझाया है, उल्टा दोष और दे रही है। पर जे तो बताओ तुम कौन हो।

0: अजी श्याम सुंदर, ये बगीचा का तुम्हारा है कि तुम्हारे बाप को है? तो हमें फूल बीनवे से टोक रहे हो तुम?
1: अरे सखियों, ऐसी टेढ़ी टेढ़ी चौ बोल रही हो? ऐसे सघन वन में कोई ना आवे, इकली तुम ही पाई हो। और न संग को एक जात जुबती हो, बिन ही बिचारे जोर जोवन के धाई हो। अब फिर जाओ आप अपने भवन सब, थोर सु इकोसी फिरो मदन दुहाई हो। कहो तुम नागर हो, हमें समझाए कहो, कौन की पठाई यहाँ, कौन काज आई हो?
2: लाला ऐसे बड़ बड़ के बोलो हो।
3: फूलन के बीनन को आई इही बन मिली, बूझ वे को ही है ऐसी धरनी क्यों।

0: ये चितौन दिसे टेढ़ी टेढ़ी बातें कहो, टेढ़े हुए के ठाड़े छवि छैल रोके हरी। उचित नहीं है अकेले रहो जुवतिन में, ना तो अनबोले रहो छाणी मग मेरो। हम आमेंगी हजार बेर तुमको कहा परी।
1: अरे सखी कहा को, हम आमेंगे हजार बेर तुमको कहा परी। तुम जानो ना हो का, हमई को चिंता इही बन की रहित नित, नित रखवारे रहे लागे चित चेत हैं। हम आवे जामे सेवे काम नप धाय है, सहे घन घाम अति ताते ही हेतु हैं। हम ही तो गहवर हरियो है रहो है, महानागरिया प्यारी मीन केत रस खेत है। हम ही को देखे कछु लीनो ऐसो ले लियो, पराए फल फूलन को कौन लेत देत है।
0: तो महाराज कहा है परायो, सब दिसत है राधे ही को। बिना ही विचारे झूठे वचन उचारे जू, राधे ही की भूमि यह, राधे ही के खग मृग, राधे ही के नाम रहे सांझ और सकारे जू। राधे ही के सरवर ये तरवर हैं राधे जू के, राधे ही के फूल फल नागर निहारे जू। राधे की दुहाई फिरे राधे ही को वृंदावन, तुम कौन लला बीच हटकर निहारे जू।

0: प्रकार।
1: अरे सखियों, जब ये सब राधे जी को है तो तुम्हें हम ही से का पैजे। राधे जू के हमें ही अपनाए लियो, जो मुख सुधा घट देख देख जीजिए। निकट बुलाए मोही पायन लगाए रखो, सखी हो कुवरी जू को खुन सिन कीजिए। हारे हमु आगे वन द्रुमु यति हारे, अब नागरिया दुहु और रस घन भीजिए। नीको सन मान कछु करी रखवारन को, पाछे बहु फूलन को लीजिए। अरे ऐसो रिस क्यों करो हो, लाओ हमू तिहारे कछु फूल बिंदे।
2: बस तुम्हारी ही कृपा चाहिए श्याम सुंदर।

भाई आपने आनंद लियो, बी आजाद मथुरावी की लिखी रासलीला सांझी पूजन को यह के प्रस्तुत करता है।

एन शर्मा। भैयाओ, ऐशो आनंद, कृष्ण और राधा रानी की लीलान पर आधारित यह परंपरा लोक कला भक्ति संस्कृति को एक अद्भुत संगम है। ब्रज की साझी परंपरा पर अगर बात करें तो लोक कला को दिव्य संगम है। कलाकृति बहुत सुंदर, बल्कि यह ब्रजवासीन की अगाध कृष्ण भक्ति को प्रतीक है। परंपरा द्वापर युग में स्वयं राधा रानी ने भगवान कृष्ण को रिझावे के काजे उन्हें प्रसन्न करने के लिए प्राकृतिक रंगन की फूलन की पत्तिन की साझी बनाई। यही कारण कि आज भी ब्रज में या को बड़ो आनंद पवित्र पूर्व सात्विक भाव सो खूब खूब बनाया जाए। और हम तो एक ही बात कहें, ब्रज को सो स्वाद तिहु लोक ना निहारो शाम, कोट तीर्थन यह माथे को टीको है, रस की रसायन और प्रेमिनी की खान जहाँ, ब्रह्महु टटोरियो यानी ब्रज गोपिन को छीको है। यही के संग आज को ब्रजमाधुरी कार्यक्रम अब संपन्न हुए है। सब ब्रजवासीन को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।

0: सुन रहे थे ब्रजमाधुरी कार्यक्रम, आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दूसरे दिन सेवा यात्रा के प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। देश को विनिर्माण राष्ट्र के रूप में बदलने के उद्देश्य से शुरू की गई मेक इन इंडिया पहल के आज 12 वर्ष पूरे। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने एनालॉग पनीर के उत्पादन और बिक्री पर देश भर में प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया। चौथा यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो आज से उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में शुरू होगा। जापान एशियाई खेलों में कमलजीत और सुरुचि सिंह की जोड़ी मिक्स्ड टीम 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा के फाइनल में पहुंची और मौजूदा चैंपियन भारत ने समरकंद में फिडे शतरंज ओलंपियाड के 8वें दौर में अजरबैजान के साथ मुकाबला ड्रॉ पर समाप्त किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: इस कार्यक्रम में सेवा यात्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपने अनुभव साझा करेंगे। ये यात्रा 17 सितंबर को शुरू हुई थी और 7 अक्टूबर तक चलेगी। यात्रा के दौरान युवा विभिन्न राज्यों, जिलों, तहसीलों और गांवों से गुजरते हुए स्थानीय लोगों से संवाद कर रहे हैं और जनसेवा से जुड़ी गतिविधियों में भाग ले रहे हैं। सेवा यात्रियों ने स्वच्छता अभियान चलाने के साथ साथ स्कूलों, अस्पतालों, नर्सिंग होम और अन्य सामुदायिक स्थानों पर लोगों से मुलाकात की और सेवा कार्यों में हिस्सा लिया। वाराणसी और वडनगर के बीच विभिन्न स्थानों में चल रही इन मोटरसाइकिल यात्राओं का उद्देश्य युवाओं को जनसेवा और समाज से जोड़ना है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कल वडनगर से वाराणसी जा रहे सेवा यात्रियों से बातचीत की थी। उन्होंने यात्रियों से रास्ते के अनुभवों, लोगों के साथ उनके संवाद के बारे में जानकारी ली। श्री मोदी ने कहा कि देश के अलग अलग हिस्सों से गुजरने वाली ऐसी यात्राएं युवाओं को भारत की विविधता को नजदीकी से समझने का अवसर प्रदान करती हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जमीनी स्तर तक सेवा की भावना पहुंचाने में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है।
3: इस वर्ष लाल किले से शक्ति की जिन सप्त धाराओं की चर्चा मैंने की है उनके विषय में भी लोगों से बात करनी है। मैन्युफैक्चरिंग की धारा, टेक्नोलॉजी इनोवेशन की धारा, कनेक्टिविटी की धारा, ऐसी 7 धाराएं विकसित भारत के निर्माण की बहुत बड़ी ऊर्जा बनेगी और इस ऊर्जा को देश के हर नागरिक से ही

0: गति मिलेगी। तो आपकी ये ऊर्जा, आपके ये अनुभव विकसित भारत की यात्रा को और गति देंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि कैसे श्री अन्न यानी मिलेट्स के माध्यम से इस दृष्टिकोण को व्यवहारिकता में लाया गया है।
2: भारत की पारंपरिक कृषि व्यवस्था में बाजरा, ज्वार, रागी, कोदो, कुटकी, सावा और राजगिरा सदियों से भोजन का हिस्सा रहे हैं। इन्हें श्री अन्न के नाम से आज व्यापक रूप से प्रोत्साहित किया जा रहा है। भारत सरकार ने श्री अन्न को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के रूप में मनाए जाने के बाद श्री अन्न को वैश्विक स्तर पर पहचान मिली है। श्री अन्न में फाइबर, प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और कई अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये मधुमेह, मोटापा और हृदय रोग सहित कई बीमारियों में लाभकारी है। जयपुर के सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ आचार्य डॉक्टर पुनीत सक्सेना का कहना है कि श्री अन्न ग्लूटेन फ्री है और गेहूं और चावल की तुलना में अधिक पौष्टिक है।
3: मिलेट्स, जिसको कि हम मोटा अनाज या श्री अन्न भी कहते हैं, और इसमें हम मोटा मोटा बात करते हैं बाजरा की, ज्वार की, रागी की, रिफाइंड सीरियल्स के मुकाबले इनमें न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स एंड प्रोटीन की मात्रा, फाइबर की मात्रा, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है एवं ये ग्लूटेन फ्री होते हैं।
2: श्री अन्न कम पानी में उगने के कारण जल संरक्षण और जलवायु अनुकूल खेती को भी बढ़ावा देते हैं। राजस्थान में बाजरा और अन्य मोटे अनाजों की खेती पहले से ही बड़े पैमाने पर होती रही है। अब इनके उत्पादन के साथ साथ प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और बाजार उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया जा रहा है। किसानों को उन्नत किस्मों, बेहतर कृषि तकनीक और श्री अन्न आधारित उत्पादों के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
1: मेक इन इंडिया पहल के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्ष 2014 में आज ही के दिन इस पहल की शुरुआत भारत को विनिर्माण, डिजाइन और नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से की गई थी।
4: इस पहल का विस्तार मेक इन इंडिया 2.0 के तहत किया गया। अब ये पहल 27 क्षेत्रों पर केंद्रित है, जिनमें 15 विनिर्माण और 12 सेवा क्षेत्र शामिल हैं। इसके अंतर्गत भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन 2025-26 में 13 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। इसी अवधि में मोबाइल फोन का उत्पादन लगभग 33 गुना बढ़कर 18,000 करोड़ रुपए से 6,27,000 करोड़ रुपए हो गया। भारतीय रेलवे ने भी 2014 से 2024 के बीच करीब 55,000 कोचों का निर्माण किया। देश में स्वदेशी रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए हो गया है। अब यह पहल भारत में इन वस्तुओं के निर्माण के लिए आवश्यक कौशल, प्रौद्योगिकी और क्षमता विकसित करने पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। प्रिया मंडल के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
5: आपका स्मार्टफोन हो या हेडफोन, अप्लायंसेस हो या कार, या वो रॉकेट जो आपके डिवाइस पे सैटेलाइट सिग्नल्स भेजता है, हर वो चीज जिसे पाने के लिए हम कभी दुनिया की तरफ देखते थे, आज खुद बनाते हैं और पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। एक सोच से शुरू हुआ ये सफर और 12 साल में इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 6 गुना बढ़ी, मोबाइल फोन 32 गुना और एक्सपोर्ट्स 84% बढ़ गए। मेक इन इंडिया ने इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर दी एक मजबूत पहचान।
6: भारत ग्लोबल बिजनेसेस के लिए नए अवसरों का केंद्र बन रहा है, इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट विद इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने पनीर के नाम पर बेचे जा रहे एनालॉग उत्पादों के निर्माण और बिक्री पर देश भर में रोक लगाने का प्रस्ताव दिया है। एक रिपोर्ट।
7: प्राधिकरण ने एक अधिसूचना में कहा है कि डेयरी संदर्भ में एनालॉग श्रेणी के तहत लाइसेंस प्राप्त या पंजीकृत उत्पादों के नाम, लेवल और प्रचार में अब पनीर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा।

0: प्राधिकरण ने एनालॉग पनीर से जुड़े नियमों में बदलाव का प्रस्ताव रखा है। इसका उद्देश्य ऐसे उत्पादों के निर्माण और बिक्री को सीमित करना है ताकि उपभोक्ताओं को उत्पाद की प्रकृति और उसमें इस्तेमाल सामग्री को लेकर भ्रमित न किया जा सके। प्राधिकरण ने यह प्रस्ताव खाद्य सुरक्षा और मानक बिक्री पर निषेध और प्रतिबंध विनियम 2011 में संशोधन के अंतर्गत रखा है। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीषा।
1: उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का चौथा संस्करण आज से उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में शुरू होगा। गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 दिन तक चलने वाले इस आयोजन का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस वर्ष आयोजन का विषय है बेहतरीन खरीदारी की शुरुआत यहीं से।
2: 85 देशों से 550 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों के इस आयोजन में भाग लेने की उम्मीद है। इस संस्करण के साझेदार देशों में ऑस्ट्रिया, जापान, रूस, सिंगापुर, बेलारूस और वियतनाम शामिल हैं। इसके अलावा व्यापार और उद्योग में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाते हुए करीब 300 महिला प्रतिनिधि भी आयोजन में भाग लेंगी। प्रदर्शनी में कृषि, ऑटोमोबाइल, रक्षा, आईटी, स्वास्थ्य, पर्यटन और नवीकरणीय ऊर्जा सहित विभिन्न उद्योगों और क्षेत्रों को प्रदर्शित किया जाएगा। इस वर्ष का एक प्रमुख आकर्षण एक जिला एक व्यंजन पहल की शुरुआत है। इसे एक जिला एक उत्पाद योजना के साथ प्रदर्शित किया जाएगा। आयोजन में ज्ञान सत्र, फैशन शो और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। अंकित कुमार के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 8 वर्ष और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के 5 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आरोग्य मंथन 2026 कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। मध्य प्रदेश में आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा की शुरुआत की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल में इस सेवा की शुरुआत करेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि 21 वर्ष से बंद सार्वजनिक बस सेवा अब फिर से शुरू की जा रही है।
3: सेवा संकल्प सप्ताह के अंतर्गत मध्यप्रदेश सरकार 21 साल बाद वापस लोक परिवहन की बस सर्विसेज की सेवा शुरू करने जा रही है। ये अपने आप में यूनिक मॉडल है। आधुनिकतम नई तकनीकी ई बस सेवा से लगा करके सभी प्रकार की सर्व सुविधाएं, सभी प्रकार की बसें चरणबद्ध रूप से लगभग हर नगर, हर जिला तक हम अपने नीचे तक नेटवर्क ले जाने वाले हैं।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री मोदी ने कहा कि पंडित दीनदयाल का अंत्योदय का दर्शन आज भी जनकल्याण और राष्ट्र की प्रगति के लिए प्रेरणा देता है। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और इससे सटे दक्षिण ओडिशा के ऊपर बना गहरा दबाव अब कमजोर होकर निम्न दबाव के क्षेत्र में बदल गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ओडिशा के कई हिस्सों में तेज बारिश जारी है।
4: कमजोर पड़े डिप्रेशन के असर से दक्षिणी और पश्चिमी उड़ीसा के कई हिस्सों में भारी बारिश जारी है। राज्य सरकार के अनुसार दर्जनों ब्लॉक और गांवों में बारिश का असर देखा गया है और 8,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। बालेश्वर जिले के मथानी में जलका नदी में बाढ़ की गंभीर स्थिति है और बस्ता के कई निचले इलाकों में पानी भर गया है। मौसम विज्ञान विभाग ने उड़ीसा में बारिश जारी रहने का अनुमान लगाया है। अधिकारियों ने संवेदनशील इलाकों में आपदा प्रतिक्रिया टीमों को अलर्ट पर रखा है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: और अब जापान में जारी एशियाई खेलों की ताजा जानकारी के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह।
5: जापान एशियाई खेलों के 7वें दिन आज भारतीय खिलाड़ी कई स्पर्धाओं में पदक के लिए दमखम आजमा रहे हैं। कमलजीत और सुरचित सिंह की जोड़ी ने आज 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम स्पर्धा के फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी ने क्वालिफाइंग राउंड में पहला स्थान हासिल किया। वहीं कबड्डी के सेमीफाइनल मुकाबलों में आज भारतीय पुरुष टीम का सामना थाईलैंड और महिला टीम का नेपाल से होगा। भारत के पुरुष और महिला टीमों ने कल अपने अपने ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल करते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। भारत ने कल 5 पदक जीते। इसके साथ ही भारत के कुल पदकों की संख्या 17 हो गई है, जिसमें 1 स्वर्ण, 7 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी पदक विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी है।
1: और फिडे शतरंज ओलंपियाड के 8वें दौर में डिफेंडिंग चैंपियन भारतीय पुरुष शतरंज टीम ने कल समरकंद में अजरबैजान के साथ 2-2 से ड्रॉ खेला। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं अलका सिंह।
6: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों ने आज अलग अलग खबरों को अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। अमर उजाला ने चिंतन शिविर में प्रधानमंत्री

नरेंद्र मोदी द्वारा सभी मंत्रालयों से 5 वर्ष की आगामी रूपरेखा मांगने के निर्देश को अपनी सुर्खी बनाया है। राजस्थान पत्रिका ने इसी खबर पर सुर्खी दी है, फाइलों से निकले मंत्री, जमीन पर देखें योजनाओं का लाभ। वडनगर से वाराणसी तक सेवा संकल्प यात्रियों से संवाद के दौरान प्रधानमंत्री का बयान, सत्ता कितनी भी बड़ी हो हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा, लोक सत्ते में है। पत्र ने वैश्विक साइकिलिंग कार्यक्रम के

0: अपनाए।
1: उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की अनुमन्य सुविधाओं हेतु कृषि विभाग से संपर्क करें। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
2: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिन बन गया।
3: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
4: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: सुनते हैं चित्रपट संगीत के कार्यक्रम में कुछ फिल्मी नगमे। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म लैला मजनू से, आवाजें हैं लता मंगेशकर और साथियों की।

उदित नारायण और साथियों को अभी आपने सुना फिल्म महबूबा में, और आइए सुनते हैं आशा भोसले, मोहम्मद रफी और साथियों को। फिल्म का नाम है फागुन।

गीतांजलि में इस समय आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत के कुछ नगमे आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। नाम है घर का चिराग, आवाजें हैं शाबिर कुमार, अलीशा चिनाई और साथियों की।

शाबिर कुमार अलीशा को अभी आपने सुना फिल्म घर का चिराग में, और आइए सुनते हैं कार्यक्रम में ये अगला गीत।

लता मंगेशकर, अमित कुमार और साथियों के गाए फिल्म आखिर क्यों के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम गीतांजलि चित्रपट संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं स्वास्थ्य कार्यक्रम में भेंट वार्ता। विषय है कमर एवं रीढ़ की हड्डी का दर्द, कारण, लक्षण और निवारण। और विशेषज्ञ हैं डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता, वरिष्ठ न्यूरोसर्जन। आपसे भेंट कर रहे हैं OP सिंह।

0: नमस्कार डॉक्टर सुनील गुप्ता साहब हमारे साथ हैं, न्यूरो सर्जन। आप आकाश सिम्स हॉस्पिटल मथुरा में सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत।
1: धन्यवाद।
0: जी, कि जो कमर और पीठ का दर्द अक्सर 40 के बाद, 50 के बाद लोग ये शिकायत करते हैं कि भाई आज कमर दर्द कर रही है, आज हमारी पीठ दर्द कर रही है। तो कभी कभी तो समसामयिक हो गया कि भाई बुखार आ गया, कोई बीमारी है, लेकिन ओल्ड एज में अक्सर ये समस्या बनी रहती है। तो थोड़ा विस्तार से बताइए कि जो कमर और पीठ का दर्द है, किन किन कारणों से एक सामान्य व्यक्ति माने कि इनसे हो सकता है, सिर्फ ओल्ड एज ही नहीं, बीमारी नहीं, बल्कि और भी बहुत सारे मुझे लगता है ऐसा कारण होंगे। तो एज ए न्यूरो सर्जन आप हमारे श्रोताओं को शुरुआत में बताइए क्या है ये कमर पीठ का
1: कमर का
0: दर्द।
1: जो दर्द है, जब हम ओपीडी में बैठते हैं तो ज़्यादातर पेशेंट कमर दर्द या गर्दन में दर्द या बैक में दर्द या रीढ़ की हड्डी में दर्द, इस तरीके के हमें आते हैं। तो इसके जो कारण होते हैं, अगर हम उन पे गौर करें, तो एक तो होता है जन्मजात कारण। कुछ
0: जी
1: कारण जन्म से होते हैं जिनको हम स्पाइना बाइफिडा ऑकल्टा कहते हैं, जिसमें रीढ़ की हड्डी की जो बनावट होती है जन्म से कुछ फॉल्टी होती है। और कुछ होते हैं जो कारण अक्वायर्ड होते हैं, जन्म के बाद आते हैं,
0: जी जी
1: जिनमें होता है पोस्ट ट्रोमेटिक, कोई चोट लग गई हो रीढ़ की हड्डी में पहले, उसमें कोई स्पाइन में फ्रैक्चर हुआ हो या कोई लिगामेंट में फ्रैक्चर हुआ हो, कोई टीयर हुआ हो। फिर तीसरा आता है डिस्क प्रोलैप्स, ये सबसे ज़्यादा कॉमन कारण है अडल्ट और मिड एज में,
0: जी
1: के डिस्क स्लिप हो गई और वो नस को दबा रही है, उससे दर्द कमर में भी हो रहा है और पैर में भी जा रहा है, जिसे आम लोग सियाटिका का दर्द कहते हैं।
0: हाँ, कि भाई यहाँ से शुरू हो रहा है, पूरे दाएं में जा रहा है, बाएं में
1: हाँ
0: जा रहा है, तो वो ये है
1: हाँ
0: उसका।
1: वो भी इस तरीके से प्रेजेंट करता है। और कुछ होते हैं स्पाइनल ट्यूमर्स, स्पाइनल ट्यूमर्स

0: कुछ बच्चों में भी देखने को मिलते हैं जिनको हम कंजेनाइटल ट्यूमर्स भी बोलते हैं, और कुछ अक्वायर्ड होते हैं, बाद में होते हैं जन्म के बाद।
1: तो
0: जो
1: जी आपने कहा जन्मजात भी हो सकते हैं और बाद की लाइफ में भी हो
0: हो
1: सकते
0: सकते हैं।
1: हैं। कई बार कोई चोट लग गई, फिसल गए, हमने नज़रअंदाज कर दिया वो चोट, अब बाद में जब ओल्ड एज हो रही तो निकल करके आ रहे हैं। अब इसमें जैसे बहुत सारे लोग तो जो काम इस तरह का कर रहे हैं, जैसे सिटिंग ही है, लंबे समय तक बैठ के काम कर रहे हैं, या वजन का काम कर रहे हैं, जिन्हें दिन में 50 बार वजन उठाना ही उठाना है, तो उन लोगों के ये समस्या क्या जल्दी हो सकती है
0: उनको बेसिकली जैसे अगर कंटिन्यूस सिटिंग कर रहे हैं और रॉन्ग पोस्चर में अगर हम बैठ रहे हैं
1: क्या?
0: तो डिस्क डिजनरेशन होने का चांस ज़्यादा रहता है, डिस्क प्रोलैप्स होने की समस्या उनको ज़्यादा रहती है। या कोई हैवी वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, जर्की रोड्स पर ड्राइव कर रहे हैं या झटके से कुछ उठा रहे हैं, तो उससे डिस्क स्लिप होने की संभावना ज़्यादा रहती है, या स्पाइन फ्रैक्चर हो सकता है।
1: जी।
0: तो
1: आपने रोड की बात की, जैसे रोड खराब है और हम बाइक से जा रहे हैं, तो अब शरीर संग दे रहा है आज सहन करके, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि चोट लग गई, आपने केयर ही नहीं की, कुछ एक दो दिन दर्द हुआ और वो बाद में फिर लंबा
0: यस
1: जाके
0: ये
1: दिखा।
0: भी होता है, उससे स्पाइन का डिजनरेशन ज्यादा होता है जर्की रोड पे ड्राइव
1: जर्की
0: करने
1: रोड।
0: से।
1: जी। तो अब जैसे पता कैसे लगे कि ये समस्या स्पाइन की है? कई बार आदमी समझ नहीं पाता, सही जगह पहुंच नहीं पाता, डायग्नोस नहीं हो पाता, होता कुछ है और इलाज कुछ का चलता रहता है, ये
0: यस
1: चीजें मेडिकल के साथ बहुत हो रही है उसमें।
0: हाँ, तो उसी के लिए हम आपके यहाँ आके लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि अगर स्पाइन की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपको एक स्पेशलिस्ट न्यूरोसर्जन से मिलना चाहिए जो उसकी पैथोलॉजी को डायग्नोज कर सके कि वो कौन सी पैथोलॉजी है, कंजेनाइटल में आ रही है, एक्वायर्ड में आ रही है, जन्मजात है या जन्म के बाद हुई है, और जन्म के बाद हुई है तो वो पोस्ट ट्रोमेटिक है या कोई ट्यूमर है या कोई डिस्क प्रोलैप्स है, कौन सी समस्या है।
1: जी। अब जैसे आप बाई बर्थ की कह रहे हैं कि एक व्यक्ति ने जन्म लिया, वो तो छोटा है, समझ नहीं पा रहा, तो फिर अब पेरेंटिंग की बात है, पर जो लोग लुक आफ्टर करें, कब पता लग जाता है कि भाई ये जन्म जात हो सकती है?
0: कुछ कुछ समस्याएं जैसे स्पाइना बाइफिडा ऑकल्टा है, वो उसको बाहर से पीछे पीठ पे कोई हेयर्स होंगे, वो एक निशान है, या कोई फोड़ा होगा वो तो दिख जाएगा तो वो समझ जाएंगे पेरेंट्स, तो आ जाएंगे।
1: जी।
0: लेकिन जो ऑकल्टा होता है, स्पाइना बाइफिडा मैनिफेस्टा में तो पीठ पे फोड़ा रहता है तो वो तो दिख जाता है, वो तो आ जाते
1: वो
0: हैं।
1: तो समझ, कोई
0: लेकिन
1: वार
0: हाँ
1: हो रहा है समझ
0: हाँ
1: जाएंगे उसमें।
0: लेकिन जो स्पाइना बाइफिडा ऑकल्टा है उसमें ये पता नहीं चल पाता है, बस उस पर एक बाहर निशान होता है, बाहर पीठ पे एक हेयर्स का गुच्छा जैसा होता है हल्का सा। तो कुछ पेशेंट, कुछ जो पेरेंट्स हैं जो समझदार हैं, वो फिर आएंगे लेके स्पाइन की कोई प्रॉब्लम है, तब हम उसकी जांच करेंगे एमआरआई से, तो हमें अंदर की जो एबनॉर्मलिटी है वो पता चल जाएगी।
1: मतलब जागरूकता
0: जागरूकता का
1: का
0: इसमें
1: विषय है
0: विषय
1: इसमें,
0: है ये।
1: इसीलिए हम जो है जागरूकता ही शब्द इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें जैसे कारण आपने बताए, इसमें लक्षण सिर्फ एक दर्द ही है, जैसे आपने कहा उभार भी हो सकता है, बाल भी हो सकते हैं, या
0: उसके
1: कंटिन्यू दर्द हो रहा है?
0: उसके जो स्पाइनल पैथोलॉजीज होती हैं उनके बैक पेन एक लक्षण है, पैरों में सुन्नपन दूसरा लक्षण है, लैट्रिन पेशाब का कंट्रोल ना होना ये तीसरा और चौथा लक्षण है। यूजली जो सबसे कॉमन होता है वो बैक पेन होता है जो स्पाइन की प्रॉब्लम्स हैं, फिर दूसरा उनमें सुन्नपन रह सकता है पैरों और हाथों में, पैरों में
1: कोई
0: सॉरी
1: नस दब
0: हाँ
1: रही
0: नस
1: है।
0: दब रही है और सुन्नपन रह सकता है, और वीकनेस पैरालिसिस भी हो सकती है पैरों में।
1: डॉक्टर साहब, अब जिस तरह का हमारे भारतीय समाज है उसमें हम देखते हैं कि हर व्यक्ति डॉक्टर रहता है उसमें, आप किसी कोई कुछ भी बात करें हम सलाह तुरंत दे देते हैं।
0: हाँ
1: चलिए दादी नानी का तो हम मान लेते हैं कि अनुभव से होगी, लेकिन आज तो हर व्यक्ति आपको सलाह दे के चला जाता। तो एक अच्छा डॉक्टर और एक अच्छा हॉस्पिटल, वहाँ तक पहुँचना एक रोगों के निदान में और समाधान में, कितनी इम्पोर्टेंस इस बात को मानते हैं कि एक सही समय पे व्यक्ति सही जगह पहुंच जाए और एक अच्छे डॉक्टर के पास पहुंच
0: ये
1: जाए?
0: इसमें आपकी बहुत बड़ा रोल है, अगर आप सही समय पे सही जगह पे पहुंच जाएं तो एटलीस्ट आपकी 50% समस्या तो वहीं पर ठीक हो जाती है। सही सलाह मिलना आज की डेट में बहुत ही
1: मुश्किल हो रहा है
0: हाँ
1: थोड़ा सा।
0: मुश्किल।
1: जी। कई बार हम सलाह को मान भी लेते हैं, जैसे किसी ने कहा कि मेरे हुआ था यार, मैंने ये किया, अब वो समस्या आप उसकी क्या समस्या रही होगी,

0: इस ट्रीटमेंट से ठीक हो गया, लेकिन वो मेरे लिए सुटेबल होगा ये जरूरी थोड़ी।
1: ये जरूरी नहीं है, वो एक्सपर्ट ही आपको बताएगा कि आप उनकी समस्या, स्पाइन की इतनी सारी पैथोलॉजीज हैं, तो दो लोगों की समान हो सकती है और नहीं भी हो सकती है।
0: डॉक्टर साहब, आजकल ओवरवेट की समस्या बहुत है, बहुत सारे लोग बल्कि हो जाते हैं, चाहे वो उनके व्यवहारगत हो, जीवन शैली हो, या फिर किसी और कारण से। अगर वेट बढ़ रहा है, हमारी उम्र और हमारी हाइट के हिसाब से ज़्यादा हो रहा है, तो क्या वो भी कारण बन सकता है?
1: यस,
0: बैक
1: यस जी, जिनका जो ओवरवेट होते हैं उसमें स्पाइनल डिजनरेशन काफ़ी फास्ट होता है, तो उसमें स्पाइन की समस्या नॉर्मल पॉपुलेशन से ज़्यादा देखने को मिलती है, और उसमें डिस्क डिजनरेशन और बोन डिजनरेशन, स्पाइनल बोन डिजनरेशन ज़्यादा होता है।
0: तो मतलब ओवरवेट भी एक समस्या इसकी हो सकती है। इसमें जैसे बहुत सारी बीमारियां डॉक्टर साहब ऐसी, जैसे अपन इसकी थायराइड की बात करें, अपने डायबिटीज़ की बात करें, वहाँ लंबे समय तक दवाइयाँ चलती रहती है, शरीर की इम्यूनिटी भी जाती है, कमज़ोर हो जाता है, तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे?
1: उन लोगों के लिए जैसे डायबिटीज़ है, इनको ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या होने की संभावना ज़्यादा रहती है, तो इनको डायबिटीज़ को वेल कंट्रोल रखना है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, वेट को कंट्रोल रखना है, तो इससे स्पाइन की हेल्थ इनकी बेटर रहेगी।
0: जी जी डॉक्टर साहब, जैसे पोस्चर की बात हम कर रहे थे, लोगों की कुछ जैसे कुर्सी पर बैठे तो वो बैठते ही इतने आराम में आ जाते हैं कि वो आगे खिसक जाते हैं, कुर्सी को आधा बिस्तर बना लेते हैं, तो ये जो जीवन शैलियाँ हैं, हम थोड़ा सा आराम तलबी की तरफ जा रहे हैं, या घर में है तो फिर बिस्तर पर ही लेट रहेंगे, कई बार गर्दन बहुत ऊंची करके लेट रहते, तो ये चीज़ें भी क्या,
1: ये चीज़ें भी
0: मायने रखते
1: हैं? यस, स्पाइनल डिजनरेशन में ये चीज़ें भी मैटर करती हैं।
0: मैटर करती हैं, जिन लोगों की बैठे रहने की वो है, वो क्या करें, बीच बीच
1: में थोड़ा बीच बीच में एक दो घंटे में उठ के आप 10-15 मिनट वॉक करें तो ठीक रहता है।
0: ठीक रहता है, मतलब काम कितना भी हो लेकिन आप उसको अपने स्वास्थ्य और शरीर को दांव पे नहीं लगा सकते।
1: हाँ
0: जी जी जी। अब इसमें हमने रोड की बात की, बहुत सारे लोग बाइकर होते हैं या जिनका कंटिन्यू फील्ड का काम है, वो पूरे दिन, बहुत सारी आजकल तो कंपनी आ गई है, हम घर बैठे सामान भी मंगा लेते हैं, वो करते हैं, तो जो कंटिन्यू वो कर रहे हैं उस पर थोड़ा सा बताइए। जिन लोगों को बाइक पर ही चलना है, फील्ड का काम है,
1: उनमें सर स्पाइनल डिजनरेशन की समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है,
0: मिल जाती है उसमें, तो फिर वो क्या करें सर उसमें?
1: उनको
0: काम तो है,
1: काम तो है, वो करना ही है।
0: हाँ।
1: उसमें बस यही है कि पोस्चर को अपना ठीक रखें।
0: तो निदान आप क्या मानते हैं कि एक अच्छा निदान एक अच्छा इलाज की पृष्ठभूमि बना सकता है?
1: यस, आपको सही स्पेशलिस्ट के पास पहुंचना है। स्पाइन की जो भी पैथोलॉजी है, आज उनके इतने एडवांस सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। पहले लोगों के मन में भ्रम रहता था कि स्पाइन का कुछ भी ऑपरेशन हुआ तो लकवा हो गया, ऐसा नहीं है। स्पाइन की जो भी समस्याएं हैं उनका 99.99% सेफ इलाज है। इनिशियली हम दवाइयों से और एक्सरसाइज से ही उनको करते हैं, और जिन पेशेंट्स को ज्यादा परेशानी होती है उनकी हम दूरबीन से सर्जरी करते हैं, एंडोस्कोप से और माइक्रोस्कोप से।
0: अब तो बहुत अंदर तक इतना मतलब एडवांस हो गई है साइंस कि हम हर चीज को देख ले रहे
1: हैं। हम लोग अपनी उनसे हमें हर चीज पैथोलॉजी अलग दिखाई देती है, नस अलग दिखाई देती है, बीमारी अलग दिखाई देती है।
0: डॉक्टर साहब, चलते चलते क्या कहना चाहेंगे कि भाई समस्याएं छोटी हो या बड़ी हो, निदान बहुत जल्दी हो जाना चाहिए। कई बार दुख के साथ रहने की आप आदत न डालें, दर्द के साथ। साइंस
1: चलते चलते मैं यही कहना चाहूँगा कि आकाश एम्स विश्व स्तरीय सुविधा है आपके मथुरा में। जो इलाज पहले अमेरिका में मिला करता था, जो इलाज दिल्ली के बड़े सेंटर्स पे मिला करता था, वैसे जो विश्व स्तरीय इलाज हैं रीढ़ की हड्डी के, वो आपके घर में उपलब्ध हैं। तो ऐसी कोई भी समस्या है तो आप उससे परामर्श लें और आप अच्छा जीवन जी सकते हैं। उस समस्या से न तो डरने की जरूरत है, ना ही खर्च से घबराने की जरूरत है, ना ही आपको कहीं और जाना है।
0: व्यक्ति कई बार ये सोचता है कि अभी तो मेरे दर्द है और चेक करा लूंगा तो पता नहीं क्या निकल आएगा।
1: वो
0: जो डर है आम आदमी का कि भाई हॉस्पिटल नहीं जाना, डॉक्टर के पास नहीं जाना, ये तो कुछ भी बता देते हैं, ये तो बहुत बता देते हैं, ये तो लंबा इलाज कर लेते हैं अपना, तो मतलब इस तरह के जो प्रश्न है, थोड़ा सा मैं चलते चलते साइकोलॉजिकली कहूँगा कि चीज लंबे समय में बहुत बिगड़ जाए उससे बेहतर है कि हम
1: आपको जल्दी से ही पहले से ही उसका संज्ञान लेना चाहिए।
0: तो श्रोताओं, आज हम बात कर रहे थे कमर और पीठ के दर्द में। बहुत सारी डॉक्टर साहब ने बताई कि ये कमर

0: का और पीठ का दर्द, चाहे L4 हो, चाहे L5 हो, चाहे S1 हो, सर्वाइकल का हो, स्पाइन का हो, ट्यूमर तक का, आपने डॉक्टर साहब कह रहे
1: यस
0: कि
1: करते
0: स्पाइन में
1: हैं,
0: ट्यूमर भी
1: ट्यूमर
0: है,
1: भी होते हैं,
0: वो भी,
1: स्पाइनल ट्यूमर भी
0: हाँ
1: होते
0: वो भी इलाज है, तो सबका इलाज है, बशर्ते आप समय रहते एक अच्छे डॉक्टर और हॉस्पिटल के पास पहुंच जाएं। डरिए नहीं, अपने समाधान कराइए, और कहते हैं कि बचाव इलाज से ज़्यादा बेहतर है, तो बचाव

0: इलाज से ज्यादा बेहतर है। तो बचाव यही है कि निदान कम से कम हम कर लें कि ये समस्या जो हमारे पास है वो उसका क्या कारण हो सकता है। आज हमारे साथ डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता साहब, जो न्यूरो सर्जन वरिष्ठ, और निश्चित तौर पर अगर आप इन चीज़ों को मानते हैं और अपनाते हैं तो एक बेहतर जीवन जीने की हम गारंटी तो नहीं दे सकते, लेकिन ऐसी शुभकामनाएं दे सकते हैं। डॉक्टर साहब, कुछ और कहना चाहेंगे?
1: आपने मुझे यहाँ बुलाया और लोगों को जागरूक किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हमारे श्रोता सुन रहे थे स्वास्थ्य कार्यक्रम में भेंट वार्ता। विषय था कमर एवं रीढ़ की हड्डी का दर्द, कारण, लक्षण और निवारण। और विशेषज्ञ थे डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता, वरिष्ठ न्यूरोसर्जन। आपसे भेंट कर रहे थे ओपी सिंह। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में आकाशवाणी लखनऊ से रिले करेंगे।

0: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए मैनपुरी और रामपुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं मैनपुरी जिले की हलचल। आलेख और स्वर है नीरज शर्मा का।
1: जन सेवा से देश सेवा के उद्देश्य से संचालित 25 साल सेवा संकल्प अभियान के तहत जनपद में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं, विकास परियोजनाओं और उपलब्धियों पर आधारित चित्र प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया। होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार तथा जनपद मैनपुरी के प्रभारी मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि चित्र प्रदर्शनी के माध्यम से केंद्र और प्रदेश सरकार के विकास कार्यक्रमों, जन कल्याणकारी योजनाओं और विभिन्न क्षेत्रों में हासिल उपलब्धियों की जानकारी आम जन तक पहुँचाई जा रही है। प्रदर्शनी में महिला सशक्तिकरण, रोजगार सृजन, कौशल विकास योजना, कौशलों किसानों के कल्याण, सांस्कृतिक विकास संरक्षण, आधारभूत ढांचे के विकास और आध्यात्मिक केंद्रों से जुड़े कार्यों को प्रदर्शित किया गया है। प्रदर्शनी में एक जनपद एक उत्पाद, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और प्रधानमंत्री कुसुम योजना सहित विभिन्न योजनाओं को चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया। खेती में ड्रोन के उपयोग, सोलर पंपों की स्थापना और नवीन मंडियों के आधुनिकीकरण से जुड़े कार्यों की जानकारी भी प्रदर्शित की गई। साथ ही विकसित उत्तर प्रदेश 2047 की परिकल्पना और प्रदेश की प्रमुख आधारभूत संरचना परियोजनाओं को भी चित्रों के माध्यम से बताया गया। प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर जिला चिकित्सालय में सेवा दिवस आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम के तहत रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। प्रभारी मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने शिविर का शुभारंभ किया और मरीजों को फल वितरित किए। उन्होंने कहा कि स्वैच्छिक रक्तदान किसी जरूरतमंद व्यक्ति का जीवन बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दुर्घटनाएं, गंभीर बीमारी, ऑपरेशन अथवा अन्य चिकित्सीय परिस्थितियों में समय पर रक्त उपलब्ध होना बेहद जरूरी है। जिलाधिकारी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने 1 अक्टूबर से शुरू होने वाले विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान और 12 अक्टूबर से प्रस्तावित दस्तक अभियान की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, नगर विकास, पंचायती राज, पशुपालन, कृषि, शिक्षा और संबंधित विभागों को आपसी समन्वय से अभियान को प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि पिछले वर्षों में जिन क्षेत्रों में वेक्टर जनित बीमारियों के मरीज मिले हैं, वहां विशेष सतर्कता बरती जाए। नियमित सफाई के साथ साथ एंटी लार्वा का छिड़काव, झाड़ियों की कटाई और जल निकासी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। जिन गाँवों में बुखार के अधिक मरीज मिले, वहाँ स्वास्थ्य शिविर लगाकर लोगों को जाँच और उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। स्वास्थ्य केंद्रों पर पर्याप्त दवाओं और चिकित्सा कर्मियों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए। थाना समाधान दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी ने थाना घिरोर में जन शिकायतें सुनी। नंगला राजा कोसमा हिनूद निवासी आकाश और ममता देवी ने निजी भूमि पर अवैध कब्जे शिकायत की। जिलाधिकारी ने प्रभावी निरीक्षक को दोनों पक्षों को बुलाकर राजस्व अभिलेखों से भूमि का मिलान कराने और जबरन कब्जा पाए जाने पर उसे हटाने के निर्देश दिए। शिक्षक दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने विकासखंड किसनी के ग्राम कटरा समान स्थित पूर्व कन्या माध्यमिक विद्यालय पहुंचकर विद्यार्थियों से संवाद किया। उन्होंने छात्र छात्राओं को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कापी और पेंसिलें वितरित की। जिलाधिकारी ने कहा कि शिक्षक बच्चों को केवल किताबी ज्ञान ही नहीं देते, बल्कि उनके चरित्र, विचार और व्यक्तित्व के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसी क्रम में एक निजी विद्यालय में राजस्थानी लोक संगीत पर आधारित सांस्कृतिक

0: सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रसिद्ध राजस्थानी लोक गायक और खड़ताल वादक कुटला खान ने प्रस्तुति, उनके साथ दारे खान ने कमायचा, गोराम खान ने ढोलक तथा दयाम खान ने हारमोनियम और गायन से संगत की। विद्यार्थियों ने खड़ताल, कमायचा और ढोलक जैसे पारंपरिक वाद्य यंत्रों को करीब से देखा और उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। कलाकारों ने विद्यार्थियों के सवालों के जवाब देते हुए बताया कि लोक संगीत किसी क्षेत्र की परंपराओं, इतिहास, सामाजिक जीवन और सांस्कृतिक पहचान को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने का माध्यम है। विद्यालय की प्रशासनिक प्रधानाचार्य डॉक्टर कुसुम मोहन और उप प्रधानाचार्य जयशंकर तिवारी ने कलाकारों का स्वागत किया।
1: मैनपुरी जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं रामपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है शन्नू खान का।
2: रामपुर में सेवा संकल्प अभियान एवं 11वें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के अवसर पर आयुष विभाग द्वारा स्वस्थ कल के लिए आयुर्वेद विषय पर जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी क्रम में शहर स्थित अम्बेडकर पार्क में योग शिविर का आयोजन किया गया। योग शिविर का नेतृत्व नगर रामपुर की चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर शालिनी गंगवार ने किया। शिविर में लगभग 55 लोगों ने उत्साहपूर्वक योगाभ्यास किया। इस दौरान स्वस्थ जीवन शैली अपनाने, नियमित योग एवं आयुर्वेद को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने के लिए लोगों को प्रेरित किया गया। जनपद में अंग दान महादान का संदेश लेकर सेवा संकल्प अभियान आगे बढ़ाया गया। संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान जनमानस को अंग दान की शपथ दिलाई गई। इस दौरान जिलाधिकारी अजय द्विवेदी ने तहसील शाहबाद में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस के मौके पर सेवा संकल्प अभियान के तहत अंग दान महादान का संदेश देते हुए अधिकारियों एवं आमजन को अंग दान की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि मृत्यु के बाद अंग दान के माध्यम से किसी जरूरतमंद व्यक्ति को नया जीवन दान किया जा सकता है। जनपद में बाढ़ एवं अतिवृष्टि से प्रभावित 860 किसानों को फसल क्षति के सापेक्ष कृषि निवेश अनुदान मुआवजा राशि 49,67,000 रुपए का वितरण किया गया। राजस्व विभाग द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में सर्वेक्षण एवं स्थलीय सत्यापन के बाद पात्र किसानों को शासन से राहत दी गई। राहत शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार उपलब्ध कराई गई। तहसील सदर के 336 किसानों को करीब 12 लाख, स्वार के 47 किसानों को करीब 5.5 लाख, शाहबाद के 451 किसानों को लगभग 31 लाख तथा टांडा के 26 किसानों को 1.5 लाख रुपए की धनराशि वितरित की गई। जनपद में अवैध परिवहन और ओवरलोडिंग के खिलाफ प्रशासन द्वारा परिवर्तन अभियान चलाया गया। विशेष अभियान के तहत खनन विभाग और परिवहन विभाग की संयुक्त टीमों ने सघन जाँच करते हुए नियमों का उल्लंघन करने वाले 9 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की। रामपुर निवासी उद्यमी नाजिम खान के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना जीवनदायिनी साबित हुई। नाजिम खान ने पत्नी सादिया रईस के नाम से ग्रामोद्योग विभाग में आवेदन कर 9,50,000 रुपए का लोन स्वीकृत कराया। इसी वित्तीय संबल में अपनी बची पूंजी मिलाकर उन्होंने ई रिक्शा निर्माण की यूनिट स्थापित कर दी। आज नाजिम न सिर्फ अपने परिवार का भरण पोषण सम्मान के साथ कर रहे हैं बल्कि 25 स्थानीय कारीगरों को नियमित आजीविका देकर ग्रामीण स्वावलंबन और उद्यमशीलता की मिसाल बने हुए हैं। नाजिम खान ने बताया कि उन्हें मुख्यमंत्री ग्राम उद्योग रोजगार योजना से मिले ऋण से बड़ी मदद मिली। वहीं जिला ग्राम उद्योग विभाग अन्य जरूरतमंदों की भी सहायता बड़े पैमाने पर कर रहा है। जिला ग्राम उद्योग अधिकारी भूपेंद्र सिंह ने बताया कि जिले में उद्यमियों की हर संभव सहायता की जा रही है।
3: मुख्यमंत्री ग्राम उद्योग रोजगार योजना जिसमें 10 लाख का ऋण हमने सादिया लेक जी आवेदन कराया और बैंक के द्वारा उन्हें वित्त पोषण कराया और इसके लिए उन्होंने जो इकाई स्थापित की वो ऑटो रिक्शा बनाने का कार्य उन्होंने किया।
2: जनपद में आधार बनवाने के नाम पर बड़े साइबर फ्रॉड का खुलासा हुआ। साइबर क्रिमिनल अंगूठा निशानी लेकर अकाउंट बनाकर एक्सेस अपने हाथ में लेते थे। साइबर फ्रॉड से ली गई रकम इन खातों में ट्रांसफर करते थे। पुलिस अधीक्षक अनिल सिसोदिया ने बताया कि सुराग रस्सी और अन्य सबूत के आधार पर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। जनपद की तहसील बिलासपुर क्षेत्र में भाखड़ा डैम के निकट सड़क का एक हिस्सा धंसने की सूचना मिलने पर जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने मौके पर पहुंचकर स्थलीय निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने मौके पर स्थिति का जायजा लेते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों से सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए उन्होंने धसे हुए हिस्से के आसपास आवागमन तत्काल बाधित कराया। जिलाधिकारी ने पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों को मौके पर सतर्कता बरतते हुए निरंतर निगरानी बनाए रखने तथा किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कीं। जनपद में स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान के तहत जिला गंगा समिति द्वारा कोसी घाट पर विशेष स्वच्छता एवं श्रम

0: दान अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान जिला परियोजना अधिकारी लव कुमार तथा आर्ट ऑफ लिविंग के शुभम मिश्रा ने स्वयं श्रमदान करते हुए घाट परिसर की साफ सफाई की। अभियान के दौरान घाट एवं आसपास के क्षेत्र में मूर्ति अवशेष, प्लास्टिक तथा अन्य अपशिष्ट सहित लगभग 80 किलोग्राम कचरा एकत्रित किया गया। एकत्रित कचरे को निर्धारित तरीके से निस्तारण के लिए भेजने की व्यवस्था की गई। इस अवसर पर उपस्थित लोगों को नदी एवं घाटों की स्वच्छता बनाए रखने के लिए प्रेरित किया गया।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
2: आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है, आइए सुनते हैं कार्यक्रम आबो हवा।

जल ही जीवन है, जल ही अमृत है। इसका आशय यही है कि इस सृष्टि में जल ही सभी भौतिक पदार्थों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जल के अभाव में न तो पेड़ पौधे, वनस्पति एवं खेती हरियाली आदि फैल सकती है और न प्राणी जगत का जीवन सुरक्षित रह सकता है। पंच भौतिक पदार्थों में पृथ्वी के बाद जल तत्व का महत्व इसी कारण दूसरे स्थान पर माना गया है। मंगल आदि अन्य ग्रहों में जल के अभाव से ही जीवन एवं वनस्पतियों का विकास नहीं हो पाया है, ऐसा नवीनतम खोजों से स्पष्ट हुआ है। धरती पर ऐसे कई भूभाग हैं जहां पर जलाभाव से रेगिस्तान का प्रसार है तथा प्राणियों को कष्टमय जीवन यापन करना पड़ता है। हर धर्म, मजहब, संप्रदाय हमें पानी का सम्मान करने की सीख देता है, पानी की बर्बादी न करने की ताहिद करता है। इस्लाम के पवित्र धर्म ग्रंथ कुरान शरीफ में जगह जगह पानी के महत्व के बारे में कहा गया है। ऐसी 60 आयतें हैं जिनमें पानी के महत्व को समझाया गया है। जल के लिए दिलकश अंदाज में कहा गया है कि अल्लाह ने पानी बरसाया है, उसने तुम्हारी रोजी के लिए फल फूल अनाज पैदा किए हैं। सभी जीवित प्राणियों के जीवन और उत्तम स्वास्थ्य के लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ और सुरक्षित जल मिलना जरूरी है, या दूसरे शब्दों में कहें तो उनके लिए जल सुरक्षा आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय कानून इसे मानव अधिकार की संज्ञा देता है। पानी प्रकृति द्वारा दिया गया उपहार है, लेकिन पानी देने के लिए प्रकृति की भी अपनी सीमाएं हैं। कई स्थानों पर पीने के पानी की उपलब्धता खतरनाक रूप से कम होती जा रही है। जहां पर जमीन को ढक दिया गया है या फिर पेड़ों को काट दिया गया है, ऐसे स्थानों पर जहां पहले वर्षा का जल जमीन द्वारा सोख लिया जाता था और भूमिगत जल भंडार में मिल जाता था, अब वह समुद्र में जाकर खारे पानी का हिस्सा बन जाता है। वर्षा का जो पानी बचा रहता है वह इतना अधिक प्रदूषित हो जाता है कि मानव के उपयोग के लायक नहीं रह पाता। कुदरत का बेशकीमती उपहार पानी अब इंसान को आसानी से मुहैया नहीं हो पा रहा। इंसानी लापरवाही और कमजोर प्रबंधन के चलते न केवल हिंदुस्तान बल्कि दुनिया के कई मुल्क पीने के पानी की किल्लत के लिए परेशान हो रहे हैं। पानी की कमी इस कदर भयावह होती जा रही है कि कुछ सालों में पानी की एक एक बूंद के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है। इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि धरती पर 70% हिस्से पर पानी होने के बावजूद दुनिया के अधिकांश मुल्क पेयजल की कमी का सामना कर रहे हैं। पानी के इस भयावह संकट के जिम्मेदार हम ही हैं। हमारी लापरवाही और उपेक्षा के चलते ही जल संकट का सामना करना पड़ रहा है। संसार के कई हिस्सों में लोगों को सेहतमंद रहने के लिए जितना पानी जरूरी है वह उन्हें मिल नहीं पाता। बहुत बार लोगों को पानी के लिए मीलों चलना पड़ता है और तब भी उन्हें जो पानी मिलता है वह पीने के लिए सुरक्षित नहीं होता। यदि लोगों को उनकी रोजमर्रा जरूरतों के लिए पानी नहीं मिलता तो उनका जीवन कठिन हो जाता है और उन्हें तरह तरह की खतरनाक बीमारियों का सामना करना पड़ता है। और लोगों को जो पानी मिलता है वो अगर साफ नहीं है, उसमें कीड़े मकोड़े या फिर खतरनाक रासायनिक तत्व मिले हुए हैं, तो ये भी रोगों को बढ़ावा दे सकते हैं। यदि समुदाय के पास ऐसे पानी की उपलब्धता है जिसे सभी आसानी से पा सकते हैं और साथ ही सुरक्षित भी हो, तो समुदाय के हर एक सदस्य का स्वास्थ्य, उनकी सेहत जरूर ही अच्छी होगी। कुछ स्थानों पर बड़ी औद्योगिक इकाइयां भूगर्भीय जल का अनुचित विदोहन कर रही है। खनिज संपदा यथा संगमरमर, ग्रेनाइट, पत्थर, चूना पत्थर आदि के विदोहन से भी धरती का जल स्तर गिरता जा रहा है। दूसरी ओर वर्षा काल में सारा पानी बाढ़ के रूप में बह जाता है। शहरों में कंक्रीट, डामर आदि के निर्माण कार्यों से धरती के अंदर वर्षा का पानी नहीं जा पाता। इस कारण पाताल तोड़ कुएं भी सूख गए हैं। इस तरह बढ़ते हुए जल संकट के निवारण के हेतु ये उपाय किए जा सकते हैं। भूगर्भ के जल का असीमित विदोहन रोका जाए, खनिज संपदा के

दोहन को नियंत्रित किया जाए, शहरों में वर्षा के जल को धरती के गर्भ में डालने की व्यवस्था की जाए, बांधों का निर्माण किया जाए और कुओं को अधिक गहरा चौड़ा किया जाए। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, अर्थात पानी के बिना जनजीवन अनेक आशंकाओं से घिरा हुआ है। जल को बचाने का प्रयास करना चाहिए, ऐसा करने से ही हमारी धरती मंगलमय बन सकती है।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आबोहवा। विषय था जल ही जीवन है। आलेख और वाचन मोनिका रांगा का था।

FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं गांधी चर्चा।

और अब ईश्वर पर श्रद्धा और विश्वास के संबंध में बापू के विचार। सब प्रकार की मानसिक दुर्बलता का मूल एक ही होता है और वह है ईश्वर के प्रति हमारा अविश्वास। ईश्वर के प्रति विश्वास हार्दिक वस्तु होनी चाहिए। जिसने ईश्वर को संतुष्ट किया वह जीता। ईश्वर का अर्थ है अंतरात्मा। कोई उसे ईश्वर के नाम से पहचानने के बदले कुदरत के नाम से पहचानता है, जो इस महाशक्ति के वश होकर बरतता है, उसमें दुर्बल

टिक ही नहीं सकती, उसका मनोबल दिन ब दिन बढ़ता है। जो ईश्वर चींटी की रक्षा करता है वे हमें थोड़ी ही छोड़ने वाला है, वे ही करता धरता और भरता है। इस कारण उत्पन्न करते और मारते हुए वह रक्षा ही करता है। जिसे ईश्वर पर श्रद्धा है उसकी सहन शक्ति की सीमा ही नहीं। प्रयत्न करने की शक्ति के अलावा ईश्वर ने हमें और कुछ दिया ही नहीं है। शरीर ईश्वर का घर है, उसे उसके मूल रूप में ही सुरक्षित रखना चाहिए। अगर मैं अपने अहंकार को पूरी तरह निकाल दूं तो ईश्वर मुझ में आ बसेगा। मैं जानता हूं कि फिर सब बातें सच्ची होंगी। हमारे माता पिता प्रायः बिना कहे ही हमारी इच्छाओं आदि को जान लेते हैं। ईश्वर के विषय में भी हम यही समझें। यदि माता पिता में इतनी समझने की शक्ति होती है तो सबके सृजनहार में तो हमारे अंतर को समझने की बहुत अधिक शक्ति होनी चाहिए। इसलिए हम ईश्वर को अंतर्यामी के रूप में पहचानते हैं। उसे देखना जरूरी नहीं, अपने कई रिश्तेदारों को हमने देखा नहीं। किसी के माता पिता बचपन में परदेश गए हों अथवा जिनकी मृत्यु हो गई हो तो भी दूसरों पर श्रद्धा रखकर हम मानते हैं कि वे हैं या थे। इसी तरह ईश्वर के विषय में हमारे पास संत जनों की साक्षी है, उस पर विश्वास रखकर माने कि वे अंतर्यामी है ही। यदि वे है तो उसका भजन करने, उसकी प्रार्थना करने की बात तो हम आसानी से समझ सकते हैं। यदि हम भले हैं तो सुबह उठने पर और रात सोने पर माता पिता को साष्टांग नमस्कार करते हैं। यही ईश्वर के प्रति करना चाहिए। क्या हमें जो कुछ भी चाहिए वे सब मिल जाता है? यदि मिल जाए तो फिर हमारी श्रद्धा का उपयोग ही क्या रह जाए? इतना जान लेना काफी है कि ईश्वर की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। शरीर ईश्वर के निवास का मंदिर है, उसे हम झाड़ बुहार कर साफ रखें और अन्न देकर नित्य संवारें। मर्यादा छोड़कर बोलने से सत्य का भंग होता है। आपको बिना विचार किए और बिना आवश्यकता के नहीं बोलना चाहिए। योगी तो मौनी होता है, ईश्वर कैसा योगी है? क्या ईश्वर अपनी महिमा सर्वत्र गाता रहता है? ईश्वर की महिमा को तो हम उसके कार्यों द्वारा ही देख सकते हैं। सूर्य नारायण, आकाश, नदी, पहाड़ देखकर हमें उसकी अनंत शक्ति का अंदाज लग सकता है। यदि हम ईश्वर से ये साधारण बात भी न सीखें तो समझिए हमारी ईश्वर भक्ति मिथ्या है। ईश्वर महान है, वह अपने सेवकों की सहन शक्ति से अधिक उनकी परीक्षा नहीं लेता। ईश्वर की इच्छा का पता कैसे चलेगा? वह प्रार्थना से और सदाचरण से चलेगा। प्रार्थना का अर्थ है ईश्वर के साथ एक हो जाना। हम स्वयं दिल से मानते हैं कि ईश्वर है तो फिर हमें डर किस बात का? ईश्वर की तो हमेशा कृपा ही रहती है, पर अपनी मूर्खता के कारण हम उस कृपा को पहचान नहीं पाते। लेकिन उसकी इच्छा के अधीन तो हम इच्छा से या अनिच्छा से रहते ही हैं। इसलिए उसकी इच्छा होगी ही तो हम मिलेंगे। आखिर जो कुछ होता है सो ईश्वर ही करता है। यदि श्रद्धा रखोगे तो ईश्वर सब पार उतारेगा। ये थे ईश्वर पर श्रद्धा और विश्वास के संबंध में बापू के विचार। और अब सुनते हैं MS सुब्बलक्ष्मी के स्वर में बापू का ये प्रिय भजन।

अभी आप सुन रहे थे गांधी चर्चा। विषय था ईश्वर पर श्रद्धा और विश्वास, विषय पर गांधी जी के विचार। और आगरा केंद्र की थी प्रस्तुति। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।

0: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं बातचीत एकात्म मानवतावाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय और वार्ताकार है डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा और आपसे बातचीत कर रहे हैं ओपी सिंह।
1: आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा जी जो साहित्यकार हैं, समाज सेवी हैं, चिंतक हैं, विचारक हैं। तो आज का जो विषय हमने रखा है वो है एकात्म मानववाद, जिसके प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय रहे। चूंकि उनकी जन्मभूमि और कर्मभूमि मथुरा रही, ये हमारा और आपका सौभाग्य है कि ऐसी जन्मभूमि और ऐसी कर्मभूमि में हम और आप रहते हैं ब्रज में, जहाँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय रहे। तो उनके जो एकात्म मानववाद है वो क्या है, आज के संदर्भों में उसकी प्रासंगिकता क्या है, और एक आम आदमी के उत्थान और उसके विकास के लिए वो कैसे हितकारी हो सकता है, साथ ही साथ जो विचार, जो एक चिंगारी यहाँ से निकली, क्या आज मथुरा में या ब्रज में उसके लिए कुछ और भी किया जा सकता है, कुछ और भी संभावनाएं व्यक्त की जा सकती हैं, जो न सिर्फ हमारे ब्रज क्षेत्र को, उत्तर प्रदेश को, भारत को, बल्कि संपूर्ण उस विश्व समुदाय को, जो मानवतावाद होने के नाते एक हो सकता है, तो ऐसा कुछ विचार क्या आज भी पुष्पित, पल्लवित या फलित हो सकता है, ये आज हमारी जानकारी का विषय रहेगा। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, मैं आपका स्वागत करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, और एक प्रश्न अपने श्रोताओं की तरफ से आपके सामने यही रखता हूँ कि जो एकात्म मानव

0: संवाद की जब हम चर्चा करते हैं, जो पंडित जी ने हमको दिया, उसके जो निहितार्थ हैं, उसके जो आशय हैं, एक आम आदमी अगर उससे कुछ लेना चाहे, समझना चाहे, तो वो एकात्मानवतावाद जो है वो है क्या, उसमें उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए।
1: धन्यवाद सिंह साहब। ये चिंतन पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने 1964 में ग्वालियर की प्रतिनिधि सभा में उद्घाटित किया था
0: जी,
1: जिसमें उन्होंने कहा था कि आज देश में ऐसे करोड़ों मानव हैं जो मानव के किसी भी अधिकार का उपयोग नहीं कर पाते। ये मैले कुचैले अनपढ़ सीधे साधे लोग नारायण हैं, हमें इनकी पूजा करनी है। जिस दिन इनको पक्के सुंदर घर बनवा देंगे, जिस दिन हम इनके बच्चों और स्त्रियों को शिक्षा और जीवन दर्शन का ज्ञान देंगे, जिस दिन हम इनके हाथ और पांव की बिवाइयों को भरेंगे और जिस दिन इनको उद्योग धंधों की शिक्षा देकर इनकी आय को ऊंचा उठा देंगे, उस दिन हमारा भ्रातृभाव विकसित होगा, व्यक्त होगा। ये है एकात्मानववाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय के शब्दों में
0: जी।
1: अब हमें ये देखना है कि ये समस्या शुरुआत में कहां से आ रही है। अगर हम इस समस्या की जड़ों को ढूंढना शुरू करें तो देखते हैं कि जब वेदों में रुद्र सूक्त में ये कहा गया है, चर्मकारेभ्यो नमः, ऋषि कहता है कि हे चर्मकार तुम्हें नमस्कार है। ऋषि कहता है रथकारेभ्यो नमः, हे रथकार तुम्हें नमस्कार है। और आगे कहता है कि कुलालेभ्यो नमः, हे कुमार तुम्हें नमस्कार है। यानी कि समाज के उस उपेक्षित पीड़ित वंचित वर्ग के प्रति चिंता का विषय अब से नहीं, वेदों के जमाने से चलता आ रहा है। उसके बाद में वेदांत आया और वेदांत ने अद्वैत की धारणा को विकसित किया और उसमें ये कहा गया कि एको एवं द्वितीयो नास्ति, और उस धारणा के तहत ये सारी जो विसंगतियां थी धार्मिक, उनका समाधान किया गया। शंकराचार्य जी का समय आया, फिर उन्होंने गीता में उसको प्रतिपादित किया और इन सब वर्णों के भेद को और सब चीजों को, और उससे पहले अगर थोड़ा हम जाएं तो भगवान बुद्ध ने तो एक क्रांति पूरी पैदा कर दी और उन्होंने धर्म के जरिए वो समन्वयवाद या वो एक रूपता, वो एकात्म मानववाद आप कह सकते हैं, अद्वैत कह सकते हैं, कि जहां उन्होंने समाज से विस्थापित, गांव से तिरस्कृत और बहिष्कृत लोगों को गले लगाया और बौद्ध देशना पूरे विश्व में व्याप्त हुई। प्रश्न ये है कि आखिर ये मिटा क्यों नहीं और अब तक ये क्यों चला आ रहा है, जब इतने बड़े बड़े ऋषि मनीषी भगवान बुद्ध और महावीर जैसे लोग इसको मिटाने के लिए प्रतिबद्ध हुए, कटिबद्ध हुए, फिर भी ये मिटा क्यों नहीं। ये एक मौलिक प्रश्न हमारे सामने खड़ा होता है और वही चिंता, वही पीड़ा पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने व्यक्त की, जो आज के समय में बहुत प्रासंगिक हो रही है। क्योंकि हम देख रहे हैं सिंह साहब कि कश्मीर का इशू देख लीजिए, अपने ही देश में 3 लाख लोग मारे मारे घूम रहे हैं और उनको अपने होमलैंड में रहने का अधिकार नहीं। तिब्बत को उठा के देख लें तो वहां भी लाखों लोग मारे मारे विश्व में घूम रहे हैं, उनको अपने तिब्बत का अधिकार नहीं। सोमालिया को देख लीजिए, पूरे विश्व की स्थिति को देख लीजिए, इसराइल को देख लीजिए, फिलीपींस को देख लीजिए, सब जगह वही समस्या है कि मानवाधिकारों का दमन हनन कुचलन किया जा रहा है। और फिर हम बात करते हैं कि उन विस्थापितों की बात करें या उन लोगों की जो समाज के और दूसरे कारणों से रोजी रोटी को वंचित हो रहे हैं, उनके पास खाने को नहीं है, मकान नहीं है, कपड़े नहीं है, तो ऐसे समाज का जो विभत्स और कुत्सित रूप किससे अच्छा लगेगा। लेकिन मुश्किल ये है कि वो दूर क्यों नहीं होता।
0: जी जी, सही आपने प्रश्न उठाया, आपने जहाँ से उठाया जड़ों से अगर हम देखें कि जो वेदों की हम बात करते हैं वहाँ, हालांकि जिस संदर्भ में आप बात कर रहे हैं उसका दूसरा रूप ये भी हो सकता है कि जब हम उस समाज के उस उपेक्षित वर्ग को भी नमस्कार करते हैं तो शायद एक अवधारणा ऋषि की ये भी रही होगी कि आप कुछ भी समझे लेकिन समाज के लिए उपयोगी है वो, तो अगर आप उसको साथ लेके नहीं चलेंगे, अगर आप उसको समाज में साथ नहीं बिठाएंगे, साथ नहीं उठाएंगे, अपने लिए उपयोगी सिर्फ काम तक सीमित कर देंगे उसको, तो शायद समाज में जिस हम एकता समरूपता और उसके उत्थान की बात करते हैं शायद वो नहीं होगी। तो आज के संदर्भों में अगर हम जैसे प्रासंगिकता की बात आपने उठाई थी कि जब जहाँ ये सुदूर सब जगह ऐसा हो रहा है, न सिर्फ भारत बल्कि विश्व में आज मानवता प्रताड़ित हो रही है, उसमें बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं, कारण कोई भी हो हम उसके बीच में नहीं जाते, लेकिन जब तक उन चीज़ों को हम उनका समाधान नहीं देते, शायद प्राणी मात्र के या मानव मात्र के कल्याण की

0: पूरी तरीके से सार्थक नहीं हो सकती है। तो एक आज के समय में जब हम उत्थान और विकास की बात करते हैं, आजादी के 70 साल काफी कुछ हमने पा लिया है, लेकिन क्या एक अगर प्रासंगिकता हम उन्हीं की कर रहे हैं पंडित जी की, तो जो एकात्म मानववाद वो स्थापित करना चाहते हैं, तो एक सामान्य व्यक्ति के लिए वो क्या है? क्या वो रोजी रोटी से शुरू होता है, क्या वो उसके छोटी झोंपड़ी से शुरू होता है, या फिर वो बड़े ख्वाब तो नहीं देख सकता? तो वो छोटी छोटी जो बातें हैं, जो छोटी छोटी उसकी जरूरत है, उनको पूरा करके उसको उठाया जा सकता है।
1: जी बिल्कुल सही है। और उसके साथ साथ में एक और चीज सामने आ रही है कि मानवता के ऊपर जितना एकात्मता का भाव व्यक्त किया गया, जितने उसके उत्थान का भाव व्यक्त किया गया, जो प्रयास किए गए, आप देखेंगे कि उन प्रयासों में, उत्थान में कहीं ना कहीं त्रुटियां थीं जिसकी वजह से वो चीजें पूरी नहीं हुई। इंदिरा जी ने नारा दिया गरीबी हटाओ, लेकिन गरीबी और बढ़ी और इस तरीके की चीजें और जगह भी सब हुई, और उसमें लग रहा था कि भाई नहीं, कुछ वाकई में नया होगा। अभी मौजूदा समय में भी ऐसी बातें उठी, तो हम कहीं ना कहीं उन त्रुटियों से ग्रसित हैं जिसकी वजह से नहीं कर पा रहे हैं। और उसके लिए जो एक नई चीज दिमाग में आ रही है, और वो ये है कि जो पंडित जी का ये सिद्धांत है जो अद्वैत पे टिका हुआ है, और ये अद्वैत तब तक नहीं कामयाब हो सकता जब तक कि हम एक एक व्यक्ति को ये अनुभव न करा दें कि आत्यंतिक रूप से अपने अपने में सबको देखना और सब में अपने को देखने का जो भाव है, ये एक एक व्यक्ति को जब तक अनुभूत नहीं करा दिया जाएगा तब तक सच्चा एकात्म मानववाद नहीं पैदा हो सकता है। और उसके लिए जरूरी है कि हम एक मानववाद के अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय की अगर स्थापना करें, और वो पंडित जी की जन्मभूमि में करें, मथुरा में करें, तो मैं समझता हूं कि पूरे विश्व में एक अद्भुत प्रयोग हो सकता है। और वहां हम स्थानीय समस्याएं के स्थानीय एकल व्यक्ति से लेकर के विश्व के समस्त जितने मानवीय मुद्दे हैं उनको हम हल कर पाएंगे, और उसका जो सब्जेक्टिव मैटर होगा वो मेटाफिजिक्स भी होगा और हमारी मॉडर्न साइंस यानी माइंड एंड मैटर दोनों को लेकर के हम चलेंगे, तो हम लास्ट में ये कोई ना कोई सोल्यूशन हमें मिल जाएगा जिसके ऊपर अब तक विश्व में कार्य नहीं हुआ है।
0: जी, एक आपने बहुत अच्छी बात कही कि जब तक हम हर एक आदमी को इस बात को महसूस नहीं करा देंगे, तो मैं थोड़ा सा इस पे और आपसे खुलासा ये जानना चाहता हूं कि शोषित और शोषक, क्योंकि दोनों ही मानव है, फिर ऐसा क्या है कि एक आदमी इस हद तक नीचे आ जाता है कि वो सामने वाले व्यक्ति को व्यक्ति न समझकर उसके शोषण शुरू कर देता है? तो ये जो शोषण शुरू होता है उसके पीछे के कारण थोड़ा सा आप अगर बता सकें, उसके बाद में आपकी जो ये अवधारणा है, जो विश्व आपकी एक शोध और उसकी बात कर रहे हैं, तो उस पर थोड़ा सा प्रकाश और चाहेंगे। पहले से इस थोड़ा सा इसको और थोड़ा सा परिभाषित करिए।
1: बस थोड़ी सी बात ये समझनी होगी कि ये जो लोक है जहां से ये सारी रूहें आई हैं, जिसको सतलोक कहा जाता है, संतों की भाषा में अगर हम जाएं, शास्त्रों को थोड़ा किनारे रखें, तो संत ऐसा मानते हैं कि जिस लोक को, जिसे निरंजन भगवान का लोक कहा गया है, जब तो निरंजन भगवान सतपुरुष के 16 पुत्र थे जिसमें सबसे छोटे थे, और जाहिर है पिता का मोह जो है वो सबसे छोटे पर ज्यादा होता है, तो इज्जती भी थे, तो इनको जो अलग अलग सारे पुत्रों को आत्माओं का भंडार दिया गया, तो निरंजन भगवान को जो भंडार दिया गया तो उसमें थोड़ी सी रूहें थी, और वो लोग आते थे इस लोक में, रहते थे, चले जाते थे, सतयुग था। तो निरंजन भगवान को बड़ी पीड़ा हुई कि हमारे जितने और भाई हैं उन लोकों में तो लोग रहते हैं, जैसे भगवान ने भी कहा कि भाई कई उत्तम लोक हैं और 7 नीचे हैं 7 ऊपर हैं, यहाँ कोई रहता नहीं। तो निरंजन भगवान ने आदिशक्ति को प्रेरित किया और उनसे कहा कि भाई कुछ उपाय करना पड़ेगा, ये आत्माएं जो है सब मुक्त होकर चली जाती है, यहाँ कोई रहते नहीं। तो माया जो है वो फैली, माया को फैलाया गया और काल भगवान उसके निर्णायक हो गए। अब काल और माया के वशीभूत होकर के आत्मा जो है वो फंसी, और वो ऐसी फंसी कि आप देखें पॉपुलेशन जो बढ़ रहा है, आप देखेंगे इसका फिजिकल कारण इकोनॉमिक्स में लोग बताएंगे, भौतिक कारण नहीं है, ये आध्यात्मिक कारण है कि मुक्ति और मोक्ष नहीं मिल रहा है इसलिए पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो वो सिर्फ माया की वजह से, जिसको आप अविद्या कह सकते हैं, जिसको अज्ञान कह सकते हैं, उसकी वजह से, क्योंकि ये अज्ञान के वशीभूत होकर के ही तो कोई किसी की हत्या करता है, अज्ञान के वशीभूत होकर के ही तो नहीं, मैं ही जो है परमेश्वर हूं, मैं ही ईश्वर हूं, मेरा ही जीवन जीवन है, इसका जीवन जीवन नहीं है, तो हम किसी प्रकार का दुर्व्यवहार दुर्व्यवहार तभी तो करेंगे, लेकिन जब ये एहसास हो जाएगा तो हम कैसे करेंगे। और उसी एहसास के लिए पंडित जी ने ये संदेश दिया एकात्मता का, अद्वैत का, और वो अद्वैत तभी मिट सकता है जब

0: सारे स्पिरिचुअल फोर्सेस और सारे मेटरलिस्टिक फोर्सेस एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के रूप में परिणत हो जाएं और एक विश्वविद्यालय का रूप ले लें, तो हम स्थानीय स्तर से लेकर के वैश्विक स्तर की सारी समस्याओं का समाधान मिनटों में कर सकें।
1: तो इतना जो प्रासंगिक उनका एकात्म मानववाद रहा, आज भी प्रासंगिकता उसकी सत्यापित कर रहे हैं, आज भी हम जब उनके इस जन्मशती समारोह को जो है ऑब्जर्व करने की बात कर रहे हैं, तो ये जो विश्वविद्यालय मथुरा में जिसकी संभावना आप तलाश रहे हैं, समझ रहे हैं, एक प्रयास कर रहे हैं इसमें, तो क्या कुछ संभव है कि ये जो आपका जो वो है मूर्त रूप ले सके, कुछ प्रयास इसमें हुए हैं, कुछ और संभव है इसमें?
0: सवाल ये है कि इसके बगैर कोई रास्ता नहीं। अब तक हम देख लिया कि वेदों के समय से लेकर अब तक एक ही रट लगा रहे हैं और हम अद्वैत की बात करते रहे, एकता की बात करते रहे, सब करते रहे, लेकिन सिस्टमेटिक रूप से हमने जो है इस पर कार्य नहीं किया है, सिर्फ अपने इंटरेस्ट हल करके और मुद्दे को वहीं रहने दिया है। मुद्दे पर हम पूरे ईमानदारी से जुटे नहीं है, इसलिए हमें जो है मेटरलिज्म जो है वो हावी हुआ हमारे ऊपर, उस अज्ञानता के वशीभूत हमारे नेत्र नहीं खोले गए। पॉलिटिशियंस के नेत्र खोले जाएं, वे जो व्यापारी हैं उनके नेत्र खोले जाएं, जो शिक्षा में लगे उनके नेत्र खोले जाएं, जो श्रमिक हैं उनके नेत्र खोले जाएं, जब सबके नेत्र खुल जाएंगे तो फिर कहां कोई अभेद कोई भेद रहेगा, जब भेद मिट जाएगा तो यह अद्वैत तो अपने आप प्रकट हो जाएगा।
1: यानी आप हर उस आम आदमी की, हर उस व्यक्ति की, चाहे वो किसी भी जगह, किसी भी समाज में, किसी भी ओहदे पे बैठा हुआ है, वो एक जागरूक और जिम्मेदार नागरिक अगर हो जाता है, एक अपनी इस एहसास को जागृत कर लेता है कि मानव होने के नाते मेरी क्या जिम्मेदारियां हैं अपने लिए, समाज के लिए और राष्ट्र के लिए और इस सारी मानवता के लिए, तो शायद समस्याओं की हम जड़ तक पहुंच पाए।
0: वही कारण है
1: जी,
0: वही कारण।
1: तो ये जो समाधान आप ढूंढ रहे हैं वो इस जिस संस्था की आप बात कर रहे हैं उसमें हो सकता है,
0: उसके बगैर संभव नहीं है, क्योंकि हमने उसका संस्थात्मक रूप आज तक नहीं दिया है। हम उसको अपने मतलब के लिए उपयोग तो करते रहे, हमको ऐसी टेक्निक भी हासिल हुई प्रभु कृपा से, हमने तपस्या की, हमें कोई सिद्धि मिल गई, उस सिद्धि का हमने अपने भोगेश्वर प्रसत्ता नाम अपने मतलब के लिए उपयोग कर लिया, लेकिन हमने उसको सही अर्थों में समाज के लिए चरितार्थ नहीं किया। अब मुझे ज्ञान हो गया, कहीं दूसरे को हो गया, तो फिर मेरी वैल्यू क्या रही? तो ये भावना गहरी फंसी और इस भावना की वजह से आध्यात्मिक जगत भी पतित हो गया, जिसकी घटनाएं आज तौर पर आप देख रहे हैं। अध्यात्म जो सबसे विकसित होना चाहिए था वो सबसे नीचे चला गया। क्यों चला गया? इसी भाव, क्योंकि हमको सिद्धि मिल गई और सिद्धि का हमने दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। लेकिन इस ईश्वर का ईश्वरंश ईशावासविदम सर्वम यदकिंच जगत्याम जगत, कोई चीज उसके बगैर नहीं है। जब कोई चीज उसके बगैर नहीं है तो फिर हम जो इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, हम किस नरक में जाएंगे, ये भी तो हमारे लिए प्रश्न है। इस लोक में रहना किसी को नहीं, किसी लोक में किसी को नहीं रहना है, और सब अजर अमर है, सभी ईश्वर के अंश है। जब ये बात इतनी बड़ी ब्रह्म देशना विश्व भारत से गई तो भारत क्यों पिछड़ गया? इसी वजह से पिछड़ गया, क्योंकि हमने उसके प्राथमिक और मौलिक रूपों को एक संस्था का रूप नहीं दिया, और संस्था का रूप दिया तो वो भी अपने मतलब के लिए दिया।
1: जी जी, भूमि है यहाँ पर फिर से वो विचार फलित हो, पुष्पित हो और सुदूर पूर्व से सब लोग आए और उसको देखें और फिर कुछ जान के समझ के जीवन में उतार के अगर जाएंगे तो शायद मानव कल्याण की जो बात हम सोच रहे हैं वो जो है ठीक से स्थापित हो सकेगी। डॉक्टर साहब, आप आए, जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे एक भेंट वार्ता एकात्म मानव वाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय। वार्ताकार थे डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा और आपसे भेंट कर रहे थे ओपी सिंह। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। सुनते हैं डॉक्टर अर्थला नागर का लिखा नाटक विसर्जन, और प्रस्तुत करता है यतीन्द्र चतुर्वेदी।

0: जयदेव।
1: आजी आरती तो हो गई, अब बप्पा को भोग लगाऊं?
2: हाँ रे मन्या, लगा दे। ये तो तेरे अप्पा बाबूराव और तेरी आई नियम से भोग की थाली भेज देते हैं, नहीं तो मेरी बीमारी की वजह से तो मेरे गणपति भूखे ही रह जाते।
3: मन्या, ओ मन्या, कुठे आए? कहाँ है ये मन्या?
4: रोहिणी काकू के घर भोग की थाली लेकर गई है।
3: अच्छा है विद्या कि तू काकू का इतना ध्यान रखती है। मेरी समझ में नहीं आता कि इस उम्र में कोई अपने माँ बाप को ऐसे अकेला कैसे छोड़ सकता है।
4: बेचारी रोहिणी काकू तो भरे घर में भी अकेली ही रही। एक दिन बता रही थी उन्हें अपनी आई की भी याद नहीं। अकेले पिता ने ही उन्हें पाल पोस के बड़ा किया और 13 की होते न होते लगन करके विदा कर दिया। ये सोचकर कि पंडित केशव भाऊ दीक्षित के घर की इकलौती बहू बनेंगी तो अपने माहेर के सारे दुख संताप भूल जाएंगी।
3: हाँ, केशव भाऊ काका के घर के वैभव के दिनों की कुछ धुंधली यादें मुझे भी हैं। गणपति और कार्तिकेय के साथ खेलने जाता था, तब उनका घर देवघर, घर के पीछे वाला फलों का बगीचा, उसके भी पीछे वाले खेत, रोहिणी काकू माथे पर आज जैसी ही खूब बड़ी बिंदी लगाती थी। मैं बच्चा था, क्या समझता कि रोहिणी काकू सुखी हैं या दुखी।
4: रोहिणी काकू बनी ही है उस मिट्टी की कि देखकर कोई भांप न सके कि उनके मन में चल क्या रहा है। वो तो एक बार वट सावित्री के व्रत के दिन मेरी आंखें उनकी छलछलाई आंखों से मिल गईं। कायजला काकू, क्या हुआ? तबियत तो बरोबर है? बसा बसा, पूजा तो हो गई ना, थोड़ा पानी पी लो।
2: नहीं रे विद्या, मैं ठीक हूँ, चिंता ना करो।
4: काकू, अगर एक बात पूछूं, गुस्सा तो नहीं करोगी ना?
2: नहीं रे, पूछ पूछ ना।
4: लगन होकर इस गांव में मैं आई, एक बरस से ऊपर हो गया, पर मैंने विलासराव काका को कभी नहीं देखा। कहीं बाहर गांव में रहते हैं वो?
2: ये तो मैं भी नहीं जानती कि वो कहाँ हैं। गणपति और कार्तिकेय छोटे छोटे थे, तभी एक दिवस घर की देहरी जो लांघी तो लौट के ही नहीं आए।
4: पर क्यों काकू?
2: मेरा नसीब माहिर में आई नहीं मिली और सासरे में पति, अकेला जीवन गुजारना लिखा था मेरे हाथ में।
4: पर ऐसा क्यों काकू? और सुना है काका तो आपके ससुर जी के इकलौते पुत्र थे।
2: हाँ, ससुर जी अपने देवघर, अपने भगवान, पूजा पाठ, कर्म कांड करवाने में लगे रहे। मेरी माँ की तरह सासू माँ भी गणपति के अप्पा को जन्म देते ही छोड़ के चली गई। मेरा नवरा नौकर चाकरों के भरोसे बड़ा होता रहा, पैसे की कोई कमी नहीं थी, इसलिए मुंह से निकलते ही उसकी बात पूरी की। अप्पा साहेब को देवघर और अपने यजमानों से इतना समय ही नहीं मिलता था कि कुछ देखते कि उनका बड़ा होता पोरगा क्या खाता है, क्या पीता है, किसके साथ उठता बैठता है। और जब मैं लग्न के बाद बच्ची से बड़ी हुई, ये समझ पाती, गणपति के पिता को दारू की लत लग चुकी थी। एक सुबह ससुर जी ने इन्हें देवघर में बेसुध पड़े देख लिया। वो आपे से बाहर हो गए, इन्हें झिझोड़ते रहे, पुकारते रहे, पर इन्हें होश कहाँ। गुस्से में भरे अप्पा इन्हें खींचते हुए बाहर लाए और जोर से धकेलते हुए कहा,

0: आज तूने भगवान के घर को भी भ्रष्ट कर डाला। अब इस घर में लौट कर तभी आना जब पशु से मनुष्य बन जाओ। लेकिन या तो वो ऐसा कर ही ना सके या फिर
1: सब जानता हूं। जैसा भी था, काकू को अपने ससुर से बड़ी हिम्मत थी, लेकिन दीक्षित आजोबा के निधन के बाद तो ये पूरी तरह बेसहारा ही हो। इसीलिए उनकी अंत्येष्टि पर जब गणपति और कार्तिकेय आए थे तो मैंने उनसे जोर देकर कहा था, अब यहाँ क्या है, तुम लोग अब काकू को अपने साथ मुंबई ले जाओ, तब भी दोनों में से एक न पसीजा। गणपति भाऊ कहने लगे, छोटी सी खोली में हम दोनों और बच्चे कैसे घुस घुस के रहते हैं, क्या बोलने का। और छोटे ने ये कहकर पल्ला झाड़ लिया कि बड़े शहर में उसकी छोटी सी पगार से पूरा नहीं पड़ता, इस वास्ते उसकी बाइकों को नौकरी करनी पड़ती है, आधे से ज्यादा दिवस घर से बाहर ही रहती है, तो आई को कौन देखेगा। अरे रात काफी हो गई है, मन्या अभी तक नहीं आई,
2: मैं उसे लेकर आती हूँ।
0: मन्या पोरगी, अब तो अपन घर ही जा, तेरी आई चिंता करती होगी, जा बार जा।
3: आजी, तुम्हारे को कितने जोर का ताप चढ़ा है, मैं माथे पे ठंडे पानी की पट्टी रखती हूँ, ताप थोड़ा कम हो जाएगा फिर चली जाऊंगी। आजी अच्छा लगता है ना, ठंडा ठंडा।
0: हाँ बार, लगता है पिछले जन्म में तू मेरी माँ ही थी।
3: आजी तुमचे देवघर में कितने ढेर सारे देवी देवता हैं, सीता राम जी, राधा कृष्ण जी, शंकर जी, हनुमान जी, देवी माँ और गणपति बप्पा, ये बताओ तुम्हें इनमें से सबसे अच्छे कौन लगते हैं?
0: अभी क्या बोलने का पोरगी,
3: बताओ ना आजी।
0: पोरगी, अपने बाबा के घर में जब से मैंने होश संभाला, गणपति बप्पा की ये मूर्ति देखी जो आज यहाँ है, इन्हीं के साथ खेल खेल के, बातें कर कर के मैं बड़ी हुई पोरगी। फिर जब लगने के बाद बाबा मुझे सासरे के लिए विदा करने लगे तो जिद करके गणपति बप्पा को अपने साथ ही ले आई और इसे मेरे ससुर जी ने अपने देवघर में स्थापित कर दिया। बचपन से आज तक एक एक कर मुझे सब छोड़ कर चले गए, लेकिन मेरे गणपति बप्पा ने मुझे नहीं छोड़ा।
4: मन्या,
0: अरे देख तो, तेरी आई आ गई।
4: काकू मन्या है।
5: आ, कैसी तबीयत है काकू? अरे तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। मन्या ऐसा कर, तू इधर ही रुक आजी के पास, मैं अभी तेरे अप्पा को बोल के आई। मन्या के अप्पा को बोलूंगी, मुंबई फोन लगाकर काकू के बेटों को बोल दे कि इनकी हालत ठीक नहीं है।

0: अग मंदा चहा आण ना बाबा।
1: लाती लाती रे बाबा, ये लो चहा।
0: एक मिनट एक मिनट। हेलो, कौन? हाँ बोल बाबूराव। बर मैं कार्तिकेय को बोल दूंगा।
1: क्या बोलता था बाबूराव?
0: बोलता था कि आई की हालत बहुत ज्यादा खराब है, तुम लोग फौरन आ जाओ।
1: अब क्या करना है?
0: कार्तिकेय को बोलता हूँ, काम से लौट के इधर ही आ जाए, फिर बात करते हैं।
2: डॉक्टर साहब, काकू ठीक तो हो जाएगी?
3: कोई चमत्कार हो जाए तो अलग बात है, वैसे उम्मीद कम है।
2: दे पारे देवा।
0: अभी समझ में नहीं आता कस काय करनार, महीने के आखिरी दिन चल रहे हैं, वैसे ही हम पति पत्नी और तीन बच्चे, इतने बड़े परिवार का महीना ही कहां पूरा पड़ता है।
1: कार्तिकेय भाऊ, ऐसा करो, तुम स्वाति को लेकर चले जाओ, तुमची पोरगी को मैं संभाल लूंगी।
4: कैसी बातें करती हो वही?

0: मुझे काम से अचानक छुट्टी कैसे मिलेगी परा?
1: हाँ, वैसे भी इसकी नौकरी अभी परमानेंट कहाँ हुई है। काम हाथ से निकल गया तो मुंबई छोड़ना पड़ेगा।
2: अब इतने बड़े शहर में हम लोग कैसे कैसे करके अपना पेट पालते हैं। गांव वालों को ये बात समझाना भी तो बहुत कठिन है। वैसे भी हम लोग आई के पास जाते ही कितना है। जब भी फोन पर आई से बात हुई है वो ये ही बोलती रहती है, बाबूराव ने ये किया, बाबूराव ने ये किया, उसकी बाइकों ने वो किया। खूब सहारा है इन लोगों का। इस बार भी ये ही लोग आई की सेवा में लगे हुए हैं।
0: कीर्ति के पापा, जरा इधर तो आना। मेरी बात ध्यान से सुनना। देखो, इस समय हमारा गांव जाना बहुत जरूरी है। मरा हाथी भी 1.25 लाख का होता है। कुछ ना हो, फिर भी आई के पास आजोबा की इतनी बड़ी हवेली है, देवघर है, जमीन है, कुआं है, क्या नहीं है। और थोड़ा बहुत सोना चांदी भी पड़ा ही होगा। अगर हम लोग नहीं गए तो ये बाबूराव ही सब कुछ कब्जा करके ले जाएगा। मैं क्या बोलती, कीर्ति को आई के घर छोड़ के हम दोनों आज शाम को ही गांव चले चलते हैं।
3: सचिन के पापा, जरा किचन में आकर बड़ा वाला टोप तो उतार देना।
2: ये ले टोप।
3: अरे, तुम कहाँ चल दिए? टोप का तो बहाना था। मैं क्या बोलती कि स्वाति और कार्तिकेय के इरादे नेक नहीं है। आई गई नहीं कि उनका दाह संस्कार करके जमीन जायदाद पर तो ये अपना दावा पक्का कर लेंगे। इसलिए मैं बोलती कि बच्चों को 2-4 दिन मेरी माँ संभाल लेगी। हम सब गांव होकर आते हैं। अरे, ऐसा क्या देखते हो? जाके बोल दो कार्तिकेय को कि हम सभी गांव चलेंगे।
2: बर मी बोल तो।
0: अप्पा, आई आज ही कब ठीक होगी? देखो ना, मुझसे बात ही नहीं कर रही है।
4: रडू न गोपाल, तेरी आज ही ठीक हो जाएगी। तू तो बस अपने गणपति बप्पा से उनके लिए प्रार्थना कर।
5: मनिया के अप्पा, मुंबई से किसी का फोन आया?
4: नहीं, जब से गणपति भाऊ को खबर की है तब से मेरा भी ध्यान इधर ही लगा हुआ है। पता नहीं, कुछ खबर नहीं।
5: जिन बच्चों को माँ 9 महीने पेट में रख के जन्म देती है, दिन रात जाग के बड़ा करती है, उसे उसके बच्चे इस तरह भुला कैसे सकते हैं? क्यों हमारी मन्या भी?
4: ऐसा नहीं बोलते विद्या। देखता हूँ, देखता हूँ, मैं जाकर देखता हूँ। अरे गणपति भाऊ, कार्तिके, वहनी वहनी, आओ आओ आइए।
5: काकू, काकू, आंखें खोलो, देखो तो कौन आया है। गणपति, कार्तिके,
6: काहे जाने तुला आई? आई, मुझे माफ कर दे, मैं 2 साल से तेरे पास नहीं आ सका।
5: माझी नाती कोठा है, बच्चे कहाँ हैं?
0: आई, बच्चों की मासिक परीक्षा थी इसलिए।
5: पर बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तो अपने पुरखों का नाम आगे बढ़ाएंगे। विद्या, इन लोगों को चाय बना के पिला, 2 घूंट मैं भी पीऊंगी।
7: हाँ काकू।
4: देखा भाऊ, बच्चों को देखते ही काकू में जान पड़ गई।
5: बाबूराव, जब से ताप चढ़ा है मेरी मन्या ही भोग आरती करती है। आज बहुत दिनों के बाद पूरा परिवार बप्पा के दरबार में है तो खूब मन से भोग बनेगा, संध्या आरती होगी।

0: म्हणण्या प्रसाद घे, विद्या भाऊ प्रसाद घ्या।
1: रोहिणी काकू, अब तो तुम्हारा परिवार तुम्हारे पास है, अब हम अपने घर निकलते हैं।

0: मन्या मन्या बेटा, आजी को प्रणाम कर और चल।
1: आजी प्रणाम, काका काकू नमस्कार।
2: जीती रहे बेटा।
0: चल मन्या चल, आओ विद्या चलो।
3: आई, मैंने तुम्हारे लिए पतली खिचड़ी बनाई है, गरम गरम खा लो।
4: ना, इच्छा नहीं है।
5: तू भी ना स्वाति, आई के वास्ते।

0: अरे मैं भी तो आई के लिए उन्हीं कपड़े लेकर आई हूँ। ठंडी जो आने वाली है ना, अभी लाई आई।
1: वो सब बाद में, पहले तुम सब खाना खा लो।
2: अगो भाई, कोई ये तो बोलो, मेरे हाथ की बनी पूरन पोड़ी कैसी बनी है?
3: हाँ ठीक ठाक ही है, पर मेरी आई के हाथ की बनी पुरल पोली का कोई मुकाबला नहीं।
4: खोटा, मेरी दोनों ही सुन भाई चांगला जेवण बनाती है।
0: सुनो, खाते पीते ही आई से जरा जमीन जायदाद की बात भी तो निकालो। पूछो तो सही, कागज पत्तर कहाँ रखे हैं? अगर भाऊ ने अकेले ही हाथ साफ कर लिया ना, तो तुम देखते ही रह जाओगे।
5: करता हूँ। अरे स्वाति, तू तो मुंबई की मुलगी ठहरी, तू क्या जाने हमारे इस घर के ठाट पा। जब मैं और भाऊ मन्या के बराबर थे तो देवघर के पीछे अंगूर का बगीचा, दूर दूर तक अंगूर ही अंगूर। मैं और भाऊ उसी से पेट भर लेते थे, है ना भाऊ?
3: और नहीं तो क्या, मुंबई में तो बच्चों को चार दाने अंगूर के खिलाने के लिए बड़ा नोट छुट्टा करना पड़ता है।
5: अरे अंगूर की छोड़ो भाऊ, आटा चावल दाल हर चीज आधी आधी किलो मंगा लें तो बहुत है। और यहाँ आई का भंडार घर अन्न धान्य से भरा रहता था, ऊपर से मंदिर में बेहिसाब चढ़ावा, ग्रहण व्रहण पड़े तो भक्त सोना चांदी तक दान पेटी में डाल जाते थे, है ना आई?
4: तुम दोनों को गांव छोड़े लगभग 15-20 साल हुए और तुम्हारे अजूबा को शांत हुए 10 वर्ष। अंगूर की खेती तो तुम लोगों के सामने ना के बराबर ही रह गई थी। जैसे जैसे अप्पा साहब की आयु बढ़ती गई, खेती की देखभाल भी उनके बस की नहीं रही। खेत दूसरों की बटाई पर दे दिया और आय का एकमात्र साधन मंदिर का चढ़ावा ही रह गया। फिर जब से अप्पा साहब ने बिस्तर पकड़ा, मतलब खर्चा ही खर्चा, और आदमी ना और आमदनी ना के बराबर, फिर वो भी एक दिन इस संसार से चले गए। पंडित केशव भाऊ दीक्षित का जाना मतलब एक तरह से मंदिर के पट बंद होना। उनके यजमान खत्म हो गए, चढ़ावे लगभग बंद हो गए। फिर भी मैंने सोचा, मेरा अपना खर्च ही क्या है, गुजर हो जाएगी। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले जो हुआ वो मैंने कभी नहीं सोचा था। सच तो ये है कि उसी सदमे के कारण आज मैं बिस्तर से लग गई। कोड़ा है, आई आ जा, आ अंदर आ जा। काय साला, तेरे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है बाबूराव?
6: वो काकू, आप पहले बैठ जाओ, बैठ जाओ।
4: हाँ, अब बोल।
6: विलासराव काका की मुझे याद तो नहीं, लेकिन उनके बारे में जानता सब हूँ। इतने साल आपने अकेले हिम्मत जुटा के कैसे काटे हैं वो भी जानता हूँ, लेकिन ये न मैं जानता था न आपके, कुछ समय पहले तक काका औरंगाबाद में ही थे।
4: थे या नहीं थे, मुझे क्या अंतर पड़ता है?
6: हाँ, लेकिन अब जो बात मैं आपको बताऊंगा वो सुन के आपको बहुत दुख होगा।
4: तू यही भूलेगा ना बाबूराव कि वो अब जीवित नहीं रहे?
6: नहीं, ये बात नहीं है, ये बात नहीं है काकू, लेकिन उन्होंने अब जो काम किया है वो पहले से भी बहुत बुरा किया है। ये कागजात देखो जरा, ये
4: क्या है ये बाबूराव?
6: इन पिछले 30 सालों में वो जिन लोगों से पैसा उधार लेकर अय्याशी करते रहे, वो भी ये बोलकर कि यहाँ उनके बगीचे हैं, खेत हैं, मंदिर हैं, हवेली हैं, लोग पैसा देते रहे।

0: पर चक्रव्याज बढ़ता गया और रकम लाखों तक पहुंच गई। गांव का सरपंच होने के नाते पैसा देने वाले काका के हाथ के लिखे पावती और कागजात लेकर मेरे पास आए और फिर बोले, हमें ये रकम दिलवाओ। मैंने कहा, घर में अकेली काकी रहती है, पैसा उनके पास है नहीं, तो लाखों की रकम कैसे चुकाएंगी भला। इस पर उन्होंने कुड़की के कागजात दिखाए और कहा, ये बात तो हम भी जानते थे, इसीलिए हम अदालत का ये कागज लेकर ही यहाँ आए हैं। काकू काकू, अगर रकम इतनी होती कि मैं चुका सकता तो यहाँ तक ना आता आपके पास। आपसे ये पूछने आया हूँ कि क्या इस बारे में गणपति भाऊ और कार्तिकेय से बात करूं?
1: नहीं, इन वर्षों में ये लोग तो बस लेते ही लेते रहे हैं, देने की बात सुनेंगे भी नहीं। ठीक है बाबूराव, तू मुझे बता दे कहाँ अंगूठा लगाना है। हो सके तो उन लोगों से मेरी इतनी सी बात जरूर कह देना कि जब तक मेरे प्राण ना निकले मुझे यहीं किसी कोने में पड़ा रहने दे।

0: हमारा यहां कुछ भी नहीं है।
1: मंदा साल पैकिंग कर, सुबह की पहली बस से ही हम मुंबई जाएंगे।
2: अरे इतना कुछ हो गया और हमें खबर तक नहीं पड़ी।
0: वो तो तब पड़ती जब कभी तुम लोग पलट के इस तरफ देखते।
2: अरे फोकट में 1000-1500 की चपत लग गई।
1: चल अभी, नहीं तो बस ही छूट जाएगी।
3: अगो भाई आई कुठे गेली?
4: देवघर में होगी ना बहनी? अरे इधर तो नहीं है, पता नहीं इतनी सुबह सुबह आई किधर चली गई।
2: आई
3: आई
4: आई
2: अरे घर में तो नहीं है। चलो बाहर
3: आई
2: चलकर देखते हैं। चलो
1: मन्या, ये बाबूराव इतना घबराया सा कहाँ जा रहा है? बाबूराव, बाबूराव,
2: बाबूराव।
5: हाँ, वो मन्या मेरे से बोलकर गोदावरी नदी की तरफ भाग गई है कि आज ही अपने गणपति बप्पा को सिर पर रखे नदी की तरफ भागी जा रही है। उनको ताप चढ़ा है, मैं जाकर देखती हूँ।
0: मन्या, मन्या,
1: काकू,
0: काकू,
1: ओ काकू, काकू, मन्या।
0: बप्पा, आज तुम्हारा आखिरी विसर्जन कर दूं और अपना भी। बप्पा, गणपति चालेगा वाला, चैन पड़े ना माला। गणपति चालेगा वाला, चैन पड़े ना माला।
6: जय देव, जय देव, जय मंगल मूर्ति, दर्शन मात्रे माना कामना पूर्ति। जय देव, जय देव।

0: घर से ले गए, लेकिन मेरे गणपति बप्पा ने मुझे नहीं छोड़ा। मेरे गणपति बप्पा ने मुझे नहीं छोड़ा।
1: अभी आप सुन रहे थे गणेश विसर्जन पर नाटक विसर्जन, लेखक डॉक्टर अश्ला नागर और प्रस्तुति थी यतीन चतुर्वेदी की। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।

102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

कुमार सानू को भी आपने सुना फिल्म परदेश में, और आइए सुनते हैं अलका याग्निक उदित नारायण को। फिल्म का नाम है राजा हिंदुस्तानी।

0: जोकर।
1: अभी आपने सुना अलका याग्निक, उदित नारायण और साथियों को फिल्म राजा हिंदुस्तानी में, और सुनते हैं कार्यक्रम में ये अगला गीत।

0: लता मंगेशकर और उदित नारायण के गाए फिल्म दिल तो पागल है के गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी, प्रस्तुति देवराज कृष्ण दीक्षित की है।
1: हेलो हेलो आकाशवाणी, हेलो आकाशवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का अभिवादन, नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आज के कार्यक्रम में। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ देवराज। जी हाँ श्रोताओं, एक बार फिर से हाजिर है आपका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी, जिसमें हमारे श्रोता करते हैं फोन के माध्यम से अपने दिल की बात और हम सुनवाते हैं उनको उनकी पसंद का गाना। जी हाँ श्रोताओं, हम आपको बता दें इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हम करते हैं प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को। हमारा टेलीफोन नंबर है 25 30 135। मथुरा से बाहर के श्रोता 0565 STD कोड लगाकर हमें फोन करें। और अब आइए आरंभ करते हैं आज का हेलो आकाशवाणी।
2: हेलो आकाशवाणी।
3: परमानी महोदय, सर नमस्कार।
2: नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में आपका।
3: जी हृदय से धन्यवाद करते हुए, मैं आपका वही पुराना जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति गोवर्धन रोड मथुरा से आदरणीय दीक्षित जी से वार्तालाप कर रहा हूँ। सादर नमस्कार।
2: नमस्कार, कैसे हैं प्रजापति जी?
3: बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, रेडियो सुनते रहते हैं, आप लोगों से वार्तालाप करने का इच्छुक रहता हूँ। वार्तालाप होती है, बहुत ही सुखद अनुभूत करता हूँ।
2: जी, काफी दिनों के बाद बात हो रही है आज हमारी आपसे।
3: जी निसंदेह, क्या है कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, थोड़ा सा चेस्ट में प्रॉब्लम है, सर्दी खांसी जुकाम है।
2: अपना ध्यान रखिए प्रजापति जी, फरमाइश बताइए कौन सा गीत आपको सुनवाएं।
3: मानवर, आज आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, फिल्म का नाम है बंदनी।
2: जी,
3: मुकेश साहब ने गीत को गाया है, ओ जाने वाले हो सके तो लौट के आना।
2: सुनवाते हैं आपकी फरमाइश का ये गीत। बहुत बहुत धन्यवाद प्रजापति जी।
3: जी हृदय धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो। श्यादर नमस्कार।
2: नमस्कार।

0: हेलो आकाशवाणी,
1: सर जी जय श्री महाकाल, राधे राधे।
0: राधे राधे।
1: मैं शिवा लोहट एमपी विदिशा से आपसे बात कर रहा हूँ सर, आपका नियमित श्रोता।
0: शिवाजी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: जी हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आपकी मधुर मधुर आवाज मुझ तक पहुंच रही है और आपकी मेरे तक पहुंच रही है, काफी आनंद आ रहा है सर।
0: जी, क्या हाल चाल है शिवाजी?
1: सर जी बहुत बढ़िया है, आने वाली अनंत चौदस की आपको और आपके पूरे स्टाफ को और सभी सुनने वालों को ढेर सारी शुभकामनाएं सर।
0: आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद सर जी।
0: फरमाइश क्या रहेगी आज?
1: सर जी नई वाली अग्निपथ मूवी रहेगी
0: जी,
1: और उसमें एक गाना है ना देवासी गणेशा।
0: सुनवा रहे हैं आपकी फरमाइश। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू सर।

0: हेलो आकाशवाणी।
1: हेलो आकाशवाणी, नमस्कार जी।
0: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका।
1: मैं ब्रज रेडियो श्रोता हूँ, सांवरिया गांव थरावर, तहसील कुम्हेर, जिला टीक, राजस्थान से।
0: सांवरिया जी, कैसे हाल चाल हैं?
1: बहुत अच्छे हैं सर। बरसात तो हट चुकी है
0: जी
1: लेकिन थोड़ी गर्मी जरूर है।
0: जी हाँ, उमस है अभी हल्की।
1: हाँ, और खेती में अपने यहाँ पर तैयारी है रवि की फसल की, उसकी तैयारी करने लगे हैं, जुताई।
0: आपके यहाँ तो सरसों होती होगी?
1: हाँ, सरसों होती है हमारे यहाँ तो, सरसों और गेहूँ और चना।
0: सरसों की तैयारी में लगे होंगे किसान भाई।
1: बिल्कुल लग गए सर।
0: जी, बताइए आज सांवरिया जी कौन सा गीत सुनवाए आपको?
1: हसीना मान जाएगी, बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम।
0: लीजिए, सुनवा रहे हैं आपकी फरमाइश। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद दीक्षित जी, नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: हेलो आकाशवाणी।
1: राधे राधे सर।
0: राधे राधे।
1: और सर मैं गांव उस पार से ब्रिज रेडियो श्रोता मित्र वीरेंद्र कुमार बोल रहा हूँ सर।
0: स्वागत है वीरेंद्र जी।
1: और सर अच्छे हो?
0: एकदम अच्छे हैं। आप कैसे हैं?
1: सर अच्छे हैं, बढ़िया हैं। आप लोगों की दुआ है, ब्यारी जी का आशीर्वाद है सर।
0: काम बढ़िया चल रहा है?
1: हाँ सर काम अच्छा चल रहा है।
0: जी जी बताइए, आज क्या फरमाइश है आपकी?
1: सर जी फिल्म का नाम तो पता नहीं, गाने के बोले हैं। आने वाले आजा तेरी याद सताए, दिल का ये भरोसा कहीं टूट न जा।
0: सुनवाते हैं वीरेंद्र जी आपकी फरमाइश का ये गाना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: सर जी श्रोता का नाम लेना चाहता हूँ मैं।
0: जी
1: सर जी, चौधरी महेंद्र सिंह जी हैं, शारदा प्रजापति जी हैं और सर यादराम जी हैं गांव उस पार से सावलिया थैरावर वाले, उनकी फरमाइश का ये गाना है सर।
0: सुनवाते हैं आप सभी की फरमाइश पर ये गीत। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: नमस्ते सर।
0: नमस्ते।

0: हेलो
1: हेलो आकाशवाणी।
0: जी, नमस्ते।
1: नमस्ते प्रेम
0: सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ।
1: सिसोदिया जी, कहाँ से बोल रहे हैं?
0: ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से। मैं
1: कैसे हैं सिसोदिया जी?
0: बहुत अच्छा हूँ, आप बताइए, आप कैसे हो?
1: बढ़िया एकदम, सभी लोग बहुत अच्छे हैं। और मौसम कैसा है आपके यहाँ?
0: मौसम हल्की हल्की धूप भी है, गर्मी भी है, और सोयाबीन की कटाई हो रही है। अभी
1: अच्छा
0: आज शुरुआत की है और अभी हम पानी पीने के लिए बैठे थे
1: जी,
0: तो आपको कॉल लगा दिया है।
1: बहुत अच्छा किया आपने।

0: फरमाइश क्या रहेगी आज
1: जी बताना चाहेंगे। उससे पहले जी अभी सोयाबीन की कटाई होने के बाद में यहाँ पे गेहूँ और लहसुन की फसल लगाई जाती है। हाँ जी, और मैं मोबाइल ऐप पे कार्यक्रम सुनता हूँ और अभी जितने लोग काम कर रहे हैं ना सभी आपको नमस्ते भी बोल रहे हैं।
0: सभी को हमारा नमस्कार बोलिए और सुनते रहिए हमारा आकाशवाणी मथुरा केंद्र।
1: जी बिल्कुल
0: जी।
1: तो आप कुलीन नंबर वन फिल्म का
0: जी
1: जब दिल न लगे दिलदार हमारी गली आ जाना
0: सुनवाते हैं आपकी फरमाइश। बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी, थैंक यू सो मच।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी, प्रस्तुति देवराज कृष्ण दीक्षित की थी। श्रोताओं, हम आपको स्मरण करा दें, आज कार्यक्रम गीत बात और SMS का प्रसारण होगा दिन में 12 बजे। श्रोताओं, 22 सितंबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम में 9वें इंडिया इंटरनेशनल वाटर वीक 2026 की शुरुआत हुई है और 5 दिन तक चलने वाले इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन की थीम है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। जी हां, हम भी बात करेंगे जल प्रबंधन के विषय में और कैसे हम अपने जल को बचा सकते हैं। तो आप भी तैयार रहिए अपने SMS के साथ कार्यक्रम गीत बात और SMS में। हमारा फोन नंबर है 94-122-25-575। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम अर्पण।

चित्रलेखा इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे, स्वर थे मोहम्मद रफी के। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म नरसी भगत से। इस गीत को स्वर दिए हैं हेमंत कुमार और शोभा मल्होत्रा ने।

श्रोतो, अभी आपने सुना फिल्म नरसी भगत का ये गीत। युगल स्वर थे हेमंत कुमार और शोभा मल्होत्रा के। श्रोताओ, कार्यक्रम संबंधित ये सूचना सुनिए। आज कार्यक्रम गीत बात और एसएमएस में दिन में 12 बजे हम बात करेंगे जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन की। जी हां, इस बार 22 सितंबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम में 9वें इंडिया इंटरनेशनल वाटर वीक 2026 की

शुरुआत हुई और 5 दिन तक चलने वाले इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन की थीम है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। तो आज इसी संदर्भ में आप भी लिखिए कि आप कैसे जल बचा रहे हैं और क्या कुछ आपने प्रबंधन किया है इस संदर्भ में।

दो आंखें बारह हाथ, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे संवेसरों में। और श्रोताओं, हम आपको बता दें, आज कार्यक्रम गीत बात और एसएमएस में हम बात करेंगे जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन के संदर्भ में। जी हां, ये थीम है इस बार 22 सितंबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम में 9वें इंडिया इंटरनेशनल वाटर वीक 2026 की शुरुआत हुई है और इस बार यही थीम है और हम और आप मिलकर इस थीम को सार्थक बनाएंगे और हम बताएंगे एक दूसरे को कि हम जल बचाने के लिए क्या करते हैं। अगर आपका कोई ऑफिस है, औद्योगिक स्थल है या घर में भी, आप किस प्रकार से जल बचा रहे हैं, क्या कुछ आपके द्वारा प्रयास किए जाते हैं, उन संदर्भों में चर्चा करेंगे ताकि हम एक दूसरे से कुछ सीख पाएं और अपने इस आयोजन में हम भी अपनी सहभागिता अपने स्तर से कर पाएं। तो आपके एसएमएस हम तक जरूर पहुंचने चाहिए कार्यक्रम गीत बात और एसएमएस में। समय तो आपको पता ही है, दिन में 12 बजे, और नंबर 94 122 25 575।

अभी आपने सुना हम दोनों फिल्म का गीत, स्वर थे लता मंगेशकर के। श्रोताओ, हम आपको बता दें, कार्यक्रम गीत बात और एसएमएस में हम बात करेंगे जल बचाने के तरीकों के संदर्भ में। आप अपने घर में, अपने ऑफिस में, अपने औद्योगिक स्थान पर या अन्य सार्वजनिक स्थानों पर भी जल बचाने के लिए क्या प्रयास करते हैं और किन बातों का ख्याल रखते हैं, हमें अपने एसएमएस के द्वारा जरूर भेजिए। फोन नंबर 94 122 25 575।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म कोहिनूर का ये गीत, स्वर थे मोहम्मद रफी के। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अर्पण।

जी हाँ श्रोताओं, आज की बात शुरू करते हैं एक ऐसी खबर से जो इन दिनों देश दुनिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। 22 सितंबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम में 9वें इंडिया इंटरनेशनल वाटर वीक 2026 की शुरुआत हुई। 5 दिन तक चलने वाले इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन की थीम है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन, यानी बात सिर्फ पानी बचाने की नहीं है, बात ये समझने की भी है कि बदलती जलवायु, बढ़ते शहरों और बढ़ती जरूरतों के साथ आने वाले समय में हमारे पास पानी कैसे सुरक्षित रहे। इस आयोजन में नीति निर्माताओं से लेकर जल विशेषज्ञ, शोधकर्ता, उद्योग, स्टार्टअप, युवा और सामाजिक संगठन एक साथ विचार कर रहे हैं। नीदरलैंड्स और जर्मनी साझेदार देशों के रूप में शामिल हैं और 14 राज्य भी इसमें भाग ले रहे हैं। तो अब जरा सोचिए कि जल पर चर्चा के लिए दुनिया के इतने विशेषज्ञ एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं और हमारे घर में पानी की कहानी कितनी अलग है। तो बताइए आप भी, आपके घर में पानी की कहानी कैसी है और आप क्या कुछ कर रही हैं। SMS आया है हमारे पास में मामूलवाड़ी महाराष्ट्र से, सोपान तायडे, वसंतराव भोजने और PS नानकर का, और आप लिखते हैं जल ही जीवन है, इसे बचाना हमारा कर्तव्य है। नल को खुला ना छोड़ें, टपकते नलों को तुरंत ठीक करवाएं, वर्षा जल का संचय करें, पौधों में शाम को पानी दें और आरोग्य के व्यर्थ जल का पुनः उपयोग करें, कम पानी वाले शौचालय का प्रयोग करें। तो आपने बहुत सारी ऐसी बातें लिखी हैं और जिनका उपयोग हम अगर करें अपने दैनिक जीवन में तो निश्चित रूप से हम जल को बचा पाएंगे। और ये SMS हमें भेजा है इन श्रोताओं ने, लिखने वाले श्रोता हैं मोहम्मद जाफिर मंसूरी, कमरू निशा, शाविस्ता मोहम्मद नसीब लिखते हैं मंसूरी रेडियो लिसनर क्लब बाजार रोड से। आप लिखते हैं जल की आवश्यकता हमारे जीवन में बहुत अधिक है और हम जहां कहीं भी अपने गली मोहल्लों में नल खुला हमें मिलता है तो हम उसे बंद कर देते हैं और अगर किसी कारण वो फिर भी बंद ना हो पाए तो उसकी कंप्लेंट भी दर्ज कराते हैं। और ये SMS हमें आया है सिद्धार्थ नगर दरियापुर बाबली से, गजानन येले, नवदीप येले, विश्वदीप येले, अशोक येले का, और शहरी वडनेर अकोला से हैं अरुणा बलदेव दामोदर और आदित्य दामोदर लिखते हैं जल बचाने हमको जरूरत ना होने पर नल बंद रखना चाहिए और बारिश के पानी को भी हमें इकट्ठा करना चाहिए। बिल्कुल, बारिश का जो पानी है उसके इकट्ठे करने के लिए घर में भी ऐसी प्रक्रिया हमें अपनानी चाहिए, खास करके जिन घरों में नए जो घर बन रहे हैं वहां पर, और विशेष रूप से ऐसे स्थानों पर भी हमें जल का संचय करना चाहिए जहां पर कच्चा स्थान है, और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र हों तो वहां पर कुआं, तालाब, पोखर इत्यादि का निर्माण भी बहुत ज़रूरी है। और ये SMS हमें भेजा है भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा ने, जल जीवन है मानो तुम, कदर करना जानो तुम। तो ये एक स्लोगन हमें भेजा है इन श्रोताओं ने। और लिखते हैं वाराणसी से अरुण मालवीय और सरिता मालवीय, जल है तो कल है, इसलिए जल को हमेशा सुरक्षित रखें। बिल्कुल सुरक्षित रखना चाहिए, लेकिन हम ये भी जानना चाह रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं जल बचाने के लिए। कुछ ऐसे प्रयोग जो आप अपने घर में कर रहे हो या कहीं जहां कहीं भी आपको कुछ ऐसा लगता हो, तो ये SMS हमें भेजा है

उमाली से अनूप कुमार और उद्धव पाटिल ने पलसी से हैं के एस शेंगोरकर और डॉक्टर जयश्री। जल बिना जीवन व्यर्थ है, फ्यूचर के लिए जल बचाना है तो उसका बचाव होना बहुत जरूरी है। और देखिए यही चर्चा का विषय हमने इस बार रखा है। और आप क्या कर रहे हैं आपने नहीं बताया। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा लिख रहे हैं। जल ही जीवन है, याद रखें, जल की एक एक बूंद बचाना भविष्य की एक एक सांसें बचाने जैसा है। तो बिल्कुल सांसें बचाने जैसा है और हमें जल को बचाना है। और अभी आपको सुनवाना है एक गीत।

और ये कार्यक्रम में SMS आया है हमारे पास इन श्रोताओं का। वाइट फील्ड बेंगलुरु से हैं भारत भूषण अंजु श्रीवास्तव, दिव्येंद्र भूषण संस्कृति पौरुष और रामगढ़ केंट से हैं महेंद्र मौनी मोदी और कुलदीप कंवल। लिखते हैं जल है तो कल है और जल का दुरुपयोग हम नहीं करते, घर का पोछा लगे हुए जल से पौधों का सिंचन करते हैं, शेविंग और दांतों को साफ करते समय जल को अनावश्यक रूप से नहीं बहाते, नहाते समय शावर का नहीं बल्कि बाल्टी का उपयोग करते हैं। बिल्कुल, ये बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं जिनका उपयोग करके हम छोटे छोटे से प्रयासों से जल बचा सकते हैं। जल ही जीवन है, जल बचाओ जीवन सजाओ, बूंद बूंद अनमोल है। ये SMS हमें भेजा है तेलंगाना से कंगुला गोपाल माहेश्वरी और प्रवल्लिका और इनके सभी परिवारी जनों ने। और ये SMS हमें भेजा है लिखने वाले श्रोता हैं सत्यनारायण, कपिल, शोभा, फुंदी बाई बांगरी, बांगरी मोहल्ला, जिला झालावाड़ राजस्थान से हमें SMS किया है। साथ ही इनके परिवारी जन हैं हर्षिता, रामेश्वर, मीनाक्षी और श्रीमती मनोहर बाई बांगरी, प्रभुलाल बांगरी। आपने लिखा है मैडम जल है तो जिंदा दिल है, जल ही जीवन सफल है, जहाँ जरूर है ज़रूरत है उसी के हिसाब से पानी का उपयोग करते हैं। तो बस जहाँ जितनी ज़रूरत है उतना ही उपयोग कीजिए। और ये SMS आया है झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीता भाटिया, रजत भाटिया और मयंक भाटिया का। लिखते हैं कि जल मनुष्य जीव जंतु व पेड़ पौधों सभी के जीवन के लिए आवश्यक है, इसलिए जल को व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए। बिल्कुल। और अगला SMS लिखा है हमें इन श्रोताओं ने ये श्रोता हैं रामोवतार और मगनपुर झारखंड से हैं अब्बास आलम, अमजद अली और इनके सभी परिवारी जन। लिखते हैं कि जल से जुड़ा हमारा जीवन है और जीवन में जल की आवश्यकता हमें हर कार्य के लिए पड़ती है और हम भी अपने परिवार में जल बचाने के लिए प्रयास करते हैं और जल की एक एक बूंद बचाने के लिए ज़रूरत है कि हम व्यर्थ में बह रहे पानी को इधर उधर ना बिखरने दें। जहाँ कहीं भी हमें नल खुला दिखता है हम उसे सावधानी से बंद भी करते हैं। और ये SMS हमें भेजा है इन श्रोताओं ने कलानौर हरियाणा से हैं नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा। जल ही जीवन है सभी जानते हैं पर पूरी तरह जागरूक नहीं होते, प्रकृति से खिलवाड़ के कारण हमारी धरती में पानी का जलस्तर धीरे धीरे घटता जा रहा है जिसका हमको ख्याल रखना चाहिए। पेड़ कम होने के कारण वर्षा भी अब कम होती जा रही है और इसका ख्याल हम सभी को रखना है। और ये SMS भेजा है हैदराबाद से गोपाल लायने और आपने लिखा है जल ही जीवन है, जल बचाओ जीवन सजाओ, बूंद बूंद अनमोल है। और ये SMS हमें भेजा है लिखते हैं ये श्रोता शेरवानी स्कूल गंज

द्वारा से आप लिखते हैं कि हमारी जिंदगी में जल का के बिना हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते, और हम सबको मालूम है कि पानी के प्रति इतनी लापरवाही है और उसका हमें मोल भी नहीं पता। जब पानी नहीं होगा तो हम किस तरह जीवित रहेंगे? हम तो यही कहना चाहेंगे, पानी बचाएं, सेव वाटर,

की निरंतर कमी हो रही है और हमें जल को बचाना आवश्यक भी है, और वर्षा के जल का भी हमें संचय करना चाहिए। जब कहीं भी हमें नल खुले दिखें तो हमें बंद करना चाहिए। जल को व्यर्थ नहीं बहाना है, हम अपने स्तर से भी जागरूकता लानी होगी जल को बचाने के लिए। राज्य सरकार भी काफ़ी मुहिम चला रही है, तो उस मुहिम में हमें भाग लेना चाहिए और एक टीम वर्क बनाकर जहां भी हमारे गली मोहल्लों में गांव में जल की बर्बादी हो रही है तो उस पर अंकुश लगना भी बहुत ज़रूरी है। और ये SMS हमें भेजा है इन श्रोताओं ने, लिखते हैं जल का जल है तो जिंदा दिल है, जल ही जीवन सफल करता है और जल के बिना हमारा जीवन अधूरा है, और हमें जल बचाने के लिए निरंतर प्रयास करने होंगे। अपनी गाड़ी इत्यादि धोने के लिए बाल्टी और मग का इस्तेमाल करें, और गाँव में भी पशुओं को नहलाने के लिए समरसेबल के पाइप का इस्तेमाल ना करके उनको भी इसी प्रकार से स्नान कराएं। ये SMS भेजा है सत्यनारायण कपिल शोभा फुनरी बाई बागरी ने। और ये SMS हमें भेजा है इन श्रोताओं ने, पलसी महाराष्ट्र से हैं, विजय शेगोरकर, ऋषिकेश शेगोरकर, उद्धव धोरण और अनूप कुमार। हमने स्कूल में जल बचाने के लिए बच्चों को हमेशा पानी की बचत की जानकारी देते रहते हैं। लगभग 150 वृक्ष स्कूल में लगाए हैं और उनकी निगरानी भी विद्यार्थी करते हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा SMS सबका, और इसी प्रकार से अपने स्कूल के विद्यार्थियों को वृक्षों के प्रति और जल के प्रति जागरूक बनाकर इस मुहिम में अपनी सहभागिता हम कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये SMS हमें भेजा है भागलपुर बिहार से सुभाष हरी, मणिकांत हरी, इंदु कुमार, अंकेश, अंकुश और इनके सदस्य परिवार के। पानी बर्बाद ना करें, पानी के बिना जैसे मछली नहीं जी सकती उसी तरह हमारा जीवन भी पानी के बिना नहीं हम जी सकते, और इसीलिए जल को बचाने के लिए निरंतर प्रयास करें। सब्जी आदि धोने के लिए नल का नहीं बल्कि एक पात्र में बर्तन में पानी डालकर सब्जियों को धोया जा सकता है, और उस जल का प्रयोग हम अपने पेड़ पौधों में कर सकते हैं। इसी प्रकार दाल आदि को जो भिगोने के बाद जो पानी बचता है उसमें काफ़ी न्यूट्रिशंस होते हैं, उसका भी प्रयोग हम कर सकते हैं पेड़ों के लिए। तो इस प्रकार से हम छोटी छोटी आदतों में परिवर्तन करके जल को बचा सकते हैं। और ये SMS हमें भेजा है अभय, अक्षय, माधव, प्रिंस, गीता, भावना, कीर्ति, स्वाति और संध्या बसु ने मथुरा से। जल ही जीवन है और पानी की बूंद के लिए लोग तरसते हैं, और हम लोग से बेहतर तो वह बताएंगे जो इस बात को हमसे ज़्यादा समझते हैं, जिन पर यह बात लागू होती है। ये तो बात कुछ समझ में नहीं आई, किन लोगों की बात कर रहे हैं आप? जल ही जीवन है, पर्याप्त मात्रा में जल का प्रयोग करें और जितनी ज़रूरत हो उतना ही पानी खर्च करें और जल बचाएं, जीवन बचाएं। तो बहुत सारे संदेश, बहुत सारी बातें आपके हमें लगातार इस कार्यक्रम में मिले, और अब चलते चलते आपको सुनवा देते हैं एक और प्यारा सा गीत।

ये SMS हमें भेजा है इन श्रोताओं ने, मुकेश गोस्वामी, मधु, आशी, शिवन्या और अनु गोस्वामी, विलासपुर छत्तीसगढ़ से आपने हमें SMS किया है। जल है तो कल है, जल बचाएं, जीवन बचाएं, जल की हर बूंद अनमोल है, इसे व्यर्थ ना बहने दें, पानी प्रकृति का उपहार है, इसकी हर बूंद का सम्मान करें। और ये SMS हमें भेजा है भोपाल गढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, ईशान छिपा और पूजा परिहार ने, लिखते हैं बेहतरीन विषय पर चर्चा की जा रही है। जल के विषय में आपने जो कहा है बहुत बढ़िया बात कही है, क्योंकि जल है तो कल है, जल

तो श्रोताओ, हमने आज बात करी जल बचाने के संदर्भ में, और इसकी शुरुआत हम बहुत बड़े स्तर से नहीं तो छोटे छोटे स्तर से, अपने घर के माध्यम से, अपने ऑफिस के माध्यम से, अपने गांव में जिस प्रकार से भी हम जो व्यवस्थाएं कर सकते हैं उनके माध्यम से हम जल को बचा सकते हैं, और इस विषय में हम एक नई क्रांति ला सकते हैं, क्योंकि जल है तो जीवन है। आप सभी ने बहुत प्यारे प्यारे SMS किए, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और इसी के साथ देते हैं कार्यक्रम को विराम, और सभी श्रोताओं को पुनः मेरा सादर नमस्कार।

0: हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं।
1: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिन बन गया।
2: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: अपनाए।
1: उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की अनुमन्य सुविधाओं हेतु कृषि विभाग से संपर्क करें। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
2: हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम ब्रज लोकगीत। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं ब्रजलाल नागर के स्वर में कुछ ब्रज लोकगीत।

इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम ब्रज लोकगीत, प्रसारण किया जा रहा है आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। आज इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं ब्रजलाल नागर के स्वर में कुछ ब्रज लोकगीत।

समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम ब्रज लोकगीत। आज इस कार्यक्रम में आप ब्रजलाल नागर के स्वर में कुछ लोकगीत सुन रहे हैं।

अभी आप सुन रहे थे ब्रजलाल नागर के स्वर में कुछ ब्रजलोक गीत। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार, कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सबके योगदान और भागीदारी से ही विकसित भारत का संकल्प साकार हो सकता है। श्री मोदी ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में देश में शहरों और गांवों के बीच का अंतर काफी कम हुआ है, गांवों में बुनियादी ढांचे में सुधार हुआ है और देश की महिलाओं में आत्मनिर्भरता भी बढ़ी है। प्रधानमंत्री ने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उनके बताए 7 सूत्रों का उल्लेख किया।
1: पंडित दीनदयाल जी ने हमें समाज जीवन में अपने कर्तव्यों को

0: निभाने के लिए सात सूत्र दिए हैं और आज के पुण्य दिन उन सात सूत्रों का स्मरण हर भाजपा कार्यकर्ता को नई ऊर्जा से भर देता है। ये सात सूत्र हैं सेवा भाव, संतुलन, संयम, समन्वय, सकारात्मकता, संवेदना और संवाद। आप विचार करेंगे तो पाएंगे कि यही सात सूत्रों तो आपकी इस सेवा यात्रा की आत्मा है।
1: उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का चौथा संस्करण आज से उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में शुरू हो गया है। गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5 दिन चलने वाले इस आयोजन का उद्घाटन किया। इस समय गृह मंत्री उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
2: शामिल हो रहा हूं। ये चौथे संस्करण आते आते पहले संस्करण में यूपी में जो परिवर्तन हुआ है उसका दुनिया ने परिचय किया। दूसरे में यूपी में आना है ऐसा इरादा जताया। तीसरे में यूपी में आए और चौथे में यूपी के विकास में सहयोगी बनकर $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वीं सत्र के दौरान एस्टोनिया, घाना, मालदीव, बारबाडोस और इराक के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई। डॉक्टर जयशंकर ने दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोला और ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वेरा के साथ पहलगाम आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की है। तीनों मंत्रियों ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की प्रतिबद्धता दोहराई। मेक इन इंडिया पहल के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्ष 2014 में आज ही के दिन इस पहल की शुरुआत भारत के विनिर्माण, डिजाइन और नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया के 12 वर्ष पूरे होने पर कहा कि इस पहल से देश के कई क्षेत्रों में बड़ा बदलाव आया है और उत्पादन, निवेश तथा निर्यात में बढ़ोतरी हुई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मेक इन इंडिया के 12 वर्ष पूरे होने पर कहा कि मेक इन इंडिया का अगला लक्ष्य भारत को वैश्विक विनिर्माण महाशक्ति बनाना है, जिससे 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को मजबूती मिलेगी। रेलवे ने गुजरात के भुज और बिहार के बरौनी के बीच नई अमृत भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी शुरू करने की मंजूरी दे दी है। ये रेलगाड़ी 2532 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा बिहार के महत्वपूर्ण स्थानों को जोड़ेगी। एशियाई खेलों में भारत के कमलजीत और सुरुचि सिंह ने जापान के नागोया में 10 मीटर एयर पिस्टल की मिक्स टीम स्पर्धा में आज स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने स्वर्ण पदक जीतने पर दोनों निशानेबाजों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेलों में मिक्स 4x400 मीटर रिले स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर भारतीय एथलीट मनु टीएस पुवम्मा, एमआर विशाल टीके और मिथ्या रामराज को बधाई दी है। भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है। फाइनल में भारत का सामना ईरान और चीनी ताइपे के बीच होने वाले मैच की विजेता टीम से होगा। भारतीय स्क्वाश खिलाड़ियों ने 3 पदक पक्के कर लिए हैं। जोशना चिनप्पा और वेलवन सेंथिल कुमार की जोड़ी मिक्स्ड युगल के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए हमारी दोनों सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। अब से कुछ ही देर में यानी 1:10 पर आप सुनेंगे पॉडकास्ट सीरीज पीपुल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। दिन में 1:20 पर बहनें सुनेंगी कार्यक्रम वनिता लोक। चर्चा के विषय रहेंगे श्राद्ध पक्ष और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती। इसी कार्यक्रम में सुनिएगा वार्ता किचन गार्डनिंग से मिले घर में हरा भरा पर्यावरण। वार्ताकार होंगी दीपा भार्गव। फिल्म संगीत का आनंद आप

देंगे दिन में 1:50 पर। प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का प्रसारण समय रहेगा दिन में 2:30 पर। हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी संध्या 5:10 पर। कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ से और संध्या 5:20 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। युववाणी कार्यक्रम का प्रसारण समय रहेगा संध्या 5:30।

संध्या 6:15 पर ब्रज साहित्यिक कार्यक्रम में सुनिएगा रेखा चित्र ब्याह को बिचौलिया। कवि होंगे डॉक्टर उमेश चंद्र शर्मा। संध्या वंदन कार्यक्रम पेश किया जाएगा 6:30 पर। ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम में 6:50 पर आप सुनेंगे इस कार्यक्रम में भेंटवार्ता, सरसों की बुवाई का उचित समय, बुवाई विधि, बीज दर, उपचार एवं जीवाणु खाद। वार्ताकार होंगे डॉक्टर हरवीर सिंह और इनसे भेंट करेंगे ओपी सिंह। शाम सुहानी कार्यक्रम का प्रसारण समय रहेगा 7:31। रात्रि 8:00 आप सुनेंगे विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में रात्रि 8:35 पर और रात्रि 9:15 पर सुनिएगा फिल्म संगीत। प्रदेश दर्शन का प्रसारण समय रहेगा 10:00। रात्रि 10:30 पर सुनिएगा शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में उस्ताद मुस्ताक हुसैन का ख्याल गायन। अभी आप सुन रहे थे हमारी दोनों सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। इसके अंतर्गत सुनिए पद्म भूषण से सम्मानित गायिका अलका याग्निक के साथ खास बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रही हैं ममता चोपड़ा।
2: नमस्कार। हमारी जिंदगी के जितनी यादें हैं उनका आईना बन जाती है कुछ आवाजें।

प्यार के सुर सुनते हैं उनसे तो कहीं खुशियों की धुन सुनाई देती है तो कहीं जुदाई के एहसास, जिनमें से एक आवाज आज हमारे बीच भी उपस्थित है। लंबे अंतराल के बाद चुनौतियों का सामना करते हुए आज वो हमारे बीच है, लेकिन ये एक ऐसी आवाज है जिन्होंने न केवल हमारी जिंदगी को सुरों से सजाया है बल्कि उन्होंने संगीत की एक विरासत भी देश को दी है। इसीलिए उनके तुल्य योगदान को देखते हुए देश ने भी उन्हें पद्म भूषण के सम्मान से नवाजा है। हमारे साथ हैं सुर साम्राज्ञी पद्म भूषण से सम्मानित अलका याग्निक।

0: अलका जी बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: धन्यवाद।
0: और आपको ढेरों बधाई, पद्म भूषण का सम्मान मिला है आपको।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: इतने पुरस्कार तो आपको पहले ही मिल चुके हैं अलका जी, लंबी फेहरिस्त है, उनके बीच पद्म भूषण का सम्मान आपके लिए क्या मायने रखता है?
1: बहुत बड़ा मायने रखता है। सरकार की तरफ से अगर किसी कलाकार को अप्रिशिएट किया जाए तो उसमें बात ही और हो जाती है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपनी सरकार का जिन्होंने मुझे इस सम्मान से नवाजा है।
0: आपसे मैं अब वो सवाल पूछने वाली हूँ जिस सवाल को मुझे लगता है हर आपका प्रशंसक, आपके फैंस पूछना चाहते हैं। अलका जी कैसी हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ और अपने फैंस के लिए मैं आज सामने हूँ। मुझे बहुत से मैसेजेस आए हैं और बहुत ज़्यादा खुश हैं सब और बहुत मुबारक दे रहे हैं मुझे बार बार।
0: जी बिल्कुल, मेरे को लगता है पूरा देश मुबारकबाद देना चाहता है क्योंकि आपने ना इतने दौर कवर किए हैं, इतने दशकों से आप गा रही हैं कि मुझे लगता है कि हर किसी की यादों में कहीं ना कहीं कोई गीत ऐसा होता ही है जो अलका जी से जुड़ा हुआ होता है। तो ऐसे में अलका जी, अब जब आपकी जिंदगी का इतना बड़ा अवसर है, आपके सामने आपको पद्म भूषण मिला है और ये जश्न का अवसर है, ऐसे जश्न के वक्त में अलका जी का क्या मन करता है कि कौन सा गीत है जो आपकी भावनाओं को दिखाता है?
1: मेरा अपना गीत तो मुझे ध्यान नहीं है,
0: कोई भी गीत, कोई भी।
1: लता जी का गाना है,
0: हाँ?
1: आजकल पांव जमीन पर नहीं पड़ते मेरे,
0: क्या बात है,
1: बोलो देखा है कहीं तुमने मुझे उड़ते हुए।
0: और हम आपको उड़ते हुए देख रहे हैं। लेकिन आपने अगर, क्योंकि ये कैसा पड़ाव होता है ना अलका जी, जब आप मुड़कर देखते हैं कि मतलब मुझे पद्म भूषण मिला है तो जिंदगी में मैंने क्या क्या हासिल किया। आपने इतनी शोहरत, इतना प्रेम हासिल किया है, प्यार हासिल किया है सबका, किसको देती है इसका श्रेय?
1: इसका श्रेय मैं देती हूँ अपने माँ। मम्मी मेरी गुरु रही हैं, क्लासिकल सिंगर थी, क्लासिकल गाती थी और मेरा झुकाव जो था वो लाइट की तरफ था थोड़ा, तो उन्होंने मुझे वैसे भी ट्रेन करना शुरू किया क्लासिकल म्यूजिक में ताकि उसको जिस तरह से यूज कर सकते हैं लाइट की फील्ड में, उस हिसाब से उन्होंने मुझे सिखाना शुरू किया। तो बस वो होती है आज तो बहुत खुश होती हैं,
0: बाकी बहुत खुश होती है। लेकिन क्योंकि मुझे लगता है आपका हाथ पकड़ कर वही आपको मुंबई तक लेकर गई, उन्होंने ही आपके सफर को आगे मुंबई तक पहुंचाया था। तो आपको याद है वो यादगार पल जब राज कपूर जी से मिले आप, लक्ष्मीकांत जी से, कल्याण जी, इन सब ने आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है ना?
1: हाँ किया तो है। मैं जब बॉम्बे आई तब मैं बहुत छोटी सी थी और मम्मी पापा मेरे साथ रहते थे और हर दिन उनकी छत्र छाया में मैंने गाने गाए और लोगों ने सुने।
0: और लक्ष्मीकांत जी ने आपका हाथ थामा, उसके बाद शायद आपको एक और ऊंची उड़ान के पद मिले।
1: हाँ उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा है क्योंकि वो जब मैं आई उस लाइन में तब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का बहुत बड़ा एक नाम था, तो उन्होंने मुझे सुना, पसंद किया और अच्छे अच्छे गाने दिए। गाने को एक दो तीन जैसे था, बहुत पॉपुलर हो गया था, एक के बाद एक
0: गाने आते गए और आप गाती गई। लेकिन सोचिए 1980 में आपने अपना पहला गाना गाया ना, उसके बाद अब तक तो कितने दौर की अभिनेत्रियां हैं जिनके लिए आपने गाया। कौन सी ऐसी अभिनेत्रियां थी जो आपकी आवाज, कहते थे कि आपकी आवाज उन अभिनेत्रियों पे सबसे सटीक बैठती है, जैसे आपको माधुरी की आवाज तो कहा ही जाता था।
1: मेरी आवाज मुझे लगता है कि सबसे अच्छी माधुरी दीक्षित पे बैठती है और जूही चावला है, रानी मुखर्जी, एक्चुअली सभी के लिए गाया है मैंने।
0: बहुत से गायकों के साथ भी आपने गाया है, कभी आपको अपने आप को रीइन्वेंट करने की कोशिश करनी पड़ी?
1: नहीं, कभी ऐसी कोशिश नहीं करनी पड़ी। गाया तो मैंने सब सिंगर्स के साथ है लेकिन मुझे सबसे ज्यादा यादगार जो है वो है किशोर कुमार के साथ गाए हुए गाने। और कुछ करने की जरूरत तो नहीं पड़ी, मैं बस आती थी, गाना सीखती थी और दिल से गाती थी।
0: अच्छा, अगर गायकों की मैं बात करूं, आपने बहुत सारे लेजेंड्स के साथ गाया है, मतलब सोचिए लता दी, आशा ताई, किशोर दा के साथ साथ आपने उदित नारायण कुमार, सानू तक, सबके साथ ही गाने गाए।

0: जाए। इन सब के साथ गाते हुए कौन से ऐसे गायक हैं जिनमें आपको लगता है सीखने को बड़ा कुछ मिला?
1: किशोर कुमार।
0: कोई वाक्य याद है?
1: नहीं, वो बहुत हंसमुख थे और हंसाते रहते थे हर वक्त। रिकॉर्डिंग के टाइम भी कुछ कुछ ऐसी बातें करते थे कि हंसते हंसते गला बैठने लगता था, फिर बोलना पड़ता था कि किशोरदा इतना हंसाइए मत, रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे।
0: जाहिर है, लेकिन आप जो छोटी सी 10 साल की अलका थी जो मंच पर खड़ी हुई थी और

0: कि अलका की जो मंच पर खड़ी हुई थी और इतनी तालियां मिली थी आपको उस परफॉर्मेंस में जब आपने परफॉर्म किया था।
1: हाँ, मैं कुछ 10 साल की थी तब। एक म्यूजिक डायरेक्टर हैं बलसारा करके, वी बलसारा, उनके साथ मैंने स्टेज पे गाना गाया था।
0: अच्छा अलका जी, आप मुझे लगता है कि जब भी कोई बहुत अच्छा गाती है ना तो उनके बच्चों को बहुत फायदा होता है क्योंकि बहुत अच्छी लोरियां सुनने को मिलती हैं। आप सायशा को क्या लोरी सुनाती थी?
1: सायशा को मैं लोरी तो नहीं, मगर वो जो गाना है लता दीदी का, मेरे घर आई एक नन्ही परी,
0: अच्छा,
1: वो फिर गाती थी मैं उनके लिए। उसकी बर्थडे पर मैं हमेशा खास तौर से गाती थी।
0: फैमिली के लिए टाइम निकालना मुश्किल नहीं होता था? इतना व्यस्त रहता था आपका कार्यक्रम।
1: ऐसा था कि मम्मी और पापा दोनों का, उनका बहुत सॉलिड सपोर्ट था, तो वो लोग काफी कुछ संभाल लेते, तो उनकी वजह से मैं कर पाती थी काम।
0: कोई आपका ऐसा गाना है जो आपको लगता है कि ये गाना मेरे को जब भी मन करे मैं गा सकती हूँ एनी टाइम?
1: एक दिन आप यूं हमको मिल जाएंगे, फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे, मैंने सोचा ना था।
0: आप एक रैपिड फायर करते हैं, एक कंपोजर, कोई एक ऐसे संगीतकार जो इनके साथ आप आज भी गाना पसंद करेंगे किसी भी दौर का?
1: आई थिंक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।
0: ओके, क्लासिकल म्यूजिक या फिल्म म्यूजिक?
1: फिल्म म्यूजिक।
0: स्टेज परफॉर्मेंस या स्टूडियो रिकॉर्डिंग?
1: स्टेज परफॉर्मेंस।
0: ओके, एक सॉन्ग कोई भी कभी का भी जो आपको लगता है कि काश मैंने गाया होता, किसी और का गाया होता?
1: जी ये गाना जैसे है, मेरे घर आई एक नन्ही परी, मैंने नहीं गाया, लता दीदी ने गाया
0: जी,
1: लेकिन मैं हमेशा ऐसे सोचती हूँ कि काश मैंने गाया होता ये गाना।
0: एनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस, कोई स्टेज की मेमोरेबल परफॉर्मेंस जो आपके जहन में आ रही हो?
1: अब्रॉड जो शोज होते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलता है और लोग बहुत पसंद करते हैं, तो वहाँ के जितने शोज हैं अब्रॉड के वो मुझे सब यादगारी हैं।
0: अगर आप सिंगर नहीं होती तो क्या होती?
1: सिंगर नहीं होती तो हाउसवाइफ होती, नॉर्मल।
0: सीरियसली?
1: हाँ, ऐसा कुछ शौक नहीं था कि मैं सिंगर बनूँ या कुछ, मैं यूं ही गाती थी। मेरी जो मम्मी थी उनको लगा कि इसमें कुछ खासियत है, खास बात है इसकी सिंगिंग में, तो इसको बढ़ावा देना चाहिए और इसके लिए कुछ करना चाहिए।
0: मुझे लगता है कि सभी फैंस को आपकी मदर का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने आपको आगे बढ़ाया और यहाँ तक लेकर आई हैं। अंत में पद्म भूषण को लेकर सरकार के लिए कुछ बोलना चाहेंगे?
1: सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरा दिल से उनके लिए सम्मान है और इसके लिए कंसिडर किया और ये अवार्ड दिया मुझे, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कभी कि मैंने सोचा ना था।
0: सभी फैंस, सभी उन लोगों के लिए जो म्यूजिक को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, जो फिल्मों में गाना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या लेसन देना चाहेंगे? अपनी जिंदगी का कोई एक सबक जो आप उनके साथ साझा करना चाहेंगे?
1: ना, फोकस रखें अपने काम पर, अपने गाने पर, रियाज पर। ये जो चकाचौंधी है उससे दूर रहें, लगन से करना चाहिए काम जो भी करना है।
0: वेल, दैट इज सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू सो मच अलका जी। आई एम श्योर हमारे आपके सारे फैंस आपकी इन बातों को ध्यान में रखेंगे, और उन सबके तरफ से और हमारी तरफ से भी आपके लिए ढेरों शुभकामनाएं।
1: थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।

0: पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे पद्म भूषण से सम्मानित गायिका अलका याग्निक के साथ खास बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रही थी ममता चोपड़ा। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। ये कार्यक्रम DD न्यूज के सहयोग से प्रसारित किया गया।
1: पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी।
2: ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम वनिता लोक। आज का कार्यक्रम लेकर आपके साथ हैं मीनू अग्रवाल।

उस मीनू अग्रवाल। हमारी राष्ट्रीयता का आधार भारत माता है। सिर्फ भारत नहीं, इसमें सिर्फ माता शब्द हटा लीजिए तो भारत मात्र एक जमीन का टुकड़ा मात्र बनकर रह जाएगा। जब हमारे स्वभाव धर्म के सिद्धांतों को के जरिए बदलते हैं तब हमें संस्कृति और सभ्यता की प्राप्ति होती है। हमारे देश में नैतिकता के सिद्धांतों का पालन करना धर्म कहा जाता है। जी हाँ, ये सुंदर अमूल्य विचार थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के। पंडित दीनदयाल जी ने राजनीतिक दर्शन एकात्म मानवतावाद की कल्पना की। ये दर्शन शरीर मन और बुद्धि और प्रत्येक इंसान की आत्मा के एक साथ लाने को प्रयासरत रहे। पंडित दीनदयाल जी का जन्म 25 सितंबर 1916 को उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के नगला चंद्रभान गांव में हुआ था। आपके पिताजी का नाम भगवती प्रसाद उपाध्याय था, जो एक ज्योतिषी थे, और माता राम प्यारी उपाध्याय धार्मिक प्रवृत्ति की एक गृहिणी थी। जब दीनदयाल जी छोटे थे तब इनके माता पिता का निधन हो गया और उनकी शिक्षा उनकी चाची और मामा के अभिभावक में हुई। राजस्थान से मैट्रिक पास करने के बाद पिलानी में बिरला कॉलेज में इंटरमीडिएट किया। साल 1939 में सनातन धर्म कॉलेज कानपुर से बीए पास की। अंग्रेजी में आपने सेंट जॉन कॉलेज आगरा में मास्टर्स के लिए आवेदन किया, लेकिन कुछ कारणों से पढ़ाई पूरी नहीं कर सके। बाद में वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आए, आजीवन संघ के प्रचारक रहे। उनका कहना था कि भारत की जड़ों से जुड़ी राजनीति, अर्थनीति और समाज नीति की देश के भाग्य को बदलने का सामर्थ्य रखती है। कोई भी देश अपनी जड़ों से कटकर विकास नहीं कर सकता। दीनदयाल जी 1937 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े, 1942 में इसके लिए काम करना शुरू किया। उनके कुछ विचारों ने सभी को प्रेरित किया, जैसे यदि समाज का हर व्यक्ति शिक्षित होगा तभी वह समाज के प्रति दायित्वों को पूरा कर सकता है। हमें अपनी राष्ट्रीय पहचान के बारे में सोचना चाहिए, तभी इस आज़ादी के महत्व को बनाए रखा जा सकता है। मानवीय ज्ञान सभी की अपनी संपत्ति है, बिना राष्ट्रीय पहचान के स्वतंत्रता की कल्पना करना व्यर्थ है। इस प्रकार पंडित दीनदयाल जी के बारे में जितना बताया जाए वो भी कम होगा। वो अपनी परंपराओं और जड़ों से जुड़े रहने के बाद भी समाज और राष्ट्रीय के लिए उपयोगी नवीन विचारों का हमेशा स्वागत करते रहे। उन्हें भाजपा के पितृपुरुष भी कहा जाता है। जी, उनका तो ये भी मानना था, मुश्किल नहीं कुछ इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, बस तू जरा सबर तो कर। आंधियां सदा चलती नहीं, मुश्किलें सदा रहती नहीं, मिलेंगी तुझे तेरी मंजिल, तू जरा कोशिश तो कर।

इंसान भी कमाल करता है, जब पसंद करता है तो बुराई नहीं देखता और नफरत करता है तो अच्छा ही नहीं देखता। FM 102.2 MHz पर आप सुन रही हैं अपना मनपसंद कार्यक्रम वनिता लोक, और आज मैं हूं आपके साथ आपकी

0: फूलों की खुशबू, नदियों की कलकल, हरियाली से महके ये दुनिया पल पल। आओ मिलकर घर को पेड़ पौधों से सजाएं, प्रकृति के रंगों को और निखराएं। जी, हरियाली किसे पसंद नहीं होती। शहरी परिवेश में हरियाली का होना मुश्किल सा होता है, लेकिन घर में किचन गार्डनिंग शुरू करके एक हरा भरा और शुद्ध पर्यावरण हम पा सकते हैं। अब बात आती है वो कैसे, तो इसके लिए हम आपके लिए लाए हैं एक वार्ता, किचन गार्डनिंग से मिले घर में हरा भरा पर्यावरण। इसकी जानकारी हमें दे रही हैं दीपा भार्गव।
1: बढ़ते हुए शहरीकरण का सीधा प्रभाव पर्यावरण पर पड़ा है। शहरों में तेजी से बढ़ती हुई आबादी और कॉलोनियों के निर्माण से जहां खुले स्थान पर पेड़ नजर आते थे, वहां अब ऊंची ऊंची बिल्डिंग खड़ी हैं। पहले घरों में आंगन होता था जहां पेड़ लगाए जाते थे, लेकिन अब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनने से घरों में हरा भरा पर्यावरण प्रायः नष्ट होता जा रहा है। लोग प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं और मानसिक तनाव के शिकार होते जा रहे हैं। तो अब ऐसी स्थिति में एक विकल्प नजर आता है और वो है किचन गार्डनिंग। गार्डनिंग करने से मानसिक तनाव कम होता है, हरियाली से मानसिक शांति मिलती है, आपके खाली समय का उपयोग हो जाता है और इधर उधर की बातें सोचने का समय ही नहीं मिलता। बागवानी से आप में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं, पौधे की देखभाल से आपको आत्मिक संतुष्टि मिलती है, आपके स्वास्थ्य पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। एक वैज्ञानिक शोध के अनुसार अगर आप बागवानी करते हैं तो पूरा दिन अपने आप को तरोताज़ा महसूस करते हैं। हम हमेशा चाहते हैं कि हमारा घर सुंदर दिखे और हरा भरा रहे, लेकिन हरियाली कोई आसमान से तो नहीं टपकती। इसके लिए हमें बहुत प्रयास करने पड़ते हैं, प्रकृति के नज़दीक आना पड़ता है। घर में ही किचन गार्डनिंग करके भी अपने घर का पर्यावरण हरा भरा रख सकते हैं। वैसे हाल के दिनों में किचन गार्डनिंग का प्रचलन तेजी से बढ़ा है। ज़्यादातर हाउसवाइफ्स समय का सदुपयोग करने के लिए घर पर गार्डनिंग करने लगी हैं। किचन गार्डन घर के पिछले हिस्से में या फिर घर के बगल के हिस्से में कर सकते हैं, और यदि जगह की कमी है तो गमलों में या फिर कंटेनर में भी पौधे लगाए जा सकते हैं। अगर आप किचन गार्डनिंग करने के बारे में सोच रही हैं तो इसकी प्लानिंग पहले से ही कर लें। मसलन, आप कहाँ गार्डन बनाना चाहती हैं, आपके पास जगह कितनी है, क्या उगाना चाहती हैं, वगैरह वगैरह। साथ में यह भी तय कर लें कि किचन गार्डनिंग को कितना समय दे पाएंगी। अगर गार्डनिंग के मामले में आप नई हैं तो छोटे गार्डन से भी शुरुआत कर सकती हैं। छोटा गार्डन हमेशा खूबसूरत होता है। आराम से लगने वाले व सीजनल पौधे का चयन करें जो घर के वातावरण को हरा भरा रख सकेगा। आइए हम आपको किचन गार्डन से संबंधित कुछ ऐसे टिप्स देते हैं जो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होंगे, साथ ही गार्डन को तैयार करने में और सही सब्जी व फलों का चुनाव करने में मददगार साबित होंगे। तो सबसे पहले ये बताना जरूरी समझती हूँ कि अपने घर में ऐसी जगह का चुनाव करें जहाँ पर्याप्त

मात्रा में रोशनी पहुंचती हो, क्योंकि सूरज की रोशनी से ही पौधे का विकास संभव होता है। रोज 5-6 घंटे सूरज की किरणें पौधों पर पड़ना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, पानी की मात्रा सुनिश्चित कर लें कि आपने गार्डनिंग के लिए जिस मिट्टी का चयन किया है उसमें पानी की पर्याप्त मात्रा मिलने के साथ साथ पानी के निकास की व्यवस्था भी है। बहुत ज़्यादा या बहुत कम पानी पौधे के लिए नुकसानदायक होता है। तीसरी सलाह ये है कि आप जिस मिट्टी पर पौधे लगाने की सोच रहे हैं उसमें खाद या जो बहुत ज़रूरी रसायन वगैरह हैं वह डालकर उसको अच्छे से तैयार कर लें, और मिट्टी में कंपोस्ट खाद भी ज़रूर मिलाएं। इसके बाद ऐसे फलों और सब्जियों के पौधों का चुनाव करें जो आसानी से लगने वाले हों और बढ़ते भी जल्दी हों। फिर अपने गार्डन का एक अच्छा सा डिज़ाइन या लेआउट तैयार करें। आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा पौधा लगाना है और कहाँ लगाना है और इसकी कौन सी जगह निश्चित है। इससे आपका गार्डन व्यवस्थित भी दिखेगा, साथ ही पौधे का रख रखाव आसान हो जाएगा। इसके अलावा आपके पौधे को शुरुआती दिनों में बहुत अधिक पालन पोषण की ज़रूरत पड़ती है। हर पौधे की ज़रूरत अलग अलग होती है, आपको पौधे के अनुसार पोषक तत्व देने होंगे। किसी पौधे को धूप अधिक चाहिए तो किसी को छांव। इसके अलावा पौधे को नियमित पानी देना भी बहुत ज़रूरी है। आप एक दिन पानी के बिना गुजारने की सोचिए क्या होगा। यही बात पौधे पर भी लागू होती है। खासकर पौधे जब छोटे होते हैं तो उन्हें पानी की नियमित ज़रूरत होती है, क्योंकि उनकी जड़ें इतनी गहरी नहीं होती कि ज़मीन से वो पानी खींच सकें। तो मैं तो यही कहूँगी सभी गृहिणियों को कि घरों में छोटी छोटी सब्जियों के फूलों की बागवानी का शौक जरूर रखना चाहिए। इससे लाभ ही लाभ होते हैं। घर में थोड़ी सी भी ज़मीन खाली पड़ी हो तो उसका उपयोग हो जाता है। तुलसी के पत्ते हों या मीठी नीम या मोगरे के फूल हर समय आपके घर को महकाते रहेंगे। ये आसानी से लग भी जाते हैं और छोटी छोटी हर्ब्स के लिए आपको बाहर जाना भी नहीं पड़ता। किचन गार्डन होने पर आपको यह महसूस रहता है कि क्या आप खा रहे हैं, वरना आजकल बाजार में तो पेस्टिसाइड्स पड़ी हुई सब्जियां सेहत को बनाने की जगह बिगाड़ ही रही हैं। अपने बगीचे में ऑर्गेनिक खेती भी आप कर सकती हैं। किचन गार्डनिंग में उगी सब्जियों को बनाने से घर का बजट भी मेंटेन रहता है और ये सब्जियाँ अच्छी और सस्ती होती हैं, और आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से उन्हें तोड़कर बना सकते हैं। और फिर उसके बाद जो अपने बगीचे की सब्जियों की फीलिंग जो आती है उसका तो कहना ही क्या है, उसका सुख तो आप गार्डनिंग के बाद ही महसूस कर सकेंगी। कड़ी पत्ता, पुदीना, धनिया, टमाटर, हरी मिर्च, ये सारी चीज़ें पौधे से सीधे आपकी किचन में जब जाएंगी तो खाना क्या लजीज बनेगा, ये आप सोच के देखिए। इसके अलावा दूसरी सब्जियां, लौकी, भिंडी, बैंगन, तोरई, पालक, मेथी आदि, ये सब भी आसानी से किचन गार्डन में लग जाती हैं। इसके लिए बहुत सारी जगह की भी ज़रूरत नहीं पड़ती और ना ही बहुत मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। गमलों में भी इन्हें आसानी से रोपा जा सकता है। गिलोय, एलोवेरा, ये पौधे ऐसे हैं जो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभप्रद हैं। अगर घर के आंगन में या पीछे या कहीं भी थोड़ी भी जमीन खाली है तो आप केला, आम, पपीता, शहतूत, नींबू, अमरूद ऐसे पेड़ जरूर लगाएं। इससे ये होगा कि लंबे समय तक ये घर को छाया, हवा देंगे और हरियाली भी देते रहेंगे, और इसके जो रसीले फल सब्जियां खुद भी खाइए और पड़ोसियों को भी खिलाइए। रिश्तेदारों को खिलाकर अपने आपस के संबंधों को मजबूत करिए। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि किचन गार्डनिंग हर तरह से फायदेमंद ही है। अगर आपके घर में थोड़ी सी भी जगह है तो गार्डनिंग अवश्य करें, क्योंकि इससे आपके घर में हरियाली आती है, आपको बेहतर साग सब्जी मिलती है, फल खाने को मिलते हैं, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, मानसिक शांति मिलती है, आर्थिक लाभ होता है और आपके सामाजिक संबंधों में भी सुधार आता है और अंत में पर्यावरण में भी सुधार आता है। आज घर का पर्यावरण सुधरे

0: धीरे धीरे कल देश का पर्यावरण सुधरेगा।
1: जी हाँ, अब कोई मुश्किल नहीं है घर में या कम जगह में हरा भरा माहौल पाना। इसलिए दीपा भार्गव जी के बताई किचन गार्डनिंग टिप्स आप जरूर आजमाएं और सब्जियों के फलों की घर में ही मजे लें। उसे दूर से ही ताकता रहा, उसे दूर से ही ताकता रहा, ना जाने क्यों निगाहें थमी रहीं, बस उसके चेहरे पर ही जमी रहीं, कभी चांद समझकर कभी चांदनी, हम उसे देखते ही रहे।

वो समय निष्ठुर था, पर जाना भी आपका निश्चित था। विधाता के समक्ष समय का हारना सुनिश्चित था। श्रद्धा सुमन से वंदना करें हम आपके चरणों की। आप जहाँ भी रहें, खुश रहें, यही कामना है हमारी। जी, घर में बड़े बुजुर्गों का होना और उनके आशीर्वाद हमारे साथ होना बहुत ज़रूरी है। यदि उनका आशीर्वाद हमारे साथ होगा तो कोई भी मुश्किल हमारे ऊपर नहीं आ सकती है। लेकिन कहते हैं ना, जो इस संसार में आया है उसे कभी ना कभी इस संसार को छोड़कर जाना ही होता है। उनके जीवित होने पर जैसे हम उनके आशीर्वाद की ज़रूरत होती है, वैसे ही उनके चले जाने के बाद भी यूं ही उनका आशीर्वाद हम पर बना रहे, इसके लिए हिंदू धर्म में पितृपक्ष यानी श्राद्ध का विशेष महत्व माना गया है। श्राद्ध पक्ष के 15 दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए खास माने जाते हैं। इसलिए हर साल भाद्रपद पूर्णिमा तिथि से लेकर अमावस्या तिथि तक पितृ पक्ष पड़ते हैं। इस दौरान पितरों का तर्पण एवं पिंडदान किया जाता है, क्योंकि ऐसा करने से उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में पितरों को देवतुल्य माना गया है। पितरों को प्रसन्न रखना बहुत जरूरी है, जिससे हमारे घर परिवार में और जीवन में खुशहाली बनी रहे। इन दिनों ब्राह्मणों को भोजन कराएं। नित्य प्रति शाम को अपने पितरों के नाम का एक दीपक अपने घर के बाहर दक्षिण दिशा में जलाएं और ईश्वर से उनकी सदगति के लिए प्रार्थना करें। इन दिनों पितरों के नाम से जरूरतमंदों को अनाज का दान जरूर करना चाहिए, ये फलदायी होता है। कहते हैं, माँ बाप से बढ़कर जग में कोई भगवान नहीं। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई भगवान नहीं। चुका पाए जो उनका ऋण, इतने हम धनवान नहीं।

वैसे तो जाने का समय हो गया है, लेकिन चलते चलते आपको एक टिप्स देना चाहूंगी। आजकल टमाटर बहुत महंगे हो गए हैं। सब्जी में टमाटर का कम प्रयोग करने के लिए सब्जी बनाते वक्त उसमें सिर्फ एक टमाटर डालें और जब गैस ऑफ कर लें तो सब्जी में स्वाद अनुसार खटाई और चुटकी भर कश्मीरी लाल मिर्च जरूर डाल दें। तो इससे देखें बिल्कुल टमाटर जैसा कलर सब्जी में आने लगेगा। तो अब घड़ी ने इशारा कर दिया है, जाने का समय हो गया है। चलते चलते यही कहूंगी, मार्गदर्शन सही हो तो एक नन्हा सा दीपक भी किसी सूरज से कम नहीं। तो मीनू अग्रवाल को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

अभी बहनें सुन रही थी कार्यक्रम वनिता लोक। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार को आपने सुना फिल्म रॉकी में। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म थोड़ी सी बेवफाई से।

विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सबके योगदान और भागीदारी से ही विकसित भारत का संकल्प साकार हो सकता है। श्री मोदी ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वडनगर ने उन्हें जीवन को दिशा देने वाले संस्कार दिए, जबकि काशी

0: सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
1: श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में देश में शहरों और गांवों के बीच का अंतर काफी कम हुआ है। गांवों में बुनियादी ढांचे में सुधार हुआ है और देश की महिलाओं में आत्मनिर्भरता भी बढ़ी है। प्रधानमंत्री ने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उनके बताए 7 सूत्रों का उल्लेख किया।
0: पंडित दीनदयाल जी ने हमें समाज जीवन में अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए 7 सूत्र दिए हैं और आज के पुण्य दिन उन 7 सूत्रों का स्मरण हर भाजपा कार्यकर्ता को नई ऊर्जा से भर देता है। ये 7 सूत्र है सेवा भाव, संतुलन, संयम, समन्वय, सकारात्मकता, संवेदना और संवाद। आप विचार करेंगे तो पाएंगे कि यही 7 सूत्रों तो आपकी इस सेवा यात्रा की आत्मा है।
1: सरकार ने कहा है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना 2.0 के अंतर्गत अक्टूबर से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 70,000 ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसमें गरीब ग्रामीण युवाओं को रोजगार से जुड़े कौशल का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण की अवधि 3 से 12 महीने तक होती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर एक रिपोर्ट।
2: पंडित दीनदयाल उपाध्याय महान विचारक, दार्शनिक और भारतीय जनसंघ के सह संस्थापक थे। उनका जन्म 25 सितंबर 1916 को मथुरा में हुआ था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्नातक की पढ़ाई के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आए और आरएसएस के प्रचारक बन गए। प्रचारक बनने से पहले उन्होंने वर्ष 1939 और 1942 में संघ में प्रशिक्षण लिया था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ मिलकर वर्ष 1951 में भारतीय जनसंघ की नींव रखी। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने कहा है कि तेजी से परस्पर जुड़ती दुनिया में उभरती चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान अलग थलग रहकर नहीं किया जा सकता। श्री राधा कृष्णन ने आज उपराष्ट्रपति भवन में अंतर्राष्ट्रीय सामरिक सहभागिता कार्यक्रम के 4th संस्करण के प्रतिभागियों से संवाद में ये बात कही। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत 7.8% की विकास दर हासिल कर सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। आज ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के बाद श्री शाह ने ये बात कही। श्री शाह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा कि कानून व्यवस्था, अनुकूल औद्योगिक नीतियों और सक्रिय शासन की मदद से आज उत्तर प्रदेश में आकर्षक निवेश वातावरण बना है।
3: उत्तर प्रदेश के अंदर जो परिवर्तन आया है, इसी के कारण आज उत्तर प्रदेश लक्ष्य तय कर सकता है कि हम $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी उत्तर प्रदेश को बनाएंगे। इस प्रदर्शनी में कई व्यापारिक समझौते भी होने वाले हैं। दुनिया भर से आए हुए खरीदार यहाँ मौजूद है और इससे निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट, उत्पादन और बिक्री तीनों क्षेत्र में बहुत बड़ी बढ़ोतरी होने वाली।
1: इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य देश में विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोला और ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वेरा के साथ पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। तीनों मंत्रियों ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की प्रतिबद्धता दोहराई। तीनों नेताओं ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अवसर पर IBSA संवाद मंच की बैठक में भाग लिया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय कानून और बहुपक्षीय व्यवस्था को मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।

0: विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान एस्टोनिया, घाना, मालदीव, बारबाडोस और इराक के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि आयुष्मान भारत योजना ने देश की स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा बदलाव किया है। नई दिल्ली में आज आरोग्य मंथन 2026 के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के कारण अब 90% कैंसर मरीजों का इलाज 30 दिन के अंदर शुरू हो रहा है। श्री नड्डा ने नेशनल हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स रजिस्ट्री मोबाइल ऐप और सिक्योर डेटा एनवायरनमेंट एप्लीकेशन भी शुरू किए। रेलवे ने गुजरात के भुज और बिहार के बरौनी के बीच नई अमृत भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी शुरू करने की मंजूरी दे दी है। ये रेलगाड़ी 2532 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा बिहार के महत्वपूर्ण स्थानों को जोड़ेगी।
1: ये रेलगाड़ी समाखियाली, अहमदाबाद, रतलाम, कोटा, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, भरतपुर, मथुरा, हाथरस, बरेली, इज्जतनगर और पीलीभीत सहित कई महत्वपूर्ण स्टेशन पर रुकेगी। रेल मंत्रालय ने बताया कि भुज से बरौनी के लिए सेवा सोमवार, बुधवार और शनिवार को, जबकि बरौनी से भुज तक सेवा मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को उपलब्ध होगी। मंत्रालय ने कहा कि ये नई सेवा देश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों के बीच रेल यात्रा का अतिरिक्त विकल्प प्रदान करेगी। इससे गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच कनेक्टिविटी में सुधार होगा। रेलवे ने वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी आगरा कैंट एक्सप्रेस सेवा को मथुरा स्टेशन तक विस्तारित करने की भी मंजूरी दे दी है। शिवांग की रिपोर्ट के साथ मैं सरफिरोजी।
0: केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के निर्वाचन आयोग पर लगाए आरोपों को गलत बताया है। अमृतसर में श्री मेघवाल ने कहा कि अगर निर्वाचन आयोग सही काम नहीं कर रहा है तो केरलम में कांग्रेस चुनाव कैसे जीत गई। श्री मेघवाल नशा मुक्त पंजाब यात्रा में शामिल होने के लिए अमृतसर में हैं। मेक इन इंडिया पहल के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्ष 2014 में आज ही के दिन इस पहल की शुरुआत भारत को विनिर्माण, डिजाइन और नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से की गई थी।
2: इस पहल का विस्तार मेक इन इंडिया 2.0 के तहत किया गया। अब ये पहल 27 क्षेत्रों पर केंद्रित है जिनमें 15 विनिर्माण और 12 सेवा क्षेत्र शामिल हैं। इसके अंतर्गत भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन 2025-26 में 13 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। इसी अवधि में मोबाइल फोन का उत्पादन लगभग 33 गुना बढ़कर 18,000 करोड़ रुपए से 6,27,000 करोड़ रुपए हो गया। भारतीय रेलवे ने भी 2014 से 2024 के बीच करीब 55,000 कोचों का निर्माण किया। देश में स्वदेशी रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए हो गया है। प्रिया मंडल के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया के 12 वर्ष पूरे होने पर कहा कि इस पहल से देश के कई क्षेत्रों में बड़ा बदलाव आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए सरकार की इन पहलों से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। हमारी विशेष श्रृंखला में आज हम जानकारी दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कैसे लोगों के जीवन में परिवर्तन ला रही है।
3: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मई 2026 तक देश भर में गरीब परिवारों की महिलाओं को 10 करोड़ 50 लाख से अधिक निशुल्क एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं। वर्ष 2021 में उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण उज्ज्वला 2.0 के शुभारंभ के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना के महत्व पर जोर देते हुए कहा था,
4: हमारे जैसी अनेक पीढ़ियां तो माँ को धुएं में आंखें मलते, भीषण गर्मी में आग में तपते, ऐसे ही दृश्य को देखते हुए ही बड़ी हुई है। कल्पना कीजिए, उज्ज्वला नहीं होती तो हमारी इन गरीब बहनों की स्थिति क्या होती। उज्ज्वला योजना का एक और असर ये भी हुआ कि पूरे देश में एलपीजी गैस से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का कई गुना विस्तार हुआ है।
3: वर्ष 2016 में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराना और महिलाओं को लकड़ी, उपले तथा अन्य

0: प्रदूषणकारी ईंधनों पर निर्भरता से मुक्त कराना है। आकाशवाणी से बात करते हुए उज्ज्वला योजना की ऐसी एक महिला लाभार्थी ने बताया,
1: मेरा नाम संगीता गुप्ता है, मैं नागपुर जिला की रहवासी हूँ। उज्ज्वला योजना का मुझे गैस सिकड़ी का लाभ मिला है, जिससे मुझे अब खाना बनाने में समय की बचत होने लगी है। पहले मैं चूल्हे पे खाना बनाती थी, जिससे पर्यावरण तथा मेरे आंखों को धुएं से तकलीफ होती थी। अब इस योजना के माध्यम से मुझे राहत मिली है। मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करती हूँ।
0: योजना के तहत उज्ज्वला 2.0 के लाभार्थियों को पहला LPG रिफिल और गैस चूल्हा निशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। योजना में पंजीकरण की प्रक्रिया भी सरल रखी गई है। प्रवासी लाभार्थियों को राशन कार्ड या पते का प्रमाण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। वे परिवार और पते से संबंधित स्वघोषणा के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। योजना से घरेलू वायु प्रदूषण में कमी आई है और महिलाओं को ईंधन के लिए लकड़ी एकत्रित करने में लगने वाले समय की भी बचत हुई है। धनंजय वानखेड़े, आकाशवाणी समाचार, नागपुर।
2: ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कई हिस्सों में बने दबाव के क्षेत्र के कारण मूसलाधार बारिश हो रही है। अगले 12 घंटे में इसके कमजोर होकर कम दबाव के क्षेत्र में बदलने की संभावना है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ में भी मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। एशियाई खेलों में भारत के कमलजीत और सुरुचि सिंह ने जापान के नागोया में 10 मीटर एयर पिस्टल की मिक्स टीम स्पर्धा में आज स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने उन्हें बधाई दी है। वहीं पुरुषों की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन टीम स्पर्धा में रुद्रांश पाटिल, ऐश्वर्य प्रताप तोमर और नीरज कुमार की भारतीय टीम ने रजत पदक जीता। भारत की पुरुष कबड्डी टीम ने थाईलैंड को हराकर फाइनल में जगह बना ली है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विकसित भारत सभी के योगदान से ही साकार हो सकता है। उन्होंने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत सेवा यात्रियों से बातचीत की। सरकार दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के अंतर्गत अगले महीने से 70,000 ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देगी। संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से इतर IBSA संवाद मंच की बैठक में दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील के विदेश मंत्रियों ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की, आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की प्रतिबद्धता दोहराई। ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कई हिस्सों में बने दबाव के क्षेत्र के कारण मूसलाधार वर्षा, अगले 12 घंटे में इसके कमजोर होकर कम दबाव के क्षेत्र में बदलने की संभावना। और जापान में एशियाई खेलों में भारतीय जोड़ी कमलजीत और सुरुचि सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह समाप्त हुआ। नमस्ते।

हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए NCERT एवं CIET द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। बिल्कुल खो गए हम तो अपने उसमें।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूं विमलेश।
3: और मैं हूं अजीत। नमस्कार श्रोताओ, धमधा गांव सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: जैसे पेड़ धैर्य से बढ़ते हैं, वैसे ही जीवन भी समय के साथ खिलता है। प्रकृति को बचाइए, क्योंकि यही जीवन को बचाने का सबसे सरल मार्ग है।
3: इस विचार के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है बेंगलुरु से जगदम्बिका और हेम सावेनी जी का।
2: माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी, छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी लिखते हैं।
3: अजीत जी और विमलेश जी नमस्कार।
2: नमस्कार,
3: नमस्कार। आपने आगे लिखा है, हमें उमंग कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है, हम लोग पूरा परिवार मिलकर इसे एक साथ सुनते हैं
2: जी।
3: बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी आप हमें देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आपका भी बहुत

0: बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन और डिंपल देवांगन।
1: और बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय जी।
0: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा।
1: और हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडखे, नंदा बोडखे, हनुमान बोडखे और उत्तम जामदाड़े जी।
0: धन्यवाद आपके संदेशों और प्रतिक्रियाओं के लिए।
1: आइए आज एक बार फिर से जानते हैं एक और आविष्कार की रोचक कहानी।
0: जी श्रोता मित्रों, आपको कुछ हिंट्स देती हूँ। अंदाजा लगाना है आज हम किस आविष्कार की बात करने जा रहे हैं, तो हो जाइए तैयार।
1: जी, उसके बिना आधुनिक चिकित्सा की कल्पना ही नहीं की जा सकती। सोचिए सोचिए। चलिए एक आसपास का हिंट आपको दे देते हैं। वो प्रायः डॉक्टरों की गर्दन पर लटका रहता है।
0: वो है स्टेथोस्कोप। तो चलिए अब आगे चलते हैं।
1: क्या श्रोताओं, आपने कभी सोचा है कि इसका आविष्कार क्यों हुआ होगा? इसे पता लगाने के लिए हमें चलना होगा आज से लगभग 200 साल पीछे, सन 1816 के फ्रांस में।
0: जी
1: श्रोताओं, तब तक चिकित्सा विज्ञान में यह समझा जा चुका था कि मरीज की तबीयत, रक्तचाप या स्वास्थ्य की स्थिति का अंदाजा लगाने के लिए नब्ज देखना या हृदय की धड़कन को सुनना जरूरी है।
0: श्रोताओं, उन दिनों डॉक्टर आमतौर पर हर मरीज के सीने पर कान लगाकर हृदय की धड़कन सुनते थे, जो व्यक्तिगत और सामाजिक मर्यादा की दृष्टि से बहुत अटपटा था। फ्रांस के चिकित्सक थे रेने लेनेक। वे अक्सर सोचते थे, क्या हृदय की धड़कन सुनने का कोई और तरीका नहीं हो सकता?
1: श्रोताओं, वे अक्सर विचारों में डूबे रहकर इस समस्या का हल निकालना चाहते थे। एक दिन की बात है, उन्हें अपने बचपन के दिनों का एक खेल याद आ गया।
0: जी,
1: जब वे लकड़ी की कोई लंबी नली या ट्यूब लेकर उसके एक सिरे पर कुछ बोलते थे या हल्की खरोंच भी करते थे, तो दूसरे सिरे पर वो आवाज स्पष्ट सुनाई देती थी।
0: फिर क्या था, उन्होंने एक अद्भुत प्रयोग किया। उन्होंने एक मोटे कागज की एक शीट को कसकर लपेटा और एक लंबी नली जैसी बना लिया। फिर उस नली का एक सिरा मरीज के सीने पर रखा और दूसरा सिरा अपने कान के पास।
1: और फिर ये हुआ कि वे उछल पड़े जब उन्हें रोगी के हृदय की धड़कन पहले से अधिक स्पष्ट सुनाई देने लगी। डॉक्टर लेनेक ने इस उपकरण को नाम दिया स्टेथोस्कोप।
0: ये नाम ग्रीक शब्दों से बना है, स्टेथोस यानी छाती और स्कोपेन यानी देखना या निरीक्षण करना। बाद में लेनेक ने इसे और बेहतर बनाया। उन्होंने लकड़ी से बने नली नुमा उपकरण का इस्तेमाल किया।
1: बाद में इस पर बहुत बदलाव हुए। शुरुआती स्टेथोस्कोप आज के उपकरण से बिल्कुल अलग दिखता था। वो एक लकड़ी की कठोर नली जैसा था।
0: जी,
1: लेकिन इस छोटे से उपकरण ने चिकित्सा विज्ञान में एक बहुत बड़ा बदलाव कर दिया।
0: अब परिस्थिति बदल गई। डॉक्टर केवल मरीज की नाड़ी या बाहरी लक्षणों पर निर्भर नहीं थे, वे शरीर के भीतर पैदा हो रही आवाजों को सुनकर बीमारी के संकेत खोज सकते थे।
1: तो श्रोता मित्रों, समय के साथ साथ स्टेथोस्कोप भी बदलता गया।
0: जी,
1: लकड़ी की एक नली से आगे बढ़कर इसमें दो कानों के लिए नलियां, लचीली ट्यूब और छाती पर रखने के लिए विशेष चेस्ट पीस विकसित हुए। यानी स्टेथोस्कोप ने डॉक्टरों को एक तरह से शरीर की आवाज की भाषा सिखा दी।
0: हृदय की धड़कन, फेफड़ों से आने वाली सांस की आवाज, कभी कभी असामान्य ध्वनियां, इन सबको सुनकर डॉक्टर बीमारी के बारे में महत्वपूर्ण संकेत प्राप्त कर सकते हैं।
1: तो श्रोताओ, हमें विश्वास है कि अगली बार जब भी आप किसी डॉक्टर के गले में स्टेथोस्कोप देखेंगे, तो सिर्फ एक चिकित्सा उपकरण के रूप में मत देखिएगा। लगभग 200 वर्ष पुरानी एक कहानी दिखाई देगी।
0: सच है मेरे श्रोता मित्रों, कभी कभी किसी समस्या का समाधान किसी महंगी मशीन या बड़ी बड़ी बातों और सिद्धांतों में नहीं, बल्कि हमारे आसपास की साधारण चीजों में छिपा होता है। बस जरूरत है अवलोकन और निरीक्षण, प्रश्न पूछने की आदत और प्रयोग करने का साहस।
1: आशा है श्रोताओं, आपको हमारी आज की ये जानकारी अवश्य पसंद आई होगी। लिखिएगा जरूर। और अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, स्टेथोस्कोप के आविष्कारक कौन थे और ये शब्द किस भाषा से आया है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: स्टेथोस्कोप के आविष्कारक कौन थे और ये शब्द किस भाषा से आया है? आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी ताज़ा जानकारी के लिए CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। और यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो सर्च इंजन में जाइए और टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। और यदि इन पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम सुनना चाहते हैं, तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
1: तो श्रोताओ, अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की कड़ी में हमारा सबसे पहला कार्यक्रम है पड़ोसी।
0: ये कार्यक्रम कक्षा

दो की उर्दू की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि एक अच्छे पड़ोसी के क्या क्या गुण हो सकते हैं। संदेश दिया गया है कि हमें समाज में परस्पर सद्भाव और मेल प्रेम से रहना चाहिए और एक दूसरे की मदद यथासंभव करनी चाहिए।

0: कई रोज से चिड़ा और चिड़िया बहुत परेशान थे। उन्हें अपना घोंसला बनाने के लिए कोई महफूज जगह नहीं मिल रही थी। ढूंढते ढूंढते वो एक घने जंगल में पहुंच गए। उसी जंगल में एक बहुत पुराना दरख्त था। उन्होंने उसकी शाख पर अपना घोंसला बना लिया। चिड़िया अपने घोंसले में बहुत खुश थी। उसे अगर दुख था तो बस ये कि वहां चिड़ियों के और घोंसले नहीं थे और न ही जान पहचान वाले थे। उसने अपने दिल की बात चिड़े से कह दी। बोली,
1: देखो, कल ही कव्वे ने हमारे पड़ोस की शाख पर घोंसला बनाया है। कव्वा अकेला रहता है।
2: मुझे बड़ा डर लगता है।
1: हमें यहाँ अपनी जान पहचान बढ़ानी चाहिए। कुछ दूसरी चिड़ियों के घोंसले होते तो किसी बात का खटका नहीं रहता।
0: चिड़ी ने कहा,
3: घबराने की बात नहीं, वक्त पर जो काम आए वही अपना होता है।
0: धीरे धीरे चिड़िया, चिड़े और कव्वे में खूब दोस्ती हो गई और वो मिलजुल कर रहने लगे। कुछ दिनों के बाद चिड़िया ने दो अंडे दिए और उन अंडों से दो नन्हे मुन्ने खूबसूरत बच्चे निकले।

कौवा चिड़िया के बच्चों से बहुत प्यार करता था। जब चिड़िया दाना चुगने बाहर जाती, कौवा उसके बच्चों की निगरानी करता। कौवा बाहर जाता तो चिड़िया और चिड़ा उसके घोंसले की देखभाल करते। इस तरह वो दोनों पड़ोसी एक दूसरे की जरूरत में काम आने लगे। एक दिन की बात है, घोंसले में बच्चे अकेले थे। अचानक बच्चों की चीं चीं की आवाज सुनकर कौवे ने अपने घोंसले से सिर बाहर निकाला। उसने देखा कि एक बिल्ली चिड़िया के बच्चों की ताक में बैठी है। कौवा सहम गया। वो बच्चों को बचाने की तरकीब सोचने लगा। वो दरख्त की सबसे ऊंची शाख पर बैठकर जोर जोर से काए काए करने लगा। उसकी आवाज सुनकर सारे पड़ोसी जमा हो गए। सब के सब जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगे।

चीख पुकार की आवाजें सुनकर बिल्ली बहुत घबराई और डर कर भाग गई। थोड़ी देर के बाद जब चिड़ा और चिड़िया घर लौटे तो उनके बच्चों ने सारा किस्सा सुनाया। वो बहुत खुश हुए और अपने पड़ोसी कौवे का दिल से शुक्रिया अदा किया।

हाँ तो बच्चों, अभी आपने सुना कि आपस में मिलजुल कर रहने से किस प्रकार इन पक्षियों ने एक दूसरे की मदद ही नहीं की, लेकिन संकट से भी एक दूसरे को बचाया। तो जरा बताओ, क्या तुम अपने दोस्तों के साथ मिलजुल कर प्यार से रहते हो? अभी आपने सुना कार्यक्रम पड़ोसी।

0: एक संत नदी में नहा रहे थे।
1: हर हर गंगे, हर गंगे, हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हर हर गंगे, हर गंगे, हरि ओम हरि ओम हरि ओम।
0: उन्होंने एक बिच्छू को पानी में बहते हुए देखा।
2: अरे अरे बिच्छू,
0: उन्हें बिच्छू पर दया आ गई।
2: डूब जाएगा।
0: संत ने उसे हथेली पर लेकर पानी से बाहर निकालना चाहा। हथेली पर आते ही बिच्छू ने डंक मारा। संत का हाथ झन्ना गया। बिच्छू फिर पानी में गिर गया। उन्होंने बिच्छू को पानी से बाहर निकालने की बार बार कोशिश की।
2: अरे फिर चला गया।
0: बिच्छू हर बार डंक मारता और उनके हाथ से छूट जाता। संत लगातार कोशिश करते रहे। अंत में उन्होंने बिच्छू को पानी से बाहर निकाल ही लिया।

0: किनारे पर खड़ा एक लड़का ये सब देख रहा था। उसने संत से पूछा,
1: बाबा आपने बिच्छू को क्यों निकाला? ये तो आपको बार बार डंक मार रहा था। आपको कितनी तकलीफ हुई होगी।
2: बच्चे तुम ठीक कहते हो, तकलीफ तो मुझे अभी भी है, लेकिन मुझे खुशी भी है। मेरी थोड़ी सी तकलीफ से एक प्राणी की जान बच गई, एक प्राणी की जान बच गई, एक प्राणी की जान बच गई। बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना, संत का स्वभाव है भलाई करना, संत का स्वभाव है भलाई करना, संत का स्वभाव है भलाई करना। बिच्छू ने तो अपना स्वभाव नहीं छोड़ा, फिर मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ता, मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ता, मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ता।

0: बालक सोचने लगा।
1: अरे बाबा ने एक छोटे से जीव के लिए कितनी तकलीफ उठाई,

लोगों का तो काम ही है भलाई करना। किसी ने कहा भी है, भला वही जो बुराई के बदले भी भलाई करे।

0: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब उमंग की तकनीकी टीम के साथ मुझे यानी आपके मित्र अजीत
1: और विमलेश को अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय दिन के 3 बजने को हैं। हमारी प्रथम सभा के प्रसारण अब संपन्न होते हैं। अपनी दूसरी सभा में संध्या 5:10 पर हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए।

FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। संध्या के 5:09 और 26 सेकंड हुए हैं। हमारी द्वितीय सभा के प्रसारण अब आरंभ होते हैं। सभा के आरंभ में कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। इसके अंतर्गत सुनिए उत्तराखंड में पर्यावरण संरक्षण और कोसी नदी के पुनर्जीवन के लिए कार्य करने वाली तथा पद्मश्री से सम्मानित बसंती देवी के साथ बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रहे हैं राकेश पंत।
2: नमस्कार, प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं बसंती देवी, जो महान पर्यावरणविद हैं और प्रकृति की संरक्षण के लिए जिन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया है। बसंती देवी उत्तराखंड की धरती पर पर्यावरण संरक्षण और महिला सशक्तिकरण की मिसाल है। उन्होंने स्थानीय ग्रामीण महिलाओं को एकजुट कर कोसी नदी को बचाने के साथ ही जंगलों को बचाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने ग्रामीण महिलाओं को संगठित कर 5 के जंगलों को बचाने और जल संरक्षण की मुहिम चलाई। उनके इसी काम को देखते हुए सन 2016 में उन्हें नारी शक्ति सम्मान और 2022 में पद्मश्री से नवाजा गया। तो बसंती देवी जी से बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका बसंती जी। तो आपसे जानना चाहूंगा, कोसी नदी और उसके जलागम क्षेत्र को बचाने की आपकी मुहिम की शुरुआत कैसे हुई, तब क्या परिस्थितियां थी, आपने किस तरह इस मुहिम को आगे बढ़ाया?
3: पहले तो उस नदी में बहुत पानी था, खेतों में भी इतना अच्छा जमीन में पानी और सब खेती पाती होती थी। धीरे धीरे जब जंगल पूरा काट दिया महिलाओं ने, जंगल काट के तो पानी खत्म हो गया, जंगल खत्म हो गए और इसलिए बहुत परेशानी होगी। तब लोग कहने लग गए अब हम पानी भी कहाँ से पिए, खेती में भी हमारे खेतों में भी पानी नहीं आ रहा है। तब मैं गांव-गांव में जाकर मैंने महिला संगठन बनाया। मैंने कहा जब पानी नहीं आएगा तो तुम्हारे यहाँ तो इतनी अच्छी खेती होती थी और इतना ज्यादा पानी आता था और नदी में और सब कुछ था, जब पानी नहीं आएगा तो कहाँ से पियोगे पानी, कहाँ से खेती होगी और कैसे हम जिंदा रहेंगे, तो इसके लिए तो तुम सब सोचो। मैंने कहा जंगल जब पूरे पेड़ काट दे रहे हो और फिर वो सड़ जाते हैं तो उनको फिर तुम जला देते हो, तो तुमको ये सोचना चाहिए कि जब जंगल बचेगा, पानी आएगा, तब खेती भी अच्छी होगी, अपने लिए भी, हमारे पानी पीने के लिए और रुपाई करने के लिए, खेती पाती सब ठीक करने के लिए भी तब अच्छा होगा, तब हम जिंदा रहेंगे, नहीं तो हम जिंदा ही कैसे रह सकते हैं। मैं फिर 6-7 दिन के बाद जंगल के रास्ते गई तो महिलाओं से कहा बैठो आप, मैं तुमको सब बात सुनाती हूँ। जब जब पानी नहीं रहेगा तो मनुष्य जिंदा कैसे रहेंगे, खेती कैसे होगी, और ये तो तुमको सोचना ही चाहिए। मैं आज तुम्हारा संगठन बनाती हूँ, तुम अभी जंगल से अब घर को चलोगे, फिर दूसरे गांव में, तीसरे गांव में, चौथे गांव में, सब जगह जाकर मैं सबका संगठन बना के सबको एक करूंगी। मान गए वो, फिर आ गए, फिर दूसरे गांव में, तीसरे गांव में, ऐसे जाकर पूरे कोसी नदी के वहां सोमेश्वर घाटी में उधर उधर सब जगह वो काम किया तो सब मान गए, जंगल नहीं काटा तो जंगल बच गया, फिर पानी आने लग गया।

0: धीरे धीरे।
1: जैसे आपने जो काम किया वो खासकर कोसी नदी बागेश्वर के आसपास,
0: हाँ
1: आप आश्रम में बहुत समय तक रहे, आपके मन में कैसे आया कि प्रकृति से जुड़े हैं, नदी को बचाएं, कैसे आपने सोचा ये सारी चीजें?
0: क्यों, मैं तो जब इलाके में रहती थी, जब वहां प्रकृति ऐसी हो गई, जब पानी खत्म हो गया, खेती नहीं होने वाली हुई, सब इस प्रकार का हो गया और लड़ाई मार झगड़ा और में लग गया, तब मुझे बहुत दुख हो गया। मैंने कहा जब सब घर घर में ऐसे हो जाएंगे, ये हो जाएगा, तो हमारा उत्तराखंड की देव भूमि महान कैसे बनेगी। तो यही इसी को लेकर मैंने गांव गांव में उनसे कहा कि हमको अपना जीवन, अपना देश, अपना गांव, अपना परिवार को महान बनाना है, तभी हम आगे बढ़ेंगे, तभी हमारी देव भूमि महान बनेगी। अभी भी मैं कहती हूँ कि हमारे उत्तराखंड के देव भूमि को हमको महान बनाना है। हम अच्छा व्यवहार करेंगे, अच्छे अच्छी शिक्षा देंगे और अच्छा वो होगा तो आगे की पीढ़ी भी अच्छी होगी। तो यही मेरा काम होता है।
1: बसंती दी, जब आप अभियान शुरू कर रही थी, लोगों को जोड़ रही थी अपने साथ, इसके लिए कितनी चुनौतियां आई लोगों को जोड़ने में, महिलाओं को जोड़ने में, क्योंकि ग्रामीण महिलाएं थी, आपने उनको संगठित किया, कितनी परेशानियां चुनौतियां आपके सामने आई?
0: चुनौतियां तो बहुत आई और सब लोग कहने लगे बड़ी आ गई है, ये तो आश्रम में रहती है और हमारी महिलाओं को इतना भड़का रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, वो कर रही है करके। कहीं वो महिलाओं का महिला मंगल दल बनाया और उनको मैंने कहा चलो अब आ तुम्हारे पास लकड़ियां हैं, अब तुम यहाँ से अब लकड़ी नहीं ले जाओगे, जंगल बचाना है, ऐसे करके वो फिर आ गए मेरे साथ गाँव में, फिर दूसरे गांव में, तीसरे गांव में, ऐसे जाते जाते मैंने 200 गांव में महिला संगठन बनाया। तो सब उनको बताया, सब मान गए बहुत अच्छी तरह। तो ऐसे करके गांव गांव में जाकर वातावरण अच्छा बना दिया, तो जंगल बचाने का, पानी बचाने का, महिला सशक्तिकरण, भाई लोगों को नशा मुक्त करना, तो ऐसे ऐसे करके सब वातावरण अच्छा बना दिया। मैंने कहा तुम भी थोड़ा सीखो महिलाओं से, मैंने कहा संगठन बन गया है, जंगल बचाना है, पानी बचाना है, खेती अच्छी बनानी है, बच्चों को पालना पोसना है, आगे पढ़ाना है, जैसे लड़कों को तो स्कूल भेजने वाले हुए हैं, लड़कियों को नहीं, लड़के लड़कियों को पढ़ाने का नहीं हुआ। जब मैंने कहा लड़कियां नहीं पढ़ेंगी तो क्या होगा, लड़कियों को भी पढ़ाना है, तो बालवाड़ी खोली हमने भी आश्रम के द्वारा, एक बालवाड़ी से 200 गांव में बालवाड़ियां खोली लड़कियों को पढ़ाने का, और भाई लोगों को नशा मुक्त किया मैंने। जब परिवार तुमसे क्या सीखेगा और बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे, हमारा वातावरण कैसे अच्छा होगा, तुमको तो ये सोचना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: हाँ
1: पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तिकरण के साथ ही नशा उन्मूलन के क्षेत्र में आपके जो प्रयास है वो सराहनीय है। आज जब आप अपने कार्य को देखते हैं बसंती जी,
0: हाँ
1: आपने पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तिकरण और नशा मुक्ति को लेकर जो कार्य किए, कैसा महसूस होता है कि आपने हमारी पीढ़ियों को इतना कुछ आपने दिया है, कैसा लगता है आपको?
0: अच्छा लगता है, क्योंकि लोग तभी तो सब जगह किताबों में भी लिखते हैं, ऐसे वो भी देते हैं कि आपने इतना अच्छा काम किया, तभी तो पद्मश्री अवार्ड भी मिला। तो ऐसे करके धीरे धीरे वातावरण बहुत अच्छा हो गया गांव गांव में सब जगह, और बच्चे भी अच्छे हो गए, उनको भी अच्छी तरह पालना पोसना और ऐसा कर लिया, और लड़कियों को भी जब हमने, और बालवाड़ी में एक बालवाड़ी से लेकर 200 गांव में बालवाड़ी खोली लड़कियों के लिए, तो वो भी पढ़ने लग गए, लिखने लग गए, तो ऐसा वातावरण बन गया तो सब गांव गांव में बहुत खुश हो गए। तो और फिर और सरकार के द्वारा फिर लड़कियों को भी पढ़ाने के लिए सरकार ने स्कूलों में उनको भी भर्ती कर दिया, और बालवाड़ी से लेकर फिर वो और स्कूलों में भी ऐसे पढ़ने लगी।
1: अच्छा, जो कोसी नदी का आपका अभियान था वो बहुत ही सराहनीय अभियान रहा है, और कई आज के जो जनरेशन है वो भी उससे प्रेरणा लेती है। आपको लगता है किस तरीके से आपने कोसी नदी, क्योंकि उस टाइम कोसी नदी की स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी, आपने कैसे, आपके मन में आया कि इसको बचाया जाए?
0: पहले तो कोसी नदी में बहुत पानी आता था, जब जंगल कट गया तो पानी नहीं आने वाला हुआ, तब मैंने कहा तभी तो मैं 7 दिन गांव में गई, कोई महिलाएं नहीं मिली, और वो गांव के रास्ते ही जंगल में गई, वहां मुझे वो महिलाएं मिल गई। मैंने उनसे कहा कि तुमने इतने जब जंगल काट के खत्म कर दिया, पानी और जंगल पेड़ काट के, और ऐसे इतने तुमने कनखले बना दिए, वो कर दिया, वो सड़ गए हैं और वो बेकार हो गए हैं, जब पानी नहीं आएगा तो क्या पियो।

0: कैसे जिंदा रहोगे, कैसे खेती पाती होगी, ये तो तुम सोचो, तुम नहीं सोचते हो तो फिर और क्या होगा, ऐसे ऐसे करके तो वातावरण फिर बहुत अच्छा हो गया।
1: संदेश जी, जो आने वाली पीढ़ी है, हमारे जो युवा पीढ़ी है, उनके लिए क्या संदेश आप देना चाहेंगी कि वे पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दे सके, क्या उनसे कहना चाहेंगी आप?
0: तो उनसे भी तो वही कहना है, नशा मत करो, वातावरण अच्छा बना।

0: मत करो, वातावरण अच्छा बनाओ, परिवार अच्छा बनाओ, आगे की पीढ़ी अच्छी होनी चाहिए, तभी तो हमारा देश भारत वर्ष अच्छा होगा। उत्तराखंड देव भूमि को मैं यही कहती हूँ कि महान बनाना है। जब सब लोग परिवार परिवार में, गांव में, इलाके में सब अच्छे होंगे, अच्छे व्यवहार वाले होंगे और अच्छा वातावरण होगा तो सब खुश रहेंगे।
1: बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए।
0: आपको भी धन्यवाद।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे उत्तराखंड में पर्यावरण संरक्षण और कोसी नदी के पुनर्जीवन के लिए कार्य करने वाली तथा पद्मश्री से सम्मानित बसंती देवी के साथ बातचीत। संवाद का संचालन कर रहे थे राकेश पंत। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पता है podcast.airnews@gmail.com।
3: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।

हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.2 MHz पर। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

अनुपमा बोध के गाए फिल्म आक्रोश के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। लीजिए प्रस्तुत है